मीडियम वेव 305.8 मीटर्स अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और

0: केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ सुदेश रचित देशगान से समूह स्वर में।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री मेघनाथ कन्नौजे का है।
1: बात कुछ वर्ष पहले की है। एक अत्यंत ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के शिव मंदिर के प्रांगण पर महाशिवरात्रि का मेला लगा था। इस मंदिर का निर्माण करीब 1500 वर्ष पूर्व किया गया था और इसकी स्थापत्य कला और शिल्पकला प्राचीन भारत की एक विशेष शैली का प्रतिनिधित्व करती है। निर्माण कला इतनी कलात्मक है कि मूर्तियां सजीव हो उठी हैं। प्राचीन कलाकारों ने पत्थर पर प्राण फूंक दिए हैं। जो निर्जीव को सजीव बना दे वही तो कला है। मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि कुछ युवक मंदिर की कलात्मक दीवारों और मूर्तियों पर किलों से खरोच कर अपने नाम लिख रहे हैं। क्या इन युवकों को इतना भी नहीं मालूम कि ये मूर्तियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं?

0: और इनकी रक्षा करना हमारा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने एक युवक से पूछा, आप क्यों विकृत कर रहे हैं इन कलात्मक मूर्तियों को? उस युवक ने जवाब दिया, मैं मूर्तियों को विकृत कहां कर रहा हूं, मैं तो उन पर अपना नाम लिख रहा हूं। कितना आश्चर्य है कि उस युवक को यह भी नहीं मालूम था कि खरोंचने से मूर्तियां विकृत होती हैं। मैंने पूछा, भाई साहब, इस प्रकार खरोंचने से और उन पर नाम अंकित करने से क्या मूर्तियां विकृत नहीं होंगी? आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उसे बिगाड़ रहे हैं। ये मूर्तियां, ये मंदिर, ये शिल्प, ये कला हमारी महान सांस्कृतिक धरोहर हैं, और इन्हें सुरक्षित रखना हमारा सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने विरासत में सौंपी हैं ये कलात्मक वस्तुएं हमें। यदि आप नवनिर्माण नहीं कर सकते तो कम से कम विध्वंस तो नहीं कीजिए। युवक शीघ्र समझ गया और भविष्य में ऐसा गलत काम नहीं करने का वायदा किया। यह तो एक छोटी घटना है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के साथ जो देश के कोने कोने पर बिखरी हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्राचीन मूर्तियों और अन्य कलात्मक वस्तुओं की चोरी करते हैं और उन्हें चोरी छिपे विदेशों में बेच देते हैं। कितना जघन्य अपराध है ये। पता नहीं कितनी मूर्तियां और अन्य प्राचीन कलात्मक वस्तुएं विदेशों में बेची जा चुकी हैं। क्या ऐसे कृत्य हमारे सांस्कृतिक धरोहरों और राष्ट्रीय मर्यादाओं के प्रति घिनौने अपराध नहीं है? किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है, चाहे वे प्राचीन मंदिर हों या स्मारक, प्राचीन किले हों या महल, प्राचीन पांडुलिपि हों या चित्रकला, प्राचीन सिक्के हों या शिलालेख या ताम्रपट। ये वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास यात्रा की हमें जानकारी मिलती है। हमारी प्राचीन मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला आदि बहुत ही गौरवपूर्ण ऊंचाई पर पहुंची हुई थी, और उसकी जानकारी हमें इन्हीं सांस्कृतिक धरोहरों से मिलती है। कितनी तन्मयता और समर्पण भाव से हमारे प्राचीन शिल्पकारों और मूर्तिकारों ने कोणार्क, खजुराहो, भोरमदेव, श्रीपुर आदि की मूर्तियों की रचना की है। किसी भी मूर्ति पर उन मूर्तिकारों ने अपना नाम अंकित नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि कीमत नाम की नहीं होती, काम की होती है। विभिन्न शैलियों की चित्रकलाओं में कितनी तन्मयता और सजीवता रहती है। सच बात तो यह है कि हमारे प्राचीन कलाकारों और शिल्पकारों ने प्राचीन भारत के सांस्कृतिक गौरव और कलात्मक वैभव को कागजों और पत्थरों पर सजीव कर दिया है। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा करें? सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा और उनके संवर्धन और उपयोग के संबंध में जितनी जागरूकता हम में होनी चाहिए वो नहीं है। किसी भी देश के प्राचीन गौरव और वैभव के चित्र उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों पर अंकित रहते हैं। प्राचीन भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वैभव और गौरव का जीवित इतिहास हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर अंकित है। इसलिए हमारा ये राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जागरूक रहें, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और उनके संवर्धन के उपाय करें।
1: श्री मेघनाथ कन्नौजे का लिखा चिंतन अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं और ये समय है श्री रामचरित मानस गान का।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपना कर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। आज की कड़ी में मुख्य स्वर अनूप जलोटा का था। संगीत निदेशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में आज जानकारी का विषय है पौधों में अजैविक तनाव प्रबंधन। जानकारी देते हुए डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी।
1: किसान भाइयों जो है, अजैविक तनाव होता क्या है? अजैविक तनाव मतलब कि जब पौधों के लिए नॉर्मल सिचुएशन से जब नॉर्मल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, चाहे वो तापमान का अधिक होना, तापमान का कम होना, पानी की कमी, पानी की अधिकता के साथ साथ जब

0: जो पोषक तत्व है उनकी अधिकता और कुछ हैवी मेटल्स की अधिकता के कारण पौधों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब पानी की कमी होती है तो पौधों की पत्तियों में मुरझाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब पत्तियां मुरझा जाती हैं तो उनके प्रकाश संश्लेषण की करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की ग्रोथ, वृद्धि, विकास सारा प्रभावित होता है और उसके कारण पौधा अपना उत्पादन क्षमता से कम देता है। तो इस अजैविक तनाव को प्रबंधन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर कारक रिस्पांसिबल होते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पन की प्रक्रिया तेज होती है और उसके साथ साथ जो पौधा पानी को अवशोषित करता है मृदा से, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत ही तीव्र गति से उसका ह्रास कर देता है, जिसके कारण पौधों की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण पोषक तत्वों का करना, ये प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे मुरझाना शुरू करता है और वो अपना परिपूर्ण तरीके से उत्पादन नहीं दे पाता है, क्योंकि जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रभावित हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो अजैविक तनाव है, ये अजैविक तनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण जब सब्जियां ओपन फील्ड में लगाई जाती हैं तो बहुत सारे बोर गर्मियों में सूख जाते हैं। तो उसके लिए हमको ऐसे सब्जियों का चयन करना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, जिसके कारण पौधों का उत्पादन पे ज्यादा बुरा असर न पड़ सके। तो कुछ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के द्वारा कुछ सब्जियों के हीट टॉलरेंस या उच्च तापमान सहनशील प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनको अगर हम इन गर्मी के दिनों में उगाते हैं तो उन पे बहुत ज्यादा बुरा असर तापमान का नहीं पड़ता है। जैसे अगर मूली की बात करें तो गर्मियों के दिनों में मूली, काशी मूली 40, जो कि उच्च तापमान के लिए सहनशील है, उसको हम किसान भाइयों आप उगा सकते हैं। साथ साथ जो बाटल गार्ड की प्रजाति है उसमें काशी सुप्रभा को उगा सकते हैं और टमाटर अमन, काशी टमाटर अमन को उगा सकते हैं। और इनका जो उत्पादन है नॉर्मल से कम होता है, लेकिन गर्मियों के लिए ये सबसे उपयुक्त होते हैं। और उसके साथ साथ अगर सब्जियों की खेती हम ओपन फील्ड में कर रहे हैं तो मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के द्वारा भी हम जल के क्षणों को कम कर सकते हैं, उनके हरासमेंट को कम कर सकते हैं।
1: पौधों में अजैविक तनाव प्रबंधन, कृषि चर्चा के अंतर्गत इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर और संदेश टू सोल्जर्स आज शाम 4 बजे।

ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 9:25 पर सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में। आज का विषय रहेगा साइंस एंड टेक। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर होगा आपसे कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर।

आज सुबह 8:30 पर बाल वाटिका में बेरा के बाद का विषय रहेगा शिक्षा के संग खेल कूद शारीरिक और मानसिक विकास पर जरूरी और होनहार संगवारी क्रम में बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू से होगी अंजू मेश्राम की गोठ बात और होंगे बाल गीत। सुबह 9:00 प्रगति के सोपान में सुनिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली रायपुर की ईशा पटेल से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे राम शरण वैष्णव और साथी और इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे शिवदयाल पटपरिया और साथियों को। स्वरधारा कार्यक्रम में आज सुबह 10:00 सुनिएगा जगजीत सिंह और मीनल जैन को। ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने ये कार्यक्रम होगा सुबह 11:05 पर।

0: आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में आज दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे हल्बी गीत लचिंदर सलाम और साथियों के स्वर में, और कमार गीत के ये कलाकार होंगे मनारीबाई और साथी। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात का विषय होगा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए खेलकूद, और होगा फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12:00, दोपहर 2:00 सुनिएगा दीदी के गोट, और शाम 5:00 होगा एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवावाणी में आज शाम 5:10 पर अपन गोट का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और पहुना जोहार क्रम में होगी लोक गायक शेख अमीन से नीलेश साहू और लिनिमा साहू की गोठबात, और होगा क्रम हमर गांव। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात होगी वर्षा के पानी ला बचाव व भविष्य ला सुधराव विषय पर, और किसानवाणी में आज की सलाह में सतत पशु आहार हेतु हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन तकनीक विषय पर सलाह देंगी डॉक्टर वंदना भगत। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षडमुख प्रिया। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासि परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि

0: कायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्यपरिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशतकोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु, तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को

0: सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोताओं, हर सुप्रभात अपने साथ लेकर आता है सुनियोजित ढंग से एक पूरे दिन को व्यतीत करने की आशा, और इसी आशा का दामन थामे हम निकल पड़ते हैं हर रोज जीवन यात्रा के सफर में। इस जीवन सफर को और भी अधिक सुगम, सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिदिन अपने पास तीन शब्द अवश्य रखें। ये हैं कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य बनाने के लिए, सच अपने हर काम को शिद्दत से पूरा करने के लिए, और विश्वास उस परमात्मा पर जो सगुण या निर्गुण रूप में सदैव हम सब के साथ रहते हैं। तो इन शब्दों का हाथ थामकर चलने से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपका हर सवेरा बनेगा सुखद, सकारात्मक, सहज और आशाओं से भरा हुआ।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: और अब बारी है 11 जून के इतिहास की। 11 जून यानी आज का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। आज ही के दिन स्वाधीनता, विज्ञान, खेल और सामाजिक बदलाव से जुड़े कई यादगार अध्याय लिखे गए थे। 11 जून सन 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी ऑफ 5 का गठन किया गया। सन 1817 में 11 जून को जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने साइकिल के प्रारंभिक रूप का सफल प्रदर्शन किया। 11 जून सन 1897 को जन्म हुआ था महान स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी का। खेल जगत में भी आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और खेल की ही दुनिया में 11 जून सन 2010 को दक्षिण अफ्रीका में फीफा फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन हुआ था, और ये पहली बार था जब विश्व कप अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित किया गया था। तो आज के इतिहास से जुड़ी बातों के बाद आइए अब सुनते हैं ये गीत।

11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में जन्म हुआ था वीर स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी का। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। साथ ही बिस्मिल जी एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषीविद, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। सन 1915 में ब्रिटिश हुकूमत को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा बिस्मिल जी ने की थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल भी हुए थे।

और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। रामप्रसाद बिस्मिल जी की देशभक्ति ने हर भारतीय के दिल में देश को स्वतंत्र कराने की भावना जगाई और अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए चिंगारी जलाई थी। 19 दिसंबर सन 1927 को बिस्मिल जी को क्रांति भड़काने और विद्रोह की भावना को जनसाधारण में फैलाने और काकोरी कांड के मुख्य आरोपी होने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बिस्मिल जी की शहादत भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। आज उनकी जयंती पर हम रामप्रसाद बिस्मिल जी के अदम्य साहस देशभक्ति को शत शत नमन करते हैं।

श्रोताओं, विभिन्न तरह के खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ ही टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास भी करते हैं। इसी बात के मद्देनजर हर साल 11 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन में खेल के महत्व, मानसिक विकास और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। खेलना बच्चों का मौलिक अधिकार है। खेल मनोरंजन करने के साथ ही बच्चों के शारीरिक विकास में भी सहायक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में खेल को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को विशेष मान्यता दी, जिसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को खेलने के लिए सुरक्षित जगह, पर्याप्त समय और समान अवसर मिले। वर्तमान समय की जरूरत है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करना, जिससे वे अनुशासन और जीत हार की भावना को समान रूप से स्वीकार करते हुए स्वस्थ, सेहतमंद, फिजिकली फिट बने रहें।

और अब एक जानकारी वृद्धजनों के लिए। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिला अस्पतालों में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और अलग वार्ड जैसी सुविधा उपलब्ध कराता है। इस महत्वपूर्ण मेडिकल कार्यक्रम में वृद्धजनों की जांच के लिए अस्पतालों में सामान्य लाइन से अलग ओपीडी की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पतालों में 10 बिस्तरों का अलग वार्ड भी आरक्षित रहता है। साथ ही बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी और मानसिक काउंसलिंग की सुविधा भी पूरी तरह से मुफ्त है। वे बुजुर्ग जो अस्पताल तक आकर अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उनके घर जाकर जांच करने की सुविधा भी दी जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जिला अस्पताल में सीनियर सिटीजन ओपीडी के बारे में पूछें। इसके लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, बस उम्र का सरकारी प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाएं और पूर्ण इलाज करा के स्वस्थ रहें। फिलहाल ये गीत आपकी नजर।

और अब एक जानकारी शिक्षा से संबंधित। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका जारी कर दी है। ऑटोनॉमस यानी स्वशासी कॉलेजों की में प्रवेश प्रक्रिया सामान्य कॉलेजों से अलग है। छात्रों को ऑटोनॉमस संस्थानों में दाखिले के लिए संबंधित कॉलेज के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ कॉलेज, साइंस कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज तीन ऑटोनॉमस श्रेणी में आते हैं। इन कॉलेजों में भी बीए, बीएससी, बीकॉम समेत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूधाधारी बजरंग कन्या स्नातकोत्तर कॉलेज यानी डिग्री गर्ल्स कॉलेज और साइंस कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम समेत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो गई है। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून रखी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ कॉलेज में भी प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन छात्रों को बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रवेश लेना है वे आगामी 19 जून तक कॉलेज के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों ही पाठ्यक्रमों के अलग अलग आवेदन भरने पड़ेंगे। और इस जानकारी के बाद सुनिए ये गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, नन्हे बच्चों का भविष्य हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहेंगे पल्स पोलियो अभियान से संबंधित। इस अभियान की शुरुआत हमारे भारतवर्ष में सन 1995 से हुई थी, जिसका उद्देश्य देश से पोलियो को पूरी तरह समाप्त करना है। इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। आइए जाने पोलियो है क्या। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो पोलियो वायरस के कारण होती है। ये मुख्य रूप से 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है और कई बार लकवे का कारण भी बन जाती है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है टीकाकरण और इसकी खुराक नियमित दिलाना। नियमित रूप से पोलियो की खुराक देने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे पोलियो मुक्त हो जाते हैं। भारत ने पोलियो बीमारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है और वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इसी संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि आगामी 28 जून को राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसमें बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। तो वे अभिभावक जिनके नन्हे मुन्ने हों, वे इस अभियान से जुड़कर अपने बालकों को पोलियो बूथ ले जाकर नियत तारीख में पल्स पोलियो ड्रॉप्स अवश्य पिलाएं, ताकि उनका बचपन रहे सेहतमंद, खेलता हुआ, खिलता हुआ।

0: चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना।
1: श्रोताओं, मौसम केवल गर्मी, बारिश या ठंड का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी दिनचर्या, मनोदशा और जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। और इन दिनों मौसम का कहर हर तरफ दिख रहा है। बेतहाशा गर्मी के बीच बादलों की आवाजाही है और सुनाई दे रही है मानसून की आहट। तो आज ये जानते हैं कि ये मानसून है क्या और कैसे आता है। मानसून हवाओं का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक सिस्टम है, जिसमें हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। इन हवाओं में करोड़ों टन पानी भाप बनकर रहता है और यही बारिश कराता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। अब सवाल ये कि मानसून सबसे पहले केरल में ही क्यों आता है? तो केरल हमारे देश के दक्षिण पश्चिम कोने में अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। कुछ मानसूनी हवाएं अरब सागर से ही भारत की ओर आती हैं, इसलिए जब ये हवाएं चलती हैं तो सबसे पहले केरल के तट से ही टकराती हैं और इसीलिए ही मानसून सबसे पहले केरल में आता है। मानसून से होने वाले फायदों की यदि बात करें तो भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। मानसून में अच्छी बारिश होने से कृषि उत्पादन उन्नत होता है और किसानों को पर्याप्त पानी खेती के लिए उपलब्ध हो जाता है। साथ ही गर्मी के बाद प्रकृति के कण कण को प्रतीक्षा रहती है मानसून के आने की, जिससे तपती धरा शीतल हो सके और बदराबर से घनन घनन

0: तो श्रोताओं, मानसून के आने का इंतजार बस अब खत्म होने को ही है, तो आती हुई वर्षा ऋतु का स्वागत करें दिल खोल के। और अब आज के कार्यक्रम से मुझे यानी अनुभा अग्रवाल को दें अनुमति। नमस्कार। ये था सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं। समाचार प्रभात अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की

0: बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि

0: नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली पांच है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी

0: लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.

0: बच्चों जय हिंद।
1: बाल वाटिका के अगुरा करिया हमर नानी संगवारी मन के स्वागत है अंजू दीदी कोती ले। संगी आज हमर बाल वाटिका के पिटारा में हावे अड़बड़ अकन चीज। फिर सब ले पहली आप मन बर एक महत्तम के सूचना हावे। हमर आकाशवाणी रायपुर कोती ले लइका मन ला नेवता है। जे लइका मन कोनो किस्सा कहनी देशभक्ति फिर लोकगीत स्वरचना वाले कोनो प्रेरक प्रसंग फिर नाटक माने कोनो प्रस्तुति करना चाहत हावे त आप मन अपन दाई दादा फिर कोनो सियान मन संग आ जावो आकाशवाणी रायपुर मा। प्रत्येक मंगलवार बिहनिया 9:30 ले 11 तक रिकॉर्डिंग होते। देरी झन करो, हमन आप मन के अगोरा करत हवन हमर बाल कलाकार के रूप में सुघर प्रस्तुति बर सूचना इहे सिरावत हवे। संगी हो आज बाल वाटिका में हवे गोड बात। शिक्षा संग खेलकूद शारीरिक और मानसिक विकास पर जरूरी है। संग माँ बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू ले अंजु मेश्राम के भेंट वार्ता मन सुनू और ए सो तो प्रश्नोत्तरी घलो हवे। तो आप मन अपन कापी पेन ला सोझा ले और सही उत्तर पठोइया लइका मन के नाम घलोक जानबो और संग में खेल गीत और जनौला गीत और बड़ा कन चीज हवे आप मन बर। तो संगी हो गर्मी के छुट्टी है चलत है, चारों कोती घाम तपत है, लू घलोक चलत है। फिर हमारे लइका मन बाहर घाम में खेलत है, जाड़ा बरसात फिर घाम कोनो मौसम होवे। हमर नान्हे संगवारी मन खेलत कूदत रहते, भाई खेलो कूदो आगू बढ़ो, काबर के खेले ले शारीरिक और मानसिक विकास तेजी ले होते, स्मरण शक्ति बढ़ते, संग में अनुशासन और एकाग्रता घलो का थे, त्वरित निर्णय लेके क्षमता विकसित होते और अत्यक कन सीख सोचो।

खेलत कूदत आप मन सीख डारथो, है ना। और एक बात तो बताओ, कहूँ खेले कूदे और घूमे जाए के बेरा माँ आप मन के तबीयत बने नहीं रहे ले का होते? हो जाते ना परेशानी, आप मन ला घरेच में रहे बर पड़ते और सब भोजन मजा करते, है ना। और हमन नाने संगवारी मन ता रोज दिन सुघर खेलते, काबर के खेले पिए और खाए पिए ना, खेले पिए ले हमर शरीर अपोट होते और संगवारी खेल कूद योग व्यायाम हमर दिनचर्या में शामिल रहना चाहिए। जैसे शिक्षा माने पढ़ाई लिखाई लेना, हमन ला नवा नवा ज्ञान मिलते, है ना। देश दुनिया में आने आने जिनीस और फिर प्रकृति के बारे में जानकारी मिलते, किस्सा कहानी पढ़े ले हमर कल्पना शक्ति बाढ़ते, वैसने खेले कूदे ले हमर शरीर पोट होते, हमर शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास घलोक होते। और सबले बड़का बात है खेलत बेरा ना एक दूसर के मदद घलो करथो, संग माँ एक दूसर संग तालमेल बना के बढ़िया ढंग ले खेलथो कि कैसे जीतो, है ना। और सोचो तो अत्ते ककन कामला खेलत बेरा आप मन आप पेचाप जान डरथो और सब और ना खेलकूद में कोनो बांधा आए ना उहू ला तुरते हल करे के हल कर डाथो ना, तो हो गए ना आम के आम और गुठली के दाम, माने खेल के खेल संगमा शारीरिक और मानसिक विकास घलो। तो आवो तो हमर संगवारी मन कौन से खेल ला खेला थे एक गीत के माध्यम ले खुडू डूडू खेल गीत पूना राम साहू पुष्पलता और संगवारी मन के गाए ये गीत ला।

0: संगी हो, अब हमन आप मन के भेंट करावत हन एक ऐसे बाल कलाकार ले जे हर पंडवानी गायन के क्षेत्र में प्रसिद्धि पावत है। त आवो सुनन बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू ले अंजू मेश्राम के गुड बात।
1: बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
2: संगवारी हो, आज हमर बाल वाटिका मां हमर संग हावे बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू मन। आराध्या आप मन के

0: बाल वाटिका मा स्वागत है।
1: जम्मो झल्ला जय जोहार।
0: संगवारी हो, आराध्या हम छत्तीसगढ़ के बाल पनवानी कलाकार के रूप मा ख्याति प्राप्त करत हवे। आराध्या बहुत कम उम्र मा हम छत्तीसगढ़ के समृद्ध लोक संस्कृति मा एक पनवानी जैसे पारंपरिक कला ला अपना के हमर लोक कला ला विस्तार दे के काम करत हवे। ता आज हमन आकाशवाणी के स्टूडियो मा यही कला ला आगू बढ़ैया आराध्या साहू मन ले गोट बात करबो। आराध्या, सबले पहली आप मन हमनला अपन बारे में बतावो।
1: मैं आराध्या साहू, मैं अभी कक्षा 8वीं में जाऊँ, ग्राम बकली, विकास खंड कुरुद, जिला धमतरी।
0: आराध्या, ये बतावो तो कि आज के बेरा मा ज्यादातर लइका मन आधुनिक मनोरंजन डहार आकर्षित होवत हे, ता ऐसे समय मा आप मन ये लोक कला के प्रति कैसे लगाव आई, आप मन मा कैसे ये समर्पण ला विकसित करो और आप मन ला कला डहा जाए के प्रेरणा कहाँ ले मिलिस?
1: वैसे तो हमर घर में पंडवानी के बहुत माहौल रही से। जब कोरोना काल में कुछ करे बर नहीं रही आदमी मन कर, तो मैं पंडवानी सुनो अपन दादी दादा मन सन बैठ के, तो ओकरे प्रभाव मोला पड़िस और फिर मैं तिजन बाई जी के जो रिकॉर्डिंग है ना ओला सुन के सीख।
0: ओखर रिकॉर्डिंग ला सुने फिर का ओमन ले मिल के आप मन कुछ सीखे हो?
1: जब मैं छोटे रहे हूँ तब तिजन भाई जी से मिले रहे हूँ, वो टाइम वो जापान ले आ रही से, तो कह रही से कि जब भी मोर पंडवानी की प्रस्तुति हुई तो ला मैं जरूर दिखाऊँ बेटा, काबर की अभी बहुत सारा कमी है जेला ते पूरा कर सकथस, ओके बाद ओकर स्वास्थ्य खराब हो गए।
0: आराध्या, जैसे आप मन बतावत हो कि बहुत नान पन ले आप मन ये पंडवानी ला गावत हो, तो सुरता करो तो कौन बच्छर के रहे हो आप मन जब ये गाना ला चालू करे हो?
1: मैं कक्षा 3री में रहे हूँ, मैं दूसरी से पंडवानी सीखत रहूँ, काबर की हमारे घर में आकाशवाणी के जो रेडियो है उमे मैं तिजन माई जी के बहुत अकन पंडवानी के जो क्लिप है वाला सुने रहे हूँ, तो मोल दूसरी से अकर जो बोले के स्टाइल है वाला सुनो और बोलो ओका बाद तीसरी से फिर मैं हाँ मंच में आऊँ।
0: कतिक बढ़िया ना, आकाशवाणी घर घर में आने आने कला ला बढ़ावा दे के बड़ सुघर माध्यम हावे, तो बहुत सुघर लगीस कि आप मन आकाशवाणी ले घलो एक कला ला आगू बढ़ाए बर सोचियो और एकर कला ला अपनाए के आप मन में रुचि पैदा हुई। तो ये बताओ कि आप मन आने आने मंच में घलो प्रस्तुति देता हो का?
1: हाँ।
0: और जब प्रस्तुति देखो तो कौन कौन तरह के चुनौती आप मन ला मिलते?
1: मैं जब मंच में रहता हूँ तो उही दिन मतलब पता चलता है कि कल पेपर है, तो ओकर लिए मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है, ओकर बाद में हाँ पंडवानी के प्रस्तुति खास करके हमारे रात में होते, तेकर कारण मैं सुबह वाला प्रिपेयर करता हूँ के बाद अगले दिन।
0: कैसे आप मन तालमेल बिठाता हो अपन पढ़ाई और अभ्यास में?
1: जब परीक्षा चलत रहते तो पंडवानी बंद रहते।
0: बहुत बढ़िया, तो हमू मन ला कुछ गा के सुनाओ।
1: बोली

रात दिन यही चिंता सतावत रहे कि देवी द्रौपदी जोन ताना मारे री से ओकर बदला कैसे निकाले जाए। माँ माँ सकनी हो तन आके कहे, हे गुरुपति, आप मल्ला का हो गए है, ना तो घर से बाहर निकलत हो, ना तो सही ढंग से खाना पीना खावत हो, और ना तो सही ढंग से बातचीत करत हो, आप मल्ला का हो गए है गुरुपति। राजा दुर्योधन है तो उन कहे, का बताओ मामा, दिल मा दर्द मोला भारी है, का बताओ मामा, दिल मा दर्द मोला भारी है, का बताओ मामा, जब ले मैं देवी द्रौपदी के मुँह ले ताना सुने रहे हूँ ना, तब ले वो ताना मुल रात दिन सतावत रहे।

पांचों भाई पांडव और देवी द्रौपदी से बदला नहीं लूहू ना तब तक ले मुर जलत छाती ठंडा नहीं हो। कैसे कैसे योजना करके जब पांचों भाई पांडव ला बुलाए तो मामा सखनी है तुम सुंदर से बैठे रहे और मल्ला आके प्रणाम करे हमारा लकाय करे बर बुला हो। तब बाजू में बैठे रहा है राजा दुर्योधन हा वो कथे अरे मामा हमन का योजना करे रहे तेला तो सफल करना है ओला तो तय प्रयास कर। ता बाजू में बैठे रहे दुशासन हा वो उठ के

देवी द्रौपदी के जोन मुहल्ले में ताना सुने रहे हो ना मामा, अंधरा के बेटा अंधरा और रात दिन मोर कान में गुंजत रहते। पांचों भाई पांडव मन से कैसे बदला निकाले जाए, यही सोच में भी डूबे रहता हूँ। जब तक के लिए मैं यहाँ

0: उठा पासा ला फेंक दिस। मामा सकनी है तन कहे हमन ला यहाँ थोड़किन टाइम पास करे बर पासा खेलना है। त धर्मराज रहे और कहे कि अभी तो मोर कर न धन है न दौलत है, मैं तो आप मन से मुलाकात करे खातिर बर आया हूँ, और ये पासा ला मैं कैसन ढंग के खेलूं। ए टाइम पास करे बर तो मोर कर बहुत समय बाकी है, ये पासा ला खेलना जरूरी है का? अरे का होगे, धन दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं, ते हा हार जबे तो वहां ले बाद में भिजवा देबे और जीत जबे तो यहाँ ले पकड़ के ले जबे। पासा खेले बर धर्मराज होगे तैयार। ता मामा सुकनी है तो उनका है कि धर्मराज पहली दाव में ते हा काला लगावे। तो धर्मराज सोचत रहे और ओकर हाथ गले के हार में पड़ गए। गले कर हार धर्मी पासा में लगावे, गले के हार ला धर्मी पासा में लगा गे, और उही पासा ला जब हार गे तो धर्मराज के मती ठिकाना नहीं रहिस। एक एक करके धन दौलत जमीन जायदाद माल खजाना सब ला बेच दिस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
1: कतेक सुघर प्रस्तुति आराध्या, बहुत सुघर। और ए जब आप मन के संगवारी मन और शिक्षक मन आप मन के ये विशेष प्रतिभा ला जानिस तो ओ मन के क्या प्रतिक्रिया रहिस?
0: जब ओ मन मोर प्रस्तुति के बारे में जानिस कि ये पंडवानी गाथे तो मतलब बहुत सराहिस और प्रसन्न रहिस कि हमर जो स्कूल के लड़का है वो कम से कम अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला तो सीखिस करके।
1: फिर आप मन और कोनो लड़का ला बोलथो का कि मोरो संग सीखो या कोनो ला औ आगे ए कला ला जान, मतलब आप मन के संगवारी मन का आप मन संग रही थे ना तो हूँ मन के मन होते का एला सीखे के?
0: मन तो बहुत रहते होकर मन के, लेकिन स्कूल के कारण में
1: और अभ्यास बहुत करना पड़ते। और आप मन अध्ययन घलो करथो का एकर आगू तैयारी करे बर आप मन का करथो?
0: मैं महाभारत के जो बुक है ना ओला पढ़थो फिर ओला पंडवानी में जोड़े के प्रयास।
1: तो जैसे आप मन बतायो कि हमर जे पंडवानी गायिका तीजन बाई ओखर आप मन वीडियो सुनथो रिकॉर्डिंग सुनथो तो ओखर जैसे छोटे छोटे से बारीकियां होते ना ओला सीखे बर आप मन ला कतेक घाव ओला सुनथो जैसे अभ्यास करे बर?
0: मैं शुरू में दो बार सुनथो कर बाद में हाँ ओला बोले के प्रयास करथो कि ओ होइस कि नहीं होइस, और नहीं होते तो फिर सुन।
1: रोजे दिन अभ्यास करते हो का एकर?
0: वैसे तो मोर अभ्यास लगे रहते लेकिन जब प्रोग्राम टाइम आते या फिर औ मोला सीखे के जब मन होते तब मैं।
1: सही बात है, कोनो कला जब मन रहते तबेज बने अकन सीखथन हमन गातन गुनगुनाथन तो बड़ा बड़ सुघर आप मन ये कला ला आगू बढ़ाए के काम ला करत हो। तो एको और प्रसंग ला हमर नाने लड़का मन ला सुनाओ।
0: मैं आप मन ला गीता सार के शुरू के जो कथा है वाला सुनाना चाहूँ। सारी सेना इकट्ठा कर औ प्यार के साथ चर्चा कर था वै काका। अरे सब काम तो हो गए पर नगर द्वारिका में अभी तक ले खबर नहीं पहुंचे है। राजा दुर्योधन अपन भवन में बैठे रहे देख के चारों तौर पर सेना मल्ल कथे कि सब तो सही में आ गए हैं, पर हे कुरुपति द्वारिका नाथ में खबर दे देना। ता आप एक काम करो आज ही निकल जाओ और न्योता देख के भगवान कृष्ण ला आ जाओ। राजा दुर्योधन चल कर घोड़ा ले सजावे घोड़ा रथ में बैठकर वैद्य रथ दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंचे तो सही। पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्योधन को आते हुए देख के और चादर तान सो और वो देखिस तक कथे कन्हैया सोए है, सोए नींद जगाना ठीक नहीं, ये की के आगू ढान खुर्सी ढीस तिला खींच के पाछे में रख दिस मतलब मुड़सरिया तरह। और

अपन राजा दुर्योधन गोड़ हिलावत बैठे है और ये तरफ ले बांधरी अर्जुन रथ घोड़ा कुदाते बड़ा प्यार के साथ पहुंचीस और जाके रुक्मणी ले पूछने लगे, दीदी कन्हैया ही कहाँ सोए है, अंदर में सोए है। सुन के राजा दुर्योधन पहली के बैठे हवे और ये तरफ बांध हरि अर्जुन जब पहुंचे, जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी से कका और मार अटियावा श्री कृष्ण उठी।

अरे अर्जुन, अरे ते कतका बेर के आए हस? अरे कैसे मोर पैर के नीचे बैठे हस? ता अर्जुन श्री कृष्ण जी ला कथे कन्हैया, मैं अब भी आए हूँ और आप मन जागे हो आपे के दर्शन पाए। ता बगल में पाछू तरफ बैठे रहे मोर सरिया माँ राजा दुर्योधन, ओ कथे एक कन्हैया। तब भगवान लहुट के देख के कथे, अरे कुरुपति तहूँ आए हस? वाह, मैं कब क्या के बैठे हूँ, समझ गए ना, ओ अब भी आए। मोला करीब करीब एक घंटा हो गया। औ ओला कब के आहा सर्जुन, कैसे आहा सर्जुन? वाह, मैं हा बैठे हूँ तने दिखत है। अतः मोर पाछू डहाना हुआ आखी नर भैया, आगू डहाना खी है ता अर्जुन भल्ला देखे हूँ, अब तहूँ आगे सा तहूँ देख डरे। बात का है तो राजा दुल्हन कथे न्योत दे बरा हूँ। न्योत दे बरा हस? हाँ न्योत दे बरा हूँ। अर्जुन ला पूछते ते का कर ला हस? महू न्योत दला हूँ कन्हैया। काबर? अरे लड़ाई की तैयारी कर डरे हन, औ मैं हा सोचे हूँ कि

0: वाह वाह, बहुत बढ़िया, कतेक सुघर आपन प्रस्तुति देव आराध्या। और ये बताओ तो आप मन आने आने मंच में प्रस्तुति देते हो, तो अब तक कतेक जगह आप मन प्रस्तुति दे डाले हो?
1: अभी तक मैं 250 से अधिक मंच में प्रस्तुति दे चुके हूँ।
0: तब जब लोगन मन आप मन के प्रस्तुति ला सुनते हो, कतको घाव बोलत हुई ना आओ सुनाओ, तो कतेक कैसे लगते आप मन ला?
1: मुझे लगते लोगन मन अतेक छोटे लड़का के पंडवानी ला अतका सुघर तरीके से सुना थे, अतका मया देवा थे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती।
0: और मया दे के बात होवत हवे ता आप मन के मम्मी पापा मने दाई दादा आप मन के कैसे सहयोग करते?
1: मुझे बताते कि जेन जगह त्रुटि होते ओला सुधारो बेटा, कई बार डांटते कि एला नहीं करना है, एला जोड़ सकथस ऐसे करके।
0: अच्छा ये बताओ कि आजकल के जे लड़का मन या अपन संगवारी मन ला आप मन का संदेश देना चाहत हो?
1: मैं यही संदेश देना चाहत हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, अभी लोगन मन अधिकतर डीजे डांस ला पसंद करते और कुछ फिल्मी अंदाज ला पसंद करते, तो मैं यही कहना चाहूँ कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है ओला बरकरार रखो।
0: तो आराध्या आप मन ले गोट बात करके हमन ला बहुत सुघर लगी, सो आप मन हमार आकाशवाणी के स्टूडियो में आए तो एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद। संगी हो आप मन सुनियो बाल पंडवानी गायिका आराध्या साहू ले अंजू मेश्राम के गोट बात। तो आपो मन घलोक अपन रुचि प्रतिभा अनुसार अपन कार्यक्रम आकाशवाणी पर रिकॉर्ड करा सकत हो। आप मन अपन पालक मनसन आकाशवाणी रायपुर जेहर हवे सिविल लाइन मा गॉस मेमोरियल ग्राउंड के सामने रायपुर वहाँ आ सकत हो। और समय के ध्यान न रखू मंगलवार बिहनिया 9:30 बजे। अब आप मन के अगोड़ा सिरावत हवे काबर के अब हमन बतावथन प्रश्न क्रमांक 386 के सही उत्तर ला। और संगवारी मन के नाव घलोक जेमन सही उत्तर पठोए हे। तो प्रश्न क्रमांक 386 के पहली प्रश्न रही से हमर भारत देश कौन से महाद्वीप में हवे, तो एखर सही उत्तर है एशिया महाद्वीप में। और दूसरा प्रश्न रही से भारत के उत्तर दिशा में कौन से पर्वत हवे, तो हवे हिमालय पर्वत। और तीसरा प्रश्न रही से हमर देश के सीमा ले लगे कतेक देश हवे ओखर नाम बताओ, तो कुल 60 देश हमर हवे, वो हर हवे पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश चीन और म्यांमार। और चौथा प्रश्न रही से हमर छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन जिला में हवे।

0: तो ओ तो हावे बस्तर जिला में। और पांचवा आखिरी प्रश्न रही से, तेंदु चार आमा लीची तरबूज खरबूज कौन से मौसम के फल हर हावे? तो ओ तो हावे गर्मी माने ग्रीष्म ऋतु के फल। आप मन एकदम सही सही जवाब ला लिख के फटफोए हवो, तो हमन ल अड़बड़ अकल मेल घलोक मिली से। त अडार नान घाटले चांदनी वर्मा, राहुल गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा मन, ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खानले गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन मन, वैसने गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुले निखिल नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल डिम्पल और निक्की निषाद मन सही जवाब पठोए है। ग्राम माटिया बालोदले त्र्यंबिका पीहू लुशिखा और लीना अंगारे मन, वैसने बिलाईगढ़ हेमलता डिम्पल भव्या और प्रियांशी देवांगन मन घलोक सही जवाब भेजे हैं। और लच्छनपुर ले शिवम निम्मी और श्रुति साहू मन, रानी गांव जिला धमतरी ले शुभम सेजल राकेश और रोहन मन घलोक सही जवाब ला भेजे हैं। वैष्णेज बाड़ेसरा नैला ले वैभवी विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू मन, ग्राम खैर छिट्टी साजा ले वैष्णवी मधु शगुन रीना रूपाली हिमांशी हिमांशु दिव्यांशु और अर्जुन मन घलोक सही सही जवाब ला लिख के भेजे है। वैष्णे ग्राम भनपुरी मुसरा ले होमेश्वर मानेश्वर लाक्षी तुलसी यादव मन, वैसे पथरिया भरेवाले नोमेश नेहा और तान्या सिंगरौल मन, धमधा ग्राँव सुखरी कला ले मनीष आयुष आदित्य आरुषी अंशिका नैना अंजलि और नंदिनी जंघेल मन घलोक सही सही जवाब भेजे है। गांव परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले खुमेंद तुसारिणी कामेश अनिरुद्ध साकेत पायल गरिमा काजल मेघा वर्षा और रुद्र कुमार मसिया मन, ग्राम सिंगारपुर ले चिंताराम चंद्रध्वज और सानू दुर्वे मन, वैसने लोरमी ग्राम चचेड़ा ले पुष्पराज ऋषभ नेहा शुभम और रिंझाराही मरावी मन, ग्राम पुतली कलर कवर्धा ले विनय शंकर नयन भाग्य लक्ष्मी गुनगुन समानसु पांडे मन घलोक सही जवाब पठोए हैं। और ग्राम कोलियारी कवर्धा ले मुकुंद पूर्णेन साहिल और भव्या चंद्राकर मन, छत्तीसगढ़ पलारी ले पूजा अन्नपूर्णा और यशस्वी वर्मा मन, और पोटिया कला दुर्ग ले शशांक सामी गोलू और छोटू मन, डोंगरगांव ले तन्मय बेबी अंशिका कोयल खुशी और याशिका लाउत्रे मन, सहसपुर लोहारा ले पुष्पराज सूरज पूर्वी गौरव राजपूत, कर्मा चौक लोहरी डिहले खुशांत और निशान साहू मन। आप मन जम्मू संगवारी ला सही जवाब पठोए पर गारा गारा बधाई। और सुनो ए जनौला गीत ला।
1: जनौला के पारी है तलाव प्रस्तुत है ये जनौला गीत।

संगी हो, अब लिखो प्रश्न क्रमांक 387 के प्रश्न ला। ता झटकुन लिखो। सबसे पहली प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र

0: खंडवानी गायिका के नाम बताओ जेला पद्म विभूषण के सम्मान ले सम्मानित करी गई है। आप मनला बताना है छत्तीसगढ़ के एकमात्र पंडवानी गायिका के नाम जेला प्रश्न पद्म विभूषण सम्मान ले सम्मानित करी गई है। दूसरा प्रश्न है भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ला और कौन नाव ले जाने जाते। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ला और कौन नाव ले जाने जाते, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हवे चांद मा सबले पहले पहुंची वाले मनखे के नाव बताओ। आपन ला बताना है चांद मा सबले पहली पहुंचे वाले मनखे के नाव। और चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है महानदी के सबले बड़का सहायक नदी के नाव बताओ, महानदी के सबले बड़े सहायक नदी के नाव बताओ। प्रश्न एक घो फिर छत्तीसगढ़ के एकमात्र पंडवानी गायिका के नाव बताओ जिला पद्म भूषण सम्मान ले सम्मानित करे गए है। दूसरा भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ला और कौन नाव ले जाने जाते। तीसरा चांद मा सबले पहली पहुंचैया मनखे के नाव। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते। और पांचवा महानदी के सबले बड़े सहायक नदी के नाव बताओ। और संगी एक हर संग हुआ थे जाए के बेरा तो सही सही उत्तर ला हम लिख के पठो हूँ। और मेल पर पता है राय लयिका मन के चिट्ठी 14@gmail.com। और अब देव विदा अपन दीदी अंजुला सुघर खेलो कूदो अपन शारीरिक और मानसिक रूप ले और नैतिक विकास करो और आकाशवाणी के कार्यक्रम ला सुनो और प्रस्तुति भर आकाशवाणी घलो कावो।
1: बच्चों जय।

ये था बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, प्रगति के सोपान। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली रायपुर की ईशा पटेल से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

0: प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर की एक युवा जिनका नाम है ईशा पटेल, उन्होंने हाउस ऑफ पुचकास के नाम से अपने खुद की शॉप की शुरुआत की है, जिसमें पुचका यानी गोलगप्पे भी कहते हैं, और इस दुकान के लिए उन्होंने बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया। हम जानकारी लेंगे कि उन्हें लोन कैसे मिला और लोन की क्या प्रक्रिया थी। और श्रोताओ हम आपको बताना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर के जो युवा उद्यमी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर अपने एक बिजनेस की शुरुआत की है, उनसे आमने सामने संवाद किया गया था। तो श्रोताओं छत्तीसगढ़ से रायपुर की युवा जो है ईशा पटेल ने भी इस संवाद में भाग लिया था, तो आइए सुनते हैं इस बातचीत के कुछ अंश।
1: सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मुसीबतें होंगी और मुश्किलें भी आएंगी, जो संघर्ष करेगा वही सफलता पाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पुचका। घर पे खाना वाना बनाते थे तो हाथों में टेस्ट अच्छा था, तो सबने सजेस्ट किया कि आप कैफे फील्ड में जाओ। फिर उसमें रिसर्च करके पता चला कि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी अच्छा है, तो फूड कॉस्ट वगैरह मैनेज करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं।
2: एक यूथ, एक जनरेशन है, कुछ पढ़ाई की तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो कहीं नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा। आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आपके रायपुर के भी दोस्त होंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्त होंगे या स्टूडेंट दोस्त भी होंगे, उन सब में इसकी क्या चर्चा है, क्या सवाल पूछते हैं, उनको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, उनको भी आगे आने का मन करता है।
1: सर मैं जैसे कि अभी मेरी

0: 23 इयर्स है, तो मेरे पास अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और टाइम भी है, तो ये सही समय होता है। मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएम ईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, तो अगर आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू। तो आप बिजनेस करियो और जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, आइए अब बात करते हैं ईशा पटेल जी से, जिन्हें हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया और उनसे हमने जानकारी ली कि उन्हें ये लोन कैसे प्राप्त हुआ, और जब आमंत्रित किया गया कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखें, उनके संवाद में भाग लें, तो उन्हें कैसा लगा, उन्हें अवसर कैसे प्राप्त हुआ, इस बारे में हम बात करेंगे ईशा पटेल जी से। तो श्रोताओं, आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है ईशा पटेल जी को। ईशा जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी।
1: तो ईशा जी, सबसे पहले हम कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हमने अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया में हमने देखा कि आपकी चर्चाएं हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको आमंत्रित किया और अपने बारे में बताने का, बोलने का अवसर प्रदान किया, तो उस अनुभव के बारे में बताएं और बताएं कि ये अवसर आपको कैसे प्राप्त हुआ।
2: ये जो पूरा प्रोसेस था वो सब बैंक के थ्रू हुआ था, जिसमें हमने लोन के लिए अप्लाई किया था। अप्रूवल आने के बाद जो जो कैंडिडेट्स थे उनके सक्सेस स्टोरी गई थी दिल्ली
1: जी।
2: तो पैन इंडिया से टोटल 50 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, 50 लोगों को
1: जी।
2: उसमें से मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया, उन 50 में से 5 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देने का भी मौका दिया गया था। तो अगेन उसमें से मैं एक और थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी बिजनेस को लेके, तो काफी अच्छा अनुभव था, काफी चीजें सीखने को मिली और अपने आप में एक उपलब्धि है कि आप प्रधानमंत्री जी जो कि अभी तो देश के सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनकी चर्चा तो हर जगह रहती है, तो उनके यहाँ जाके उनसे मिलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा अनुभव था
1: जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको दिल्ली जाने का न्योता प्राप्त हुआ और आपने वहां अपनी बात रखी। तो ईशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने स्टार्टअप शुरू किया जिसे हम देख रहे हैं, हाउस ऑफ पुचकास के नाम से आपने एक स्टोर खोली जिसमें गुपचुप, जिसे गोलगप्पे कहते हैं, हम पुचका भी कहते हैं, वो स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, तो आपको ये आइडिया कहां से मिला, इससे पहले आप कहां थी और कैसे आपको आइडिया प्राप्त हुआ?
2: स्टार्टअप करने से पहले मेरी कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लग गई थी, जिसमें मैं गोदर्जन बॉयज लिमिटेड में थी बॉम्बे में, और मेरी सर्विस थी हैदराबाद में। बट वहां पे भी ऑलमोस्ट एक साल सर्व करने के बाद, कॉर्पोरेट कल्चर को देखने के बाद, हमेशा से ऐसा था कि अपना कुछ करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, रेदर देन जॉब सीकर बनने से अच्छा हमें जॉब प्रोवाइडर बनना था। तो वही जज्बे को कायम रखते हुए स्टार्टअप की ओर बढ़ने का निर्णय भी लिया था, जिसमें मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स ने काफी सपोर्ट किया था। और रही बात आइडिया की, तो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं कॉलेज के, प्रभजोत जी, जिन्होंने इसके बारे में मुझे सूचना दी थी कि आप इस तरीके से कोई स्टार्टअप कर सकते हो, फूड लाइन में जा सकते हो। तो हम सब ने मिल कई मार्केट रिसर्च की, तो फिर हमें पता चला कि हाइजीन की बड़ी प्रॉब्लम है
1: जी।
2: मतलब जैसे पानी पूरी खाने की शौकीन तो हर कोई है, पुचका हर किसी को पसंद है, पर हमें पता नहीं है कि वो किस पानी से बन रहा है या वो किस तरीके से सर्व हो रहा है। तो हाइजीनिक वे में जो स्ट्रीट फूड को सर्व करने का हमारा आइडिया था, उसी को हमने हाउस ऑफ पुचका में प्रेजेंट किया है
1: जी। तो हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आपने एक स्टोर खोला, और इसमें जो आपको मुद्रा योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन जो आपको प्राप्त हुआ, उसकी क्या प्रोसेस थी, किस बैंक से आपने प्राप्त किया, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनकी लाभ लेने की काफी सिंपल प्रोसेस है, उनके पोर्टल्स बने रहते हैं, आप वो गूगल में सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहीं पे ऑनलाइन फॉर्म रहता है, आप अपने क्राइटेरिया को मैच करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके, जो आपका नियरेस्ट बैंक है या फिर आपका जिस भी बैंक में ब्रांच है, जैसे हमारा ब्रांच था SBI, तो हमने SBI से अपना पूरा लोन प्रोसेस करवाया है, ऐसे में CCSBI ने काफी हेल्प की, बैरन बाजार, उन्होंने पूरे लोन प्रोसेस को काफी सिंपल कर दिया। आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म, हम फॉर्म लेके बैंक चले गए थे, उन्होंने ही पूरी चीजें गाइड की, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे, कितना समय लगेगा, सारी चीजें, एंड विद इन 15 डेज मेरा लोन सेंक्शन भी हो गया और मुझे अमाउंट भी रिसीव हो गया
1: जी।

0: ईशा जी, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ी थी?
1: लोन अप्लाई करने टाइम आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके फोटोग्राफ, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह लगती है, या फिर ट्वेल्थ पास है तो उसकी मार्कशीट लगती है। बट आफ्टर एप्लीकेशन जब आप लोन के लिए जाते हैं तो आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस रहता है, जैसे कि हमारा है फूड इंडस्ट्री, तो उसमें फसाई का लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो एक तो गुमस्ता लगा और दूसरा फसाई लगा।
0: जी, मतलब FSSAI, बहुत अच्छी बात है ईशा जी। तो ईशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक महिला हैं और नया स्टार्टअप आपने भी स्टार्ट किया है, तो आप देख रही हैं कि ये कितना बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए, और आप बाहर से आई हैं और यहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आप ऐसी अपनी जैसी महिलाओं को और लड़कियों को बताएं कि ये योजना कितनी लाभदायक हो सकती है और कितनी लाभदायक आपके लिए हो रही है, अगर कोई स्टार्टअप इसके लिए स्टार्ट करना चाहे तो।
1: योजनाएं तो काफी लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो इजी प्रोसेस है आपको लोन मिलने का, उसके बाद आप अपना जो भी स्टार्टअप है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ना केवल वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, वो न्यू स्टार्टअप्स, न्यू वेंचर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उनकी अलग अलग क्राइटेरिया है सब्सिडीज की भी। तो जो योजना हमने यूज की है उसमें वुमेन को 25% की सब्सिडी मिल रही है, तो गवर्नमेंट आपको बिना मॉर्गेज के लोन दे रही है, उसके अलावा आपको सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज भी दे रही है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपके लिए क्या ही हो सकता है। बस अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो आपका हौसला होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए और एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेंगी, बैंक भी सपोर्ट करेगा, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा।
0: जी जी, तो ईशा जी, हम बात करते हैं जब आपके जो आइडिया के बारे में, और उसके बाद आपने उसको जो है लोन के जरिए जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उस पर आपने उसको साकार किया। तो जब हम अखबारों में पढ़ रहे थे हाउस ऑफ पुचकास, तो आपको ये आइडिया कहां से आया? जैसे आपने बताया कि हाइजीन को ध्यान में रखकर आपने किया, तो आपने इसी फूड को ही क्यों चुना? क्या आपके पास पहले से ये आइडिया थे, क्यों आपने चुना इसको?
1: एक्चुअली फूड इंडस्ट्री में जाने का ये रीजन था कि जैसे हम कॉलेज वगैरह में भी होते हैं तो यंगस्टर्स की हैबिट होती है कि रोज बाहर खाना, अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर करना, और अभी रायपुर की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे फूड कल्चर बन चुका है, जहाँ पे रेगुलरली इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया में पोस्ट होते हैं और सारे लोग ट्राई करने भी जाते हैं, तो काफी एक तो अच्छा स्कोप था, ग्रोइंग बिजनेस है, और फूड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप कहीं भी जाइए, अब खाना तो आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो तो बंद नहीं होने वाला, तो एक प्रॉफिटेबल फील्ड थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये था कि खाने का टेस्ट जो था उसके काफी अच्छी नॉलेज भी थी, और घर में खाना भी बनाते थे तो काफी अच्छे रिव्यूज भी आते थे, तो वो हाथ में टेस्ट भी था, तो ये सोच के हमने फूड इंडस्ट्री में जाने का सोचा। और रही बात पुचका की, तो पुचका इसीलिए हमने चुना कि जो सेंसर वाली मशीन हम लाएं, क्योंकि पब्लिक को कुछ नया चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, तो जो मशीन आई है अहमदाबाद से वो हमारी यूनिकनेस है। उसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पानीपुरी मिल रहे हैं जो कि मिनरल वाटर से बनते हैं, और हाइजीन के साथ हम आपको टेस्ट भी सर्व कर रहे हैं
0: जी।
1: तो ये यूनिक था, दैट्स व्हाई।
0: ईशा जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम एक बार और जानना चाहेंगे कि जो आपको जो आमंत्रित किया गया था दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए, तो वहां पर कैसी बातें हुई, और प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके सामने जो आपको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो किन किन बातों पर चर्चा हुई वहां?
1: वहां प्रधानमंत्री जी ने भी काफी अच्छा इंटरेक्शन किया, सभी के साथ उनका काफी अच्छा व्यवहार था, बट मुझसे उनके कुछ 4-5 सवाल थे, जिनमें से उनका एक सवाल था कि आपके अंदर इतनी हिम्मत या फिर करेज कहां से आई कि आप इतनी कम उम्र में अपनी कॉर्पोरेट कल्चर जॉब को छोड़ के आप एक स्टार्टअप रिस्क की ओर बढ़े। तो मेरा जवाब उनको भी यही था कि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू सर, आप अगर खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा सवाल उनका यह था कि फैमिली एंड फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप ड्रॉप कर रहे हैं अपना जो सिक्योर जॉब है उसको और स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। और इसी तरीके से उनका और सवाल था कि आप यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे।

0: तो इन्हीं टाइप्स उनके इन्फेक्शन रहे थे।
1: तो श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर की युवा उद्यमी जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से सहायता प्राप्त कर अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किया है और हाउस ऑफ पुचकास के नाम से रायपुर में उन्होंने अपनी एक शॉप खोली है जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आ रही है। तो हम बात कर रहे थे ईशा पटेल जी से। तो ईशा जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो अपने अनुभव और जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

प्रगति के सोपान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली रायपुर की ईशा पटेल से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 12 जून 2026 यानी कल प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फलोद्यान लगाने की तैयारी और उसका प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत शिव हरी का है और फिल्म का नाम है लम्हे।

ढाई अक्षर प्रेम के। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत समीर का है और संगीत है जतिन ललित का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दबंग फिल्म का ये गीत था, सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया हुआ। गीत जलीस शेरवानी का था और संगीत था साजिद वाजिद का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

समीर का लिखा ये गीत था कुमार शानू और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म आईना के इस गीत के लिए संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का था। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खां की आवाज़ में जमील अहमद का लिखा गीत। संगीत सोहेल सेन का है और फिल्म का नाम है बाजार।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा सुबह 10:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं राम शरण वैष्णव और साथी।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही

0: डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मया के गठरी

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज कलाकार थे रामशरण वैष्णव और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष जनजाति समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्ण काल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पर निर्णायक नियंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह पुनर्संरचना शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए की गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर

0: ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंच सकता है। इस बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों, गजलों और कव्वाली के कार्यक्रम स्वरधारा में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह और मीनल जैन। पहले सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में गुलजार का लिखा ये कलाम।

जगजीत सिंह के स्वर और संगीत से सजी ये गजल अभी आपने सुनी। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजल कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मीनल जैन को।

गजल और कव्वाली के इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे जगजीत सिंह और मीनल जैन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं नीरज श्रीधर की आवाज में कुमार का लिखा गीत। फिल्म तुम मिले के इस गीत के लिए संगीत विशाल शेखर का है।

0: तुम बिन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। गीत मनोज मुंतशिर का था और संगीत था अंकित तिवारी का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

दे दनादन। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो की आवाज़ में। गीत सईद कादरी का था और संगीत था प्रीतम का। चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह का गाया हुआ। कम अमाल मलिक के लिखे इस गीत के लिए संगीत कुणाल वर्मा का है और फिल्म का नाम है दे प्यार दे।

चांदनी चौक टू चाइना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में। शब्द रचना रजत अरोरा की थी और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सोहम आकृति कक्कर और मोनाली की आवाजों में गुलजार का लिखा गीत। फिल्म बिल्लू के इस गीत के लिए संगीत प्रीतम का।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर

0: की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें।

श्रोताओं, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने लेकर, जिसमें हैं हमारे श्रोताओं के ढेर सारे ईमेल्स और उनकी पसंद के चुनिंदा गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे किन श्रोताओं ने फरमाइश भेजी है। हमारे ये श्रोता हैं भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शीला यादव, शुभम, सौरभ रावत, हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, पथरिया भरेवा से चंदूलाल नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, कोरासी भैंसा से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता साहू, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर राकेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू जाजोरिया, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद, समृद्धि पटेल, ग्राम तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी से उमेद कुमार निषाद, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र निषाद, सहजपुर मेघापारा से हैं छोटकू, मोहित, राम, लोकेश, रामकिशन और दुलीचंद साहू, कांकेर संबलपुर से फागु राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर, भाटापारा से हैं बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और लगान पंडरिया से उत्तम कुमार जंघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अनजान का लिखा गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत है सचिन देव बर्मन का, और फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार और संध्या, अम्बागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, कुल्हाड़ीकोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा साहू, लोरमी ग्राम तिलकपुर से हैं चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती, मयंक मरावी, ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, बिजेतला जालबांधा से हैं ओम प्रकाश, कुमारीबाई और भिनेश्वरी देवांगन, ग्राम भोईनापार लाटाबोड़ से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, उमाबाई और गंगाराम साहू, और ग्राम पुतकी कला कवर्धा से हैं राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म अभिमान का ये गीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। गंडई पंडरिया से पप्पू छोटू।

लता और पूजा सेन, सौंगा मगरलोड से हैं मोहित कुमार चंदन, देविका रानी और गजेंद्र कुमार चंदन, ग्राम गेंदाटोला से बीरेंद्र कुमार और गजेंद्र गुप्ता, यहीं से हैं अंजलि योगिता गुप्ता, सरसेनी से तेज राम और जानकी सेन, हथबंद करेली से भाई रामाधर ध्रु और संजय ध्रु, लच्छनपुर से खिलेश्वर साहू, नमन और कंचन साहू, हथखोज पारा उतई से अश्विन अजहर ठाकुर, नयन ठाकुर, बाबाकुटी उफरापाटन से तुलसी गोपी साहू और यमुना हेमलता साहू, दतरेंगी भाटापारा के हमारे श्रोता हैं झावेंद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, अनूपपुर से ऋषभ केवट, लक्ष्मी केवट, भाटापारा से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद, चंद्रकांत वर्मा, भीमखोज तरपोंगी से संतोष, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, नादिया गंडई से मूलचंद पटेल, आशीष, मोनिका, सीमा पटेल, बकरकटा साल्हेवारा से महेश, लोचन पटेल, मंजू, दीप्ति पटेल और शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी और पवन यादव। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है आंचल।

डोंडी लोहारा बालोद से हैं प्रभा देवी तामुरिया, देवशंकर तामुरिया, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, भैंसमुंडी मगरलोड से भागवत राम साहू, तुलेंद्र कुमार साहू, ग्राम देहान बांधा बाजार राजनांदगांव से रेवाराम साहू, मानवेंद्र कुमारी देवी साहू, हरिओम और पूर्णिमा साहू, राजनांदगांव से ज्योति रानी और सृष्टि साहू, ग्राम चांदो डोंगरगांव से हैं छन्नूलाल और मधु साहू, कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे, ग्राम देहान से कोमेंद हिरेन साहू, परमानंद और पार्वती देवी साहू, बिलाईगढ़ से हैं नरेंद्र देवांगन, अरविंद देवांगन, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, हाव्या रजक, युवान और तन्नू रजक, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन साहू और श्रीमती कुमारी साहू, बठेना पाटन से परमेश्वर और राजपत्ती साहू, सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, प्रणय कुमार, देवेंद्र प्रताप और नेहा देवी साहू, उदान दनिया गंडई से रामविलास जंघेल, शांतिबाई, तुषार कुमार और साहिल कुमार जंघेल, और पगबंधी धमधा से हैं कन्हैया लहरे, सेवंती प्रदीप और पुष्पेंद्र लहरे। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म त्रिशूल का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत साहिर का है और संगीत है खय्याम का।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। इस कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे आवाजें दी हैं आशा भोसले और किशोर कुमार ने, गीत लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने और फरमाइश हमारे इन श्रोता।

गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे आवाज़ें दी हैं आशा भोसले और किशोर कुमार ने, गीत लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने और फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। रायगढ़ से गुड़िया खातून अंसारी और उमा खातून अंसारी, हरियाणा से हैं सुरजीत रेशमा कौर, रणजीत आसमा कौर, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, संबलपुर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, पचरीपारा दुर्ग से मनीष यादव, रोशनी यादव, ग्राम नागर कोहरा से झग्गू राम साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा साहू, कांडे मोहला मानपुर से हैं रूप सिंह साहू, शैलेंद्री साहू, हर्षिता भानुप्रिया साहू, बटालियन दुर्ग से ईशिका यादव, रोली यादव, अवरेठीपारा भाटापारा से हैं अनिता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, ग्राम बरेठ टोला कोकपुर से पुराणिक राम चौरे, पुष्परानी चौरे। तो लीजिए आप सब अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ये वादा रहा का ये गीत।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश आप सबकी। हस्ता नंबर 2 से पार्वती पायल साहू, बंगला भाटा बिलाईगढ़ से हैं रेशमा और आदिबा देवांगन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, पचरीपारा दुर्ग से पुनीत राम यादव, सूरजबाई यादव, ग्राम बेवरा से हैं शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, अड़ार नानघाट से माखन और चांदनी वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, सावतपुर से ऋषि रितेश सेन, दिल्ली से महेंद्र मोंगा, पिंकी और नरेंद्र मोंगा, खंडवा से हैं रमेश सिंह, अनुराधा और प्रियांशी शर्मा, रायगढ़ से रुचि राजू, ज्योति राजू, ट्विंकल और दीप्ति राजू, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और कुंती साहू, बिलाईगढ़ से राजेश देवांगन, उत्तरा परी चीकू देवांगन, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, दाजाभाठा ओडिशा से हैं नंद कुमार ठाकुर और गायत्री मिश्रा, रिंगनी से दिनेश करुणा वर्मा, गांव परसटोला से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारिणी मसिया, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा कामड़े, सिवनी खुर्द रेंगाखार से हैं मनशाराम पटेल, बुधियापाई भानु प्रताप और पायल पटेल, चोलाना से रोहित जयमंत्री, ऋषभ जयमंत्री, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, राज अंसारी और शमसूल कमर, दानापुर पटना से तुलसीदास दुबे, निखिल कौशल्या और नितिन दुबे, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और बिरनपुर कला दनियागंडई से सुरेश कुमार साहू, मास्टर तन्मय साहू और जंत्रीबाई साहू। आप सब सुनना चाहते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और किशोर कुमार की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म

का और फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। दुर्ग से सुनीता सुमन डमरू यादव, बिलाईगढ़ से रोशन कौशल्या, हेमलता डिम्पल देवांगन, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, रामबन बघेरा से योगेश और आशा सारवा, पलारी से हैं नीलू संजू ओम वैभव निधि देवांगन, शहीद नगर खमतरई रायपुर से हीरा साहू, सहसपुर लोरमी से हैं छोटकू साहू, मोहित राम लोकेश सतीबाई साहू, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू, नरगोड़ा से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल मीनाक्षी गोस्वामी, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला और दीपक मरकाम, रोहासी पलारी से श्यामलाला रामदास युवराज साहू और आमाखोड़ा रेंगाखार से हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। बालोद से सनत यादव, ग्राम सहमालगी से सुखनंदन शिवरानी, आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, ग्राम भानपुरी मुसरा से हैं आत्माराम यादव, विदेशी यादव, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस दास वैष्णव, मानेगांव मलाजखंड से शिव कुमार शिवजे, श्यामा शिवजे, टिकरीपारा गंडई से ऋषभ ऋचा जागेश्वर और कचरी बाई देवांगन, ग्राम बोगाटोला मोहला मानपुर से हैं मालिक राम सिन्हा, तारामती मुनिंद, इंदु चांदनी, सविता देवी सिन्हा।

भुरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन और गजेंद्र सेन, पलारी रोहासी से श्यामलाल युवराज साहू, ग्राम पाहरा अहिवारा से पोषण चंद्रकिरण बंछोर, कांकेर संबलपुर से हैं ओजस्वी और तेजल यादव और भाटापारा से केदारनाथ भगवती, आयुष पीयूष और लल्ली जायसवाल। आप सब सुनना चाहते हैं इंदिवर का लिखा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

0: हमारे जाने का समय और आज के इस कार्यक्रम को आपके लिए संजोया अनुभा अग्रवाल ने। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन में दबा खजाना मिलने की कहानी सुनाकर नकली सोने के बिस्किट और सिक्के असली बताकर सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन संभागों के कुछ जिलों में तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। केशकाल घाट के 7वें मोड़ पर एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण केशकाल घाट पर मेगा जाम लग गया है। घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवागमन प्रभावित हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेलवे स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
3: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
3: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम

0: बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी,
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल है।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना

शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की

0: जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री

0: अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लछिंदर सलाम और साथियों के स्वर में हल्बी गीत और मनारी बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत। पहले सुनिए लछिंदर सलाम और साथियों के स्वर में हल्बी।

वाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लछिंदर सलाम और साथियों के स्वर में हलवी गीत और मनारी बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत। पहले सुनिए लछिंदर सलाम और साथियों के स्वर में हलवी गीत।

लछिंदर सलाम और साथियों के स्वर में आप सुन रहे हैं हलवी गीत।

0: लछिंदर सलाम और साथियों के सुर में अभी आपने सुना हल्बी गीत। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। लीजिए अब सुनिए मनारी बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत।
1: यरसी चौखेती मोहरिया, यरसी चौखेती मोहरिया की पुटी लो रे भुलका। यरसी चौखेती मोहरिया की पुटी लो रे भुलका। मामा चो बेटास, मामा चो बेटास या चत मोहरिया देवा होल होलिया जाबा। मामा चो बेटास या चत मोहरिया देवा होल होलिया जाबा। यरसी चौखेते, यरसी चौखेते मोहरिया भैंसी चोलेवा। यरसी चौखेते, यरसी चौखेते मोहरिया भैंसी चोलेवा। यम गाना गायंदे भगवान,

0: ए चार भाई बसनिया चूं चार बसियों सुंदर ए बड़ा सुंदर लगयो भगवान दुरदेस चो याद मीठे पुकारू ये लो
1: बेलर चो बाजार गालू बेलर चो बाजार गालू दाई बिसलू रईस नू हिंदू सरिया समरों दे बूहू हिंदू सरिया समरों दे बूहू की बार मां बिसनू
0: नगरी

छाती चोयंकल छाती चोयकल भगवान कोटि चोगिया या चयना यम चो बहिनी या चयना यम चो दोगला।

0: अभी आप सुन रहे थे मनारी बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत। इन्हीं के स्वर में आइए अब सुनते हैं एक और कमार गीत।
1: या टूरा बाटूरा बना सपति की कंठे बसियो सरस्वती, या टूरा

जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में अभी आप हल्बी और कमार गीत सुन रहे थे। कलाकार थे लछिंदर सलाम और साथी और मनारी बाई और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गीत का नगमा। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। आगामी शुक्रवार 12 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फलो उद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और अब चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में जान निसार अख्तर का लिखा गीत। संगीत खयाम का है, फिल्म का नाम है नूरी।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। जानी दुश्मन फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। लीजिए अब सुनिए गुमराह फिल्म का गीत महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है, संगीत रवि का है।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुमराह का गीत। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, संगीत रवि का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी दोपहर 2 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ, और शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में आज का विषय होगा साइंस एंड टेक। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:25 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षणमुख प्रिया सुनिएगा रात 10 बजे। अभी 1:30 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए खेलकूद। साथ ही आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो बिंदिया। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर अपन गुट में सुनिए चर्चा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर। क्रम पहुना जुहार में आप सुनेंगे लोक गायक शेख अमीन से नीलेश साहू और लीनिमा साहू ले गोट बात। और सुनिएगा क्रम हमर गांव। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे शिवदयाल पटपरिहा और साथी। और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे राम शरण वैष्णव और साथियों को। शाम 7:21 पर किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज की बात का विषय होगा बरसा के पानी ला बचावो भविष्य ला सुघरावो। शाम 7:30 पर किसानवाणी में आप सुनेंगे आज की सलाह सतत पशु आहार हेतु हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन तकनीक। इस विषय पर विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर वंदना भगत सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग। साथ ही सुनेगा आज का प्रश्न और बाजार भाव। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। श्रोताओं आपको एक बार फिर बता दें अभी दोपहर 2 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ और शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में आज का विषय होगा साइंस एंड टेक। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षणमुख प्रिया सुनिएगा रात 10 बजे।

0: स्वागत है सभी सखियों का आज की बिंदिया में। आप सभी को जुनेदा का स्नेह भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप, क्या हालचाल है? वैसे बहनों गर्मी से तो हम सभी हैं बेहाल। तपते झुलसाती गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है और अब तो यही लग रहा है कब रिमझिम बरसती फुहारें तन मन को गर्मी से राहत देना है। बहनों हर मौसम में चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि मौसम के अनुसार ही हमारा खान पान रहन सहन पहनावा हो। वहीं बहनों रोज़मर्रा की व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा समय निकालें, सुबह सैर पर जाएं, हल्का व्यायाम योगा करें। वहीं स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए बहनों खेलों का भी अपना महत्व है। बहनों हम आपको बता दें कि हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इस दिन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के खेलने के अधिकार को मान्यता देने, खेलों को संरक्षित करने और खेल के महत्व को बढ़ावा देना है। बहनों खेल बच्चों के संपूर्ण शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव है। आज हम देख ही रहे हैं बहनों कि महिलाएं भी खेल जगत में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। नियमित खेल गतिविधियां हृदय को मजबूत करती हैं, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाती हैं, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर रहता है और वजन भी नियंत्रित रहता है और चिंता मानसिक तनाव भी दूर होती हैं। तो बहनों स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए खेलकूद आवश्यक हैं जो हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। और अब इस बातचीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया। फूल खिलते रहें जिंदगी की राह में, पूरी हो हर ख्वाहिश, साकार हो हर सपना, इसी कामना के साथ आगाज करते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो बिंदिया का, जिसमें होंगी आपसे बातचीत, साथ ही आप सुन सकेंगी अपनी पसंद के नगमे। सभी श्रोता बहनों का दिल से स्वागत अभिनंदन है। हेलो बिंदिया की खूबसूरत महफिल में देखते हैं फोन की घंटियों के साथ ये पहला कॉल हमारी किस श्रोता बहन का है।
1: हेलो
0: हेलो हेलो बिंदिया में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम
0: जी। कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं शैल गुप्ता ककाईडी दुर्ग से बोल रही हूँ मैडम।
0: अच्छा ये बताइए कि अभी का जो मौसम है उसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रही हैं?
1: अभी अपने घर में रहते मैडम, ज्यादा नहीं जाते बाहर।
0: अच्छा
1: और नींबू पानी शरबत सब पीते रहते, छाछ वगैरह बच्चों लोगों को भी देते हैं।
0: बिल्कुल, और स्वास्थ्य का ध्यान तो हम सभी को रखना चाहिए है ना। और क्या करती हैं आप?
1: मैं सिलाई करती हूँ घर में, दुकान अच्छी है मेरा सिलाई दुकान
0: जी। अच्छी बात है। लेडीज कपड़े सिलती हैं आप?
1: हाँ लेडीज कपड़े बनाती हूँ, बैग बनाती हूँ।
0: अच्छा अच्छा हाँ, मतलब आप कैरियर के रूप में इस मतलब हुनर को आपने अपनाया है ना?
1: हाँ अच्छा भी लगता है सिलाई वगैरह करना।
0: हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास अगर कोई हुनर है ना तो हम उसको अपना कैरियर बना सकते हैं और अपना जो हुनर है उसे हम निखार सकते हैं। ये बताइए कि आज आप हेलो बिंदिया में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म कटी पतिंग का है मैडम, कोई सा भी गीत सुना दीजिए।
0: अच्छा

0: हेलो।
1: हाँ हेलो बिंदिया, मैं आपका स्वागत है जी। कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: नमस्कार,
1: नमस्कार
0: चतुर्वेदी
1: जी।
0: राजनांदगांव जिला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टेढ़े फेरा
1: जी।
0: मैं अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हूँ मैम।
1: अच्छा, और क्या शौक है आपके?
0: मैम मैं स्कूल में 2005 से मेरे द्वारा नवाचार किया जा रहा है
1: जी।
0: और नवाचार का टाइटल ये अभाव से भाव तक। इसमें मैं अपने विषय जो अंग्रेजी विषय है उसमें बच्चों को उस पाठ्य पुस्तक से जो इंग्लिश के पोएम्स है उसको लोकगीत के माध्यम से उन्हीं की भाषा में उनको सिखाती हूँ
1: जी।
0: सारे पाठों को मैं रोल प्ले के माध्यम से करवाती हूँ। साथ ही साथ मैं आसपास के गांव के 70 बच्चों को गोद लेकर के म्यूजिक की शिक्षा दे रही हूँ, संगीत की शिक्षा, और उनके एग्जाम दिलवा रही हूँ ताकि भविष्य में वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसी कड़ी में मेरे को कई सारे अवार्ड मिले हैं मैम
1: जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो हाँ,
0: मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं अपने व्यावसायिक शिक्षा के तहत आसपास के बच्चों को इस काबिल बना सकूं कि भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके।
1: जी हाँ, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप।
0: मैं अपना वर्क कर रही हूँ
1: जी। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये बताइए कि जैसे अभी जल प्रदूषण के बारे में हम बात करें और या जल संरक्षण के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? पानी की बचत के क्या उपाय करती हैं आप?
0: पानी के बचत के लिए तो मैं हम विद्यालय में भी बच्चों को वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में समझाया जाता है। इको क्लब के माध्यम से हम अपने विद्यालय में प्लांट लगाते हैं ताकि हम ग्रीनरी मेंटेन कर सकें और बच्चों को पानी के बचत के बारे में डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो अच्छी तरह चीजों को समझ सके। और आसपास भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को और हम खुद ही पानी की बचत करें और अच्छा काम कर सके।
1: जी हाँ, तो हम जल का संरक्षण करें और छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम अपना कर हम महिलाएं काफी पानी की बचत कर सकती हैं। ये बताइए कि आज हेलो बिंदिया में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: मैं इसमें सुनना चाहूंगी हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे।
1: जी हाँ, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो बिंदिया में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ हेलो बिंदिया, में आपका स्वागत है।
0: डॉक्टर सुनीता पवार बोल रही थी।
1: हाँ जी, हाँ कहिए
0: जी। मुझे ये नाम गुम जाएगा लता मंगेशकर की आवाज में जो गाना है काफी पसंद है।
1: हाँ गीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही। ये बताइए कि आप करती क्या हैं?
0: मैं कॉलेज में लाइब्रेरियन हूँ।
1: जी हाँ,
0: सेंट पैलोटी कॉलेज में।
1: जी हाँ, और आपके शौक?
0: मैं पेंटिंग करना, कविताएं लिखना, आर्टिकल लिखना।
1: जी, मतलब लेखन का शौक है आपको, है ना?
0: लेखन का शौक है
1: जी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी महिलाओं में अगर कोई प्रतिभा है तो हम उसे निखारें, आगे आएं, है ना, और कामयाब हों। तो आपको पुराने गीत पसंद है या नए गीत पसंद है?
0: पुराने गीत,
1: पुराने गीत ही क्यों पसंद
0: पुराने
1: है?
0: गीते जिंदगी से जुड़े हुए महसूस होते हैं।
1: जी,
0: उनकी जो भाषाएं हैं वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो रिलेटेड हैं। अच्छा लगता है उसको सुनने के बाद।
1: जी, तो आप क्या कविताएं भी लिखती हैं?
0: जी मैम, कविताएं भी।
1: तो आप कुछ मतलब कुछ कहना चाहेंगे?
0: एक चाहत होती है नारी के अंदर,
1: जी,
0: तो वो चाहत जो है वो मैं कविताओं के थ्रू जो है वो बयां करना चाहती हूँ। समंदर ना सही, नदी की धारा ही बन जाऊं। समंदर ना सही, नदी की धारा ही बन जाऊं। बस इतना ही चाहा था मैंने, बस इतना ही चाहा था मैंने कि इस महफिल में मैं भी अपना नाम मशहूर कर जाऊं। समंदर ना सही।

0: मेरा नाम कुमारी जामेश्वरी शाह है, मैं ग्राम कोटेना पोस्टपन का जिला गरियाबंद से बोल रही हूँ
1: जी। तो ये बताइए आप करती क्या हैं?
0: मैं अभी ना पढ़ाई कर रही हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ।
1: अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कौन सी क्लास में है अभी?
0: अभी मेरा एम ए वगैरह कम्प्लीट हो गए हैं दीदी, फिजिक्स से सब कम्प्लीट हो गए हैं, वही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चल रही है।
1: तो क्या बनना चाहती हैं आप?
0: मैं ना इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, और खाली समय में और क्या करती हैं, आपके शौक क्या है?
0: खाली समय में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ।
1: जी ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आज आप हेलो बिंदिया में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी, नए गीत सुनना चाहेंगी या पुराने गीत सुनना चाहेंगी?
0: नया गीत मेरा हाथी मेरे साथी का सुना देना ना।
1: कौन सा गीत? हाथी मेरे साथी का।
0: अच्छा वो नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, वो वही वाले गाने को सुना देना।
1: अच्छा हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत हेलो बिंदिया में। फोन करने के लिए बहुत

0: हेलो बिंदिया मैम, आपका स्वागत है।
1: हेलो
0: हेलो जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं भिलाई से बोल रही हूँ, मंजू चौरसिया।
0: जी हेलो बिंदिया मैम, आपका स्वागत है। जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं हाउस मेकर हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज कल हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि परिवार बिखर रहे हैं, कलह तनाव, मनमुटाव जैसी स्थिति देखी जा रही है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, वैवाहिक जीवन में दरार आ रही है, तो इन सब के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? आपके विचार हम जानना चाहेंगे।
1: मैडम इसके लिए तो मैं यही कहूँगी, सामाजिक परिवेश जिम्मेदार होता है
0: जी।
1: और सामाजिक परिवेश के साथ साथ जो अभी वर्तमान समय में जो मोबाइल क्रांति आई है ना
0: जी, हाँ,
1: इसके कारण भी लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है और लोगों में हिंसा बढ़ रही है क्योंकि उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो सोचने का जब टाइम नहीं मिलता, पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो जो सोच नहीं पाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो निकलता ही है फ्रस्ट्रेशन। तो इसके कारण हिंसा बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं और टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और पूरा टाइम वे मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं। तो इस कारण से हम अपने आप को समय नहीं देते हैं सोचने का, जिसके कारण ये सब घरेलू हिंसा बढ़ रही है। भावनाओं को नहीं समझते, संवेदनाओं को नहीं समझते, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मोबाइल क्रांति ही है
0: जी। तो आपके विचारों से हमारी और भी बहनें अवगत हुई। रिश्तों में आपसी सामंजस्य, सहयोग, विश्वास की भावना बहुत जरूरी है, तभी रिश्तों की डोर मजबूत होती है और परिवार खुशहाल रहता है। और ये बताइए कि आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मेरा शौक तो मैडम सबसे ज्यादा है कि घूमना मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना भी, नई नई रेसिपी ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है और फैशन भी मुझे बहुत पसंद है, अच्छे कपड़े ये सब मुझे बहुत पसंद है, नई चीजों को ट्राई करते रहना, प्रयोग धर्मिता ये मेरी हॉबी है।
0: अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बताइए कि आप गीत संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि है?
1: हाँ बिल्कुल, मुझे गीत संगीत में पूरी रुचि है मैम।
0: तो आज आप हेलो बिंदिया में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं हेलो बिंदिया में

0: डीडीएलजे फिल्म से तुझे देखा तो ये जाना सनम फिल्म का गीत सुनना चाहूंगी।
1: तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो बिंदिया में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

ज्ञानम। और अब हेलो बिंदिया से अनुमति दीजिए। नमस्कार बहनों, ये था हेलो बिंदिया। हेलो बिंदिया के लिए वाचन स्वर था जुनेदा खान का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रकाश उदय। बहनों, हम आपको बता दें कि हेलो बिंदिया की रिकॉर्डिंग प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को होती है और हेलो बिंदिया प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को प्रसारित होता है। अगले हेलो बिंदिया के लिए आप हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 4003482, दूसरा नंबर है 4003483 और तीसरा नंबर है 4003484। रायपुर से बाहर की श्रोता बहनें इन नंबरों के पहले रायपुर का एसटीडी कोड 0771 लगाएं। अगले हेलो बिंदिया के लिए हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। बहनों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने पत्रों और ईमेल के माध्यम से अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत जरूर कराइएगा। और अब दीजिए अनुमति सभी श्रोता बहनों को जुनेदा का नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम बिंदिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गोट सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारी को

0: चंदा
1: और सूरज के तरफ ले जय बिहार।
0: सूरज दीदी बस एक मिनट है,
2: कैसे कर सकते हैं दीदी मन संग गोट करेल छोड़ के ते मोबाइल में अधिक का जरूरी दीदी से
0: मैं दीदियों का ही काम कर रही हूँ।
2: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे भाई कि मेरी मामी की बेटी की जो ननद है ना, उसने 36 कला ब्रांड के कुछ उत्पाद के ऑर्डर्स के लिस्ट भेजी है और मैं उसे ही हमारे स्व सहायता समूह की दीदियों को भेज रही हूँ।
2: भोरा होगी कोई मैं कहा जाना था यार। वैसे एक बात तो है चंदा।
0: का दीदी?
2: हमर बिहान के दीदी मन बहुत बढ़िया बढ़िया गुणवत्ता वाले जिनिस बनाते
0: हैं। हाँ,
2: जैसे बेल मेटल है, कोसा है, माटिक सामान है, मिलेट कुकीज हो गए।
0: हाँ,
2: तो ये कह सकते हैं कि हर जिनिस के उत्पादन करते हैं हमारे दीदी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दीदी इसमें अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मानकीकरण जो है ना वो बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा खुद का एक ब्रांड 36 कला लाया गया।
2: और 36 कला ब्रांड छत्तीसगढ़ के नारी मन के सृजन के चिन्हारी आवे। कोसा सिल्क के ताना बाना ले लेके बाजार में मांग के अनुसार सब सामान के उत्पादन भर लगे स्व सहायता समूह के लाखों दीदी मन के आत्मनिर्भरता के निशानी आवे,
0: जिसे एक नाम देकर 19 नवंबर 2025 को 36 कला ब्रांड का शुभारंभ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था।
2: हो दीदी हो, 36 कला ब्रांड के शुभारंभ हमर बर गर्व और तरक्की के आधार आवे।

0: सुरुज दीदी, छत्तीस कला एक नाम से कहीं बढ़कर एक समान गुणवत्ता, भरोसेमंद बाजार, हर एक ग्रामीण शिल्पकार दीदियों के लिए एक स्थायी आजीविका का वादा है। वर्तमान में छत्तीस कला ब्रांड के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री विभिन्न माध्यमों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन बाजार, ट्रेंडिंग चैनलों एवं गिफ्टिंग सेगमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक की जा रही है।
1: और जाना था चंदा
0: का दीदी,
1: बिहान के अंतर्गत दीदी मन, महिला उद्यमी मन के बनाए उत्पाद मन के ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और कीमत में बढ़ोतरी ला बढ़ावा दे खातिर ग्रोथ सेंटर के स्थापना करेगी से। और वर्तमान में बस्तर और सरगुजामा दो ग्रोथ सेंटर चलाए जावत हवे।
0: ग्रोथ सेंटर के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया है। दोनों ग्रोथ सेंटरों में 10-10 महिला उद्यमी काम कर रही हैं और इन ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सहयोग कर रहे हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में PwC संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है।
1: बस्तर के ग्रोथ सेंटर में हरदी, मिर्चा, धनिया, तिखुर, अमली के रोटी, बेल मेटल, मिलेट कुकीज असन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करे जावत हवे।
0: ऐसे ही सरगुजा के ग्रोथ सेंटर में सरसों के तेल, जीरा फूल चावल, विष्णुभोग चावल, मोरिंगा पाउडर, शहद, कोसा उत्पाद जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जा रही है। वर्तमान में 16 उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत की जा रही है। सुरुज दीदी, जल्दी ही निकट भविष्य में 25 उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत होने लगेगी। तो आइए दीदियों, समृद्धि सरगुजा संकुल संगठन अंबिकापुर के अंतर्गत उजाला स्व सहायता समूह ग्राम

0: अलीगढ़ की कोषाध्यक्ष श्रीमती हेमंती रजवाड़े से जानते हैं कि वो कैसे ग्रोथ सेंटर का संचालन कर रही हैं।
1: जय बिहान दीदी।
2: जय बिहान दीदी।
3: दीदी तो अपन बारे में बताते।
2: दीदी पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, समूह के जुड़ने के बाद एक रोजगार मिला। फिर हम लोग का जो काम करते थे जैसे सरसों तेल, जीरा फूल, चावल, मोरेंगा पत्ती का, तो उसमें अच्छा से प्रॉफिट भी नहीं होता था, मार्केट भी नहीं पाते थे हम लोग। रोज सेंटर में सरसों तेल हो गया, मोरेंगा पाउडर हो गया, जीरा फूल चावल हो गया, विष्णु भोग चावल हो गया, उसको लाते हैं हम लोग। उसके बाद उसको छटाई वटाई बिनाई करके उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें पैकेजिंग करते, जिसमें कि हम लोग का 36 कला ब्रांड है, जिसमें उसका GST बिल है, FSSAI लाइसेंस है, लैब टेस्ट हुआ है, जिसमें उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको पैकेट में बेचते हैं हम लोग 36 कला ब्रांड में, तो कर पैसा ज्यादा मिलते। मैं जो ऑन फ्लिपकार्ट उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है, 36 कला ब्रांड हो गया ना, एक लेबल हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड लेबल का होता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ सेंटर में भी काम दिया जाता है दीदी, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में जुड़े के बाद बहुत आगे निकल गई हूँ, सरस मेला था अभी भोपाल में, रायसेन में, वहाँ जाने का मौका मिला, मंत्री लोग से भी मिलने का मौका मिला, यहाँ रायपुर भी आने का मौका मिला। मतलब ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। स्कूटी खरीद ली हूँ बैटरी वाला, जिसे कि मैं अपने घर का जरूरत को पूरा कर पाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं उसको भी पढ़ा पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में दे पा रही हूँ, तो मेरे समूह के दीदी लोग भी लखपति दीदी बन गए हैं। ये सब बिहार का ही देन है दीदी, और लखपति दीदी बने इसलिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती।
0: वाह दीदी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। पता है सुरुज दीदी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत एकल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत 36 कला ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीयन कराया गया है।
3: हो गई।
0: और ऐसे में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के लिए अधोसंरचना विकास, बाजार तक पहुंच और उपयोग, ब्रांडिंग, पहचान और तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सहयोग उपलब्ध कराना संभव हो रहा है। तो आइए हमारी दीदी श्रीमती सुनीता, ग्राम चिलकुटी, जिला बस्तर से मिलते हैं।
1: जय बिहान दीदी।
2: जय जय बिहान दीदी। मैं अभी जीवन ज्योति महिला क्लस्टर की सचिव हूँ और ग्रोथ सेंटर अभी संचालन कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो ग्रोथ सेंटर में आप क्या काम करती हैं?
2: ग्रोथ सेंटर में जैसे मैम हम लोग का अभी 36 कला ब्रांड अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस रस में अभी दिख रहा है, तो जैसे बाहर से भी कोई कोई ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए उनका ऑर्डर आता है ना, तो मेरे ही मोबाइल में OTP आता है। हम OTP को एक वेबसाइट है उसमें जाके OTP नंबर यानी कि वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाता है कि आपका ये ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आया है, फिर उसके बाद उस हिसाब से हम लोग ना फिर उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद डिलीवर बॉय आता है और उसको फिर डिलीवरी कर देते हैं।
0: पहले आप बिहार से जुड़े थे तो आप क्या काम करते थे, और अब ग्रोथ सेंटर में काम करने के बाद आपको कैसा लगता है?
2: मैम पहले बिहार में जुड़ी थी तो खाली समूह में ही थी मैं, और जैसे मैं क्लस्टर में जुड़ी हूँ, क्लस्टर में जुड़ने के बाद ही ग्रोथ सेंटर में जुड़ी हूँ। और अभी ग्रोथ सेंटर के माध्यम से यानी की अच्छा अच्छा चीज जानने को मिल रहा है। मैं कभी रायपुर नहीं आई थी, मैं फर्स्ट कवाई बोलने से यहाँ सरस मेला वहाँ पे आई थी, हम लोगों का बैचलर मीट हुआ उसमें आई थी, तब मैं रायपुर आई थी।
0: अच्छा।
2: आपको और एक बात बता रही हूँ, जैसे समूह की दीदियाँ बना रहे थे सामान, वो सामान का ना उचित दाम नहीं मिल रहा था और ना ही पैकेजिंग ठीक थी और उनका पसाई नहीं था और लाइसेंस भी नहीं था। अभी जैसे हम ग्रोथ सेंटर में समूह की दीदियाँ मन देना स्टार्ट किया है तो उनका पैकेजिंग अच्छा हो रहा है, उनका ब्रांडिंग भी अच्छा से कर रहे हैं और दाम भी अच्छा ही मिल रहा है उनको। और एक बात कहना चाहती हूँ, 36 कला ब्रांड को ना 40 सुपर मार्केट स्टोर में अभी हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग ना करीबन बस्तर में 4 लाख तक का बिक्री कर चुके हैं और सरगुजा में 2.5 लाख तक बिक्री कर चुके हैं।
0: तो सबके जीवन में क्या बदलाव आया है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो?
2: मैम बदलाव तो बहुत आया है, मैं ही देख लो, मैं पहले घर पे ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी जैसे मैं समूह में जुड़ी, क्लस्टर में जुड़ी, उसके बाद फिर ग्रोथ सेंटर में जुड़ी, अभी मैं कहीं भी जा रही हूँ वैसे ही समूह की दीदियाँ जो अभी समूह में जुड़े हैं, जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो हम लोग के ग्रोथ सेंटर में दे रहे हैं, तो उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है और उनका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुधर रहा है
0: और आत्मविश्वास
2: बढ़ रहा है। दीदियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो भी सामान बना रहे हैं, मैं दीदियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने उत्पाद ग्रोथ सेंटर के माध्यम से

0: बेचे जिसे आपको अच्छा दाम मिलेगा और आपके उत्पाद को छत्तीस कला ब्रांड के नाम पर राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर पहचान भी मिलेगी।
1: सुनत है चंदा, स्व सहायता समूह के दीदी मन छत्तीस कला ब्रांड ले जुड़ के आर्थिक रूप ले सशक्त बनत हावे।
2: और इसी कड़ी में दोनों ग्रोथ सेंटर ने अमेजोन के साथ MOU भी किया है। SHG उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, रिलायंस मार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में विक्रय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुबंध किया गया है। ऐसे में वे कैसे ग्रोथ सेंटर से जुड़कर अपने उत्पाद को आसानी से बेच पा रहे हैं, आइए जानते हैं। आप है श्रीमती डालिम बघेल और श्रीमती रुद बघेल दीदी, जिला बस्तर से।
3: जय बिहान दीदी।
4: जय बिहान दीदी।
2: डालिम बघेल दीदी, आप क्या काम करती हैं?
5: हम टिकूर उत्पाद करते हैं।
2: ग्रोथ सेंटर से आप कैसे जुड़ी और उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा?
5: पहले ना हम लोग बाजार में ले जाते थे, कभी ऑटो मिलता था कभी नहीं मिलता था, जैसे बाजार में कभी कम दाम में बेचते थे और कभी इनकम होता था कभी नहीं होता था। जब हम लोग को ना ग्रोथ सेंटर खुला है बोल के दीदी लोग से पता चला, तभी हम लोग ना ग्रोथ सेंटर में दीदी लोग को दिए, तभी ग्रोथ सेंटर से हम लोग को दुगना फायदा हुआ। मार्केट में है ना 500-600 किलो में बेचते थे और जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े तभी हम लोग 1 किलो 1,000 में बेचने शुरू किए और घर बैठे ग्रोथ सेंटर से हम लोग माल देने शुरू किए।
1: रूप बघेल दीदी, आप जिससे हल्दी के उत्पादन लेते हो, तो ये ग्रोथ सेंटर और छत्तीस कला ब्रांड से आप कैसे जुड़े हो?
6: हमारे ग्राम पंचायत के आम सभा बैठक में दीदी लोग बताए कि ग्रोथ सेंटर में कच्चा माल लिया जाता है। आप अपने घर मतलब घर में हल्दी का उत्पादक करते हैं तो कच्चा माल आप हमें बेच सकते हैं। पहले हम लोग को मार्केट में जाके बेचना पड़ता था, लेकिन जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े हैं तो उसमें हमको फायदा होती है। और उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि दीदी लोग घर में आके हमारे कच्चा माल लेके जाते हैं, उनको बाहर वाले को देना नहीं पड़ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जिस ग्रोथ सेंटर में मैं अपना माल दे रही हूँ उस मेरे ही समूह के दीदियां हैं, मेरे ही ग्रोथ सेंटर के दीदियां हैं और मेरे छत्तीस कला ब्रांड की दीदियां हैं।
1: तो सुरता रखो दीदी हो, छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गुणवत्ता और स्थानीय उत्पाद मन ला नवा पहचान भी देवत हवा।
2: बिल्कुल, ये विश्वास की बुनियाद है आपका अपना रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट। इसमें हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
1: ये टोल फ्री नंबर में सवाल पूछे हैं महामाया स्व सहायता समूह सांकरा ले भारती ध्रुव, जय संतोषी स्व सहायता समूह जरगांव ले मोहनी बाई साहू, एकता स्व सहायता समूह भैंसापारा ले दिनेश्वरी, जय संतोषी स्व सहायता समूह किरवई ले संतोषी, जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह ले दुर्गेश्वरी साहू आप है भैंसापारा ले, प्रज्ञा स्व सहायता समूह समरिया ले लक्ष्मी, सरस्वती स्व सहायता समूह खनौदा ले मधु खरे, माता सुरका स्व सहायता समूह ले देवतीन बाई साहू आप है बोरी कारका ले, माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह सिरसा ले प्रणीता तिवारी और जय शीतला स्व सहायता समूह सुढ़ी ले तलेश साहू। और पूछे गए सवाल मन ले आज एक सवाल लॉटरी निकाल के चुने हैं, ये माँ लड्डू गोपाल स्व सहायता समूह सरस्वती समूह ग्राम पंचायत छिनौला ले पूछे हैं, रागी लड्डू बनाथन तो एकर मार्केटिंग कैसे करन और छत्तीस कला ब्रांड ले कैसे जुड़ सकथन?
2: रागी लड्डू की मार्केटिंग के लिए सर्वप्रथम लड्डू निर्माण के समय SOP का पालन करें। उत्पादन की पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग छत्तीस कला ब्रांड के अंतर्गत करने के लिए बिहान कर्मचारियों से संपर्क करें और ग्रोथ सेंटर से जुड़कर लड्डू की मार्केटिंग कर सकते हैं।
1: तसुरता रखो दीदी हो, एक छोटे से गाँव के दीदी मन के कला मेहनत और पहचान ले लेके देश दुनिया तक ये यात्रा आवे महिला सशक्तिकरण के यात्रा।
2: और दीदी ये कहानी है रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की, पहचान है छत्तीस कला ब्रांड की।
1: अब अपन पहचान ले सम्मान के रास्ता में बिहान संग कदम मिला के मिल के बढ़वो।
2: हाँ,
1: यही परन संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के गोठ लेके फिर मिलवो।
2: हो
1: तब तक बर देवो विदा,
3: जय जोहार, जय बिहान दीदी के।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ, ही आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सर
7: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत

0: के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30

0: प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।

0: मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम के स्वर में अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। संगीत मदन मोहन का था और फिल्म का नाम था गजल। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे

0: तक चलते जेमा तहां मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
0: एक संग युवाणी।

लता मंगेशकर और भूपिंदर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना। संगीत बप्पी लाहिरी का था और फिल्म का नाम था आंगन की कली। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम नागिन। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना वर्मा मलिक की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत राहुल देव बर्मन का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित

0: प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण के देश में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी है। इन स्पेस ई केंद्र सरकार के सहयोग से गुजरात के खोराज में अत्याधुनिक स्पेस पार्क विकसित करेगा। इससे उन्नत तकनीकी सुविधाएं जैसे जलवायु परीक्षण कक्ष, द्रव्यमान गुण मापन प्रणाली, चुंबकीय क्षेत्र परीक्षण और पृथ्वी अवलोकन से जुड़ी सुविधाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य नवाचारों को अंतरिक्ष से जुड़े उद्योगों सहायता प्रदान करना है। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country.

रही हो, इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते हैं शो का आगाज 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप ही का शो है जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के नगमे जो आप हमें भेजते हैं अपने मैसेजेस के जरिए। कहाँ पर? एग्जैक्टली यहाँ पर 9868686753 है नंबर और आप सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। और जब तक आप अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते हैं, मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सबकी नज़र करती हूँ।

आपके बेशुमार मैसेजेस इस बात का अंदाज़ा लगवाते हैं कि आप एफएम गोल्ड से कितनी मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत से हम तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो देखें किन का मैसेज हमें मिला है। सबसे पहले ये जो हमें मैसेज मिला है, एचआर पांड्या हमारे साथ हैं जो कि गुवाहाटी से हमको मैसेज करते हैं, बहुत दूर से इनका मैसेज हमको मिला है। अनंत वाडे हमारे साथ हैं जो कि हमें मैसेज करते हैं। इसके अलावा राधेश्याम देवांगन हैं, प्रवीण रानपारा हैं हमारे साथ, हरजिंदर शिंदे भी हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। इनका मैसेज हमें कहाँ से मिला है, गांव नवाथा से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। इसके अलावा कौन है, किशन वंजानी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, मास्टर अशोक कुमार हमारे साथ हैं, विजय सुरलकर हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में, परवीन सोनी का मैसेज भी हम तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा शमसुल कमर राही गंज डुड़वारा से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, अमोल मनकर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा कौन है, स्वरण सिंह हमारे साथ शामिल हैं जो कि बहुत खूबसूरती के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका पूरा परिवार प्रोग्राम को सुन रहा है और बहुत पसंद भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कौन है हमारे साथ जुड़े एफएम गोल्ड पर। तुलसी मस्कीन का मैसेज भी हम तक पहुंच चुका है और मोहसिन हाशमी भी हमारे साथ शामिल हैं, बस्तीगंज डुरवारा से इनका मैसेज हम तक पहुँचा है। इसके अलावा कौन है, दीपेश वर्मा हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। और देखें कौन है, गणेश सूतर भी हमारे साथ हैं, कोल्हापुर से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। मसरूर हसन का मैसेज भी हमको सहारनपुर से मिल चुका है। इसके अलावा कौन है, कौसर भी हमें मैसेज करती हैं, कहां से इनका मैसेज आया है, कौसर भी हमें मैसेज करती हैं। इसके अलावा ताज मोहम्मद हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। और आगे बढ़ें, देखें कौन है हमारे साथ, मस्कीन दादा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अब बहुत खूबसूरती से शो सुनते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको मैसेज करते हैं और बहुत बहुत मोहब्बतें भी जाहिर करते हैं अपने मैसेजेस के ज़रिए। देखें अगला मैसेज कौन है भेजने वाला। सुनीता अग्रवाल हमारे साथ हैं, लवी और अभिमन्यू उनके साथ शामिल हैं, मंडी से इनका मैसेज हमको मिला है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, फिल्म आँखें का ये गीत है। चलिए

तरह हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इनके साथ इनका पूरा परिवार है। जनकपुरी सहारनपुर से इनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा हमारे साथ हैं शामिल रेडियो की आवाज़। रेडियो की आवाज़ में बहुत सारे हमारे सुनने वाले इस ग्रुप में शामिल हैं जिनका मैसेज हम तक पहुंचा है। संदीप मक्कर का मैसेज भी हमको मिल चुका है। इसके अलावा कौन है हमारे साथ शामिल? कल्पना झा का मैसेज हमें मिला है। इसके अलावा बबला का मैसेज भी हम तक पहुंचा है। कौन है? मुकेश बट्टा हमें मैसेज करते हैं। इसके अलावा है सुशांत प्रिया झा का मैसेज भी हम तक पहुंचा है और संदीप मक्कर का मैसेज एक बार दोबारा से हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखें कौन है और हमें मैसेज करने वाले। इसके अलावा हमारे साथ हैं सविता भाटिया है हमारे साथ गाज़ियाबाद वैशाली से। इनका मैसेज हमको मिला है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, चलिए उसको पूरा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत है, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा।

0: कभी कभी।
1: और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, देखें कौन है जिनका मैसेज हमको मिला है। हरजिंदर सिंह भाटिया हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। जॉन डी कैस्ट्रो

0: और यहाँ पर लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
9: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
8: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
9: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
8: और विनर्स को क्या मिलेगा?
9: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत

0: बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त बहुत खूबसूरती से, बहुत शिद्दत से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपने मैसेजेस भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, देखें कौन है जिनका मैसेज हमको मिला है। रामेश्वर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, प्रोग्राम उन्हें अच्छा भी लग रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हैं सुर संगम रेडियो की तरफ से तमाम श्रोता इसमें शामिल हैं जो कि इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इसके अलावा कौन है, मानक चंद्र राठौर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। सतीश अनेजा का मैसेज हमें मिला है, मनाली हिमाचल से इनका मैसेज आया है। अहमद बागवान हमें मैसेज करते हैं, हुकुम कर्माकर हमें मैसेज करते हैं, कहाँ से, मध्य प्रदेश से इनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा मोहम्मद कमर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। जगदीश जी हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा कौन है, अहमद बागवान दोबारा से एक बार इनका स्क्रीन पर हमें मैसेज शो हो रहा है। भारत भूषण है हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, कहाँ से, बेंगलुरु से ये हमें मैसेज करते हैं। इसके अलावा कौन है, मोहम्मद हसनैन पवार हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। यासीन अनजान हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, बिल्कुल शामिल हो चुके हैं। झारखंड से इनका मैसेज हमको मिलता है। निसार अली भी हमारे साथ हैं, धनौरी उत्तराखंड से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है जिनका मैसेज हमें मिला है। बोधराज खोरवाल हैं हमारे साथ, उत्तम नगर दिल्ली से इनका मैसेज हमको मिला है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, फिल्म लैला मजनू से ये गीत सुनना चाहते हैं। चलिए इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और आप तमाम सुनने वाले भी इस गीत को ज़रूर सुनिए।

और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है जिनका मैसेज हमें मिला है? जय है हमारे साथ जो कि हमें मैसेज करते हैं। इसके अलावा विनोद मूनत हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। उज्जैन से इनका मैसेज हम तक पहुंचता है। सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं शामिल प्रोग्राम में। अब्दुल गफ्फार भी शामिल हो चुके हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। अशोक डाले भी हैं, अनिल मोहन भी हैं शामिल जो कि हमें प्रोग्राम में मैसेज करते हैं। मास्टर खिल्लू परवेज का मैसेज भी हमें लखनऊ से मिल चुका है। इसके अलावा एक बहुत प्यारे से लिस्टर हैं जिनका मैसेज हमें मिला है। गिरीश बाम है हमारे साथ। शुक्रिया अदा करते हैं फिल्म ब्लैकमेल का जो गीत हमने सुनवाया। होता है ना ऐसा कि अगर हमारे कोई और श्रोता उस गीत को सुनना चाहते हैं और हूबहू वही पसंद हमारी भी हो तो वाकई में ये हो जाता है सोने पे सुहागा, और दिल खुश हो जाता है कि हम इस गीत को सोच ही रहे थे और वो गीत रेडियो पे अचानक से बजने लगता है। देखें बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है हमारे साथ जिनका मैसेज हमको मिला है? सुशांत प्रिया झा है हमारे साथ। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से ये गीत है। चलिए आप सबको भी सुनवाते हैं।

सुरेश नारंग है हमारे साथ, जिनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा राधे श्याम देवांगन हमारे साथ शामिल हैं, के आर साहू भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा उमेश कुमार हैं जो कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अहमद बागवान,

हमारे साथ हैं, इशाक मोहम्मद भी शामिल हो चुके हैं, अहमद फूल वाले भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, सुरेश नारंग भी हैं और धर्मेंद्र चीपा भी हमारे साथ हैं। कहते हैं कि काफ़ी टाइम से हमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन हम इनका नाम नहीं पुकार रहे थे। जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, जब आपका मैसेज स्क्रीन पर नज़र आता है तो यकीनन उसको पढ़ना बनता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आप समा जितने भी सुनने वाले हैं सबके मैसेजेस में शामिल करूँ। और आप जो भी बातें लिखते हैं, जो भी प्यार भरे मैसेजेस हमको पहुंचाते हैं, मैं कोशिश करती हूं कि उनको शामिल करूं। उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है दिल को, तो यकीन माने उसकी खुमारी जो है लंबे समय तक कायम रहती है और दिल करता है कि आप सबके नाम पढ़ दूं और बहुत अच्छे से कोशिश करूं कि आप तक अच्छे अच्छे गाने पहुंचे और आपको भी अच्छा लगे एफएम गोल्ड सुनते वक्त। चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। रफ़ीक पवार हैं हमारे साथ, जो कि फिल्म दो कलियां का एक गीत सुनना चाहते हैं। काफ़ी देर से इनका गाना जो है मैंने क्यू किया हुआ था, चलिए आपको भी सुनवाते हैं ये वाला गीत।

उत्तम सिंह जंघेल हमारे साथ शामिल रहे प्रोग्राम में, जिनकी पसंद का गीत जो हमने बजाया था इन्हें बहुत पसंद आया। इसके अलावा कौन है, जसवीर सिंह हमारे साथ शामिल है प्रोग्राम में, रमेश चंद्र कामड़े भी हमारे साथ रहे शामिल रहे प्रोग्राम में, और जिनके नाम मैं नहीं पढ़ सकी उनसे बहुत बहुत माजरत, फिर कभी कहीं किसी रोज़ आपके नाम ज़रूर पढ़ूंगी और आपकी फरमाइश के गीत भी बजाऊंगी। और चलते चलते ये खूबसूरत सा गीत आप सब सुनने वालों के लिए है।

मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। 4 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: भारत, एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको यह सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की है, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग

0: पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
1: जी।
0: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो
1: जी
0: स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था,
1: जी जी
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी।
1: जी
0: बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है।
1: ओके
0: 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी
0: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
1: जी
0: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते।
1: जी
0: परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है।
1: ओके
0: तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग
1: जी
0: गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
0: जी
1: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेष बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है,
1: जी
0: हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे
1: राइट देन, तो आप अभी CTC में
0: में।
1: हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
0: बेसिकली
1: हैं?
0: जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज

0: ट्रेनिंग सेंटर है
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज़ सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों,
1: ये आपको बहुत प्रिय है
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं। जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरेबली रहता ही था,
1: जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्ले बैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित

0: चाचा जी आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पर, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पर किए हैं और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला है उसे रख कर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास

0: जितना है उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे। हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य,
1: सब SSB कर रही है।
0: बिल्कुल SSB कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इस्टेब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंच पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया? क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे।
1: पनिशमेंट
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ, संथाल
1: जी
0: परगना में,
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में, फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया। आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
1: जी
0: चाहूँगा कि
1: प्लीज़।
0: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका,
1: जी
0: हमारे IG सर थे श्री संजय कुमार, हमारे DIG सर श्री सुमित जोशी,
1: जी
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के SP थे श्री YS रमेश,

0: उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफ्स थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई
1: जी
0: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई।
1: जी
0: और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब।

0: तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके,
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुँचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहाँ जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कॉम्पिटिशन है और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे जाके।
0: बिल्कुल,
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप
0: बिल्कुल
1: दे रहे हैं।
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी,
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल,
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती
0: हूँ। बिल्कुल,
1: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम

0: लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन. आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है? एक दूसरे से मिल सकते हैं
1: हाँ
0: शादी से
1: बिल्कुल,
0: पहले?
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की। जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है। तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो
0: जी पत्र.
1: कहिए,
0: ओके
1: तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और
0: ओके
1: वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो.
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की ज़रूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
0: जी
1: अलग
0: जी
1: अलग जगह
0: जी
1: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
1: जी
0: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क आ गया है.
1: जी
0: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं. तो उनका रुझान कैसा है? वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी
1: वो
0: जी
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
0: जी
1: हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है.
1: बिल्कुल
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स.
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
0: वाह,
1: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनके सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है। जी
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा हूँ.
1: बिल्कुल
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: राइट, मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और

0: कि आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ
1: थैंक
0: कि आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं महेश सिंह जी। कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन
1: अच्छा
0: लिख रहे हैं, आप
1: ओके
0: पहचान गए होंगे।
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद। विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर। यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ और AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का। सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी। जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल।
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पर देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके।
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है। अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स, अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे, कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं। जी।
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके।
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया।

0: तक से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है. और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग. और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाए.
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली. लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, AI का जमाना आ गया, आप लोग AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि AI के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही.
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है. और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है.
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल.
0: CTC श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद.
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद.
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है. जय.
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा. साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को. शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश. लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं.
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ.
0: अच्छा.
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना,

0: तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था। और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने
0: जी
1: गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं।
0: नहीं, बस यही यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ
1: ये
0: होता
1: मौका
0: है,
1: अच्छा है, आकाशवाणी पर माइक पर
0: बस नहीं
1: गुनगुना सकते हैं।
0: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
1: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल, 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 5 बजने को है हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा

0: निकोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल धरमजयगढ़ बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 73 है। ये लुटान पुरुंगा बनहर औरानारा करोंधा जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल की करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलिया भाटा भेलवाटार सर्दूकला सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई कोदवारी भूडूपानी कठमोरगा लालपुर परला चोटिया कापानवापारा खड़पड़ी बनिया झुनकीडी बांधापारा कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगुरसिया जुनवानी कशडोल बुलेकेरा चिमटापानी कया कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडईपानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:25 पर सुनेगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम साइंस एंड टेक। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनेगा उस्ताद अब्दुल करीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षडमुख प्रिया। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोट का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। पहुना जोहार में सुनेगा लोक गायक शेख अमीन से नीलेश साहू और नीलिमा साहूली कोटबात। इसके अलावा होगा क्रम हमर गांव। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे शिव दयाल पटपरिया और उनके साथी। और रात 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगी सीमा कौशिक। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात में चर्चा होगी वर्षा के पानी ला बचाओ भविष्य ला सुघर सुघरावो। किसानवाणी में आज की सलाह इस क्रम में आप सुनेंगे सतत पशु आहार हेतु हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन तकनीक। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर वंदना भगत, सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर और चित्रपट संगीत

सुनेगा शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। तो ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको बता देते हैं हमारे केंद्र से कल की सभा से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रात 9:25 पर सुनेगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिले में सुनेगा IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे दीपक हटवार। कार्यक्रम नवाब बिहान में सुबह 9:00 सुनेगा नमो ड्रोन योजना से लाभान्वित श्रीमती चित्ररेखा साहू से बीरभान साहू की गोड़ बात। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित अभय नारायण मलिक का राग तोड़ी में ध्रुपद गायन। और रात 10:00 इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे इन्हीं का गाया राग बागेश्री में धमार गायन। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे पंडित सपन चौधरी का तबला वादन। प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम अनुराग धारा में भोजपुरी गीत सुनेगा सुबह 11:05 पर, जिसमें कलाकार होंगे गणेश पंडित और उनके साथी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दिन में 12:00। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमारा थी हमर गोट और एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुन सकते हैं कल शाम 6:30 पर। युवाणी कल सजेगी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा विश्व बाल श्रम के विरुद्ध दिवस, खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। और युवाणी आप सुनेंगे कल शाम 5:10 पर। कल शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात आधारित होगी SRI विधि अपनाओ ज़्यादा आमदनी पावाओ। हेलो चौपाल में फलोद्यान लगाने की तैयारी और उसका प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी देंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे मोनिका जैन और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 5:10 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: मेहनत पसीना हर बूंद ले, सपना जोन गुथ थे, हार जीत के सबक लेके जिम्मा जोन उठा थे।
1: जोन खिलाड़ी चुनौती मल्ले डरे नहीं, उही सफलता के नवा आगासला अमर थे।
0: खेल कूद के गोड बात संग हाजिर हो गए हन आप जम्मो संगी मन के तीरमा, तलेवा झोंका अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
1: असंगमा मैं हाव दामनी सेन डाले मया भरे
2: जोहार।
1: कैसे थनेश्वरी, संझा को लगा रहे फोन तोला, बड़ ढंग ले बात नहीं हो पाई से, लैका मन के अब्बड़ कुल्हार परत रही से।
0: हाँ दामनी, लैका मन हा दिन भर घर में रही थे और जैसे ही सांझ होते ना गली में बेट बाला धर के क्रिकेट खेले बर जुरिया जाते, उकरे कोल्हार तो आए संगी।
1: यही तो एक उम्र आए संगी जिमे लैका मन पढ़ाई लिखाई के संगे संग खेल कूदई में रुचि रखते, अपन मन पसंद के कला ला खेल ला सीखे में रुचि रखते।
0: और जानथस दामनी,
1: हाँ
0: मोर घर के बाजू मा एक झन लैका हावे,
1: हाँ
0: जे हा प्ले स्कूल में जाते,
1: हाँ हाँ
0: एक दिन स्कूल नहीं जाओ कही के बिकट रोवत रही से,
1: हाँ
0: तब मैं पूछ पा रही हूँ काबर रोवा थे कही के,
1: हाँ हाँ
0: तब बताई से की स्कूल नहीं जाओ कहा थे नोनी कही के,
1: तहन का हो इसे
0: तहान मैं हके हाँ समय ले पहली काबर जोर जबरन तुमन भेजा था वो लैका लगे के,
1: हाँ
0: ओकरो मन ला तो समझो,
1: हाँ
0: तहान वो दीदी कही से कि थोकन सीख जाही आदत।

0: ही बने लइका मन सन घोल मिल जाही करके भेजथन
1: हाँ।
0: तहन मैं कहूँ सीख जाही सब सीख जाही दीदी ए लइका
1: हाँ।
0: समय म सबो सीखी
1: हाँ।
0: ओखर मन हा घर म रह के खेले के ही घर देर के लइका मन संग खेले में ही सीखत हे और संग म परिवार के बीच म रह के पलत बाढ़त हे तो बिल्कुल संस्कार के संग बहुत कुछ सीख जाही।
1: बिल्कुल सही बात कहे थे से। फिर यहू बात है लइका मन ला नानपन में जैसे सीखोबे समझावे बताए रेबे लइका मन उही ढंग ले आगे ले बढ़े लगते। ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के माहौल तौर तरीका व्यवहार मन लइका के आचरण विचार के बरोबर बना के रखना चाहिए।
0: कई जन लइका मन ऐसे गला होते कि बहुत तेज दिमाग वाले कोनो भी बात ला झटकुन समझ जाते
1: हाँ।
0: स्मरण शक्तियों कर तेज रहते
1: हाँ।
0: पढ़ाई में भले थोकन मन नहीं रही फिर अपन पसंद के जोन खेल में बहुत रुचि दिखाते।
1: एमा कोनो बुराई नहीं है थनेश्वरी बल्कि ये बात ला लइका मन ला माता पिता ला समझना है कि पढ़ाई संग खेल कूद घलो जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: और एमा ओखर भविष्य के रद्दा ला लेके आगू के तैयारी करना चाहिए।
0: बिल्कुल हाँ। और नामनी ननपन मा लइका मन के तन मन मा स्फूर्ति रहते
1: हाँ?
0: दिन भर के खेल कूद ले शरीर हा तंदुरुस्त
1: हाँ?
0: और मन हा घलो शांति ले भरे रहते जेखर ले शारीरिक विकास मा बड़ मदद हो जाते
1: हाँ। सितन के स्थिति फिर मैं हा सुने हो ते हा कबड्डी वॉलीबॉल खो खो मा अपन स्कूल मा चैंपियन रहे और क्रिकेट मा अपन गली के संग मा बड़ लाउड कराते बड़ लइका मन लाते हैं।
0: एकदम सही सुने दामनी मन तो अभी घला वो चैंपियन वाला ननपन ला सुरता करके मुस्का जाते
1: हाँ?
0: और लगते कि वो एक खुशनुमा बेरा रही से जे आज लहूट के नहीं आए बस
1: हाँ?
0: सुरता में ही रहेगी सावे। अब लगते कि काश खेल के क्षेत्र में आगू बढ़े रहते हो तो कोनो क्षेत्र के विशेष खिलाड़ी रहते हो आज
1: हाँ। फिर कभू कभू स्थिति परिस्थिति सही निर्णय और सही मार्गदर्शन नहीं मिले ये मौका ला चूक जाते ना।
0: फिर ननपन मा बड़ सुघर रही से दामनी हमर
1: हाँ?
0: खेल मा बहुत अकन पढ़ाई के भाग लगलो जान डरन
1: हाँ?
0: और यह मनोरंजन बघला भरपूर मिल जाए हमर ला।
1: हमर पारंपरिक खेल डंडा पचरंगा गिल्ली डंडा पिट्ठूल बाटी रेस टीप लुक लुकाउल गोटा फुगड़ी कबड्डी खो खो ऐसा अपड़ अकन खेल मा होशियार रहे ना। और अभी घलो पड़ अकन खेल के आयोजन गांव मन में बेरा बेरा में होते रहते ना।
0: बिल्कुल और ये खेल मन हा लइका मन ला बहुत पसंद हावे और हमर युवा संगी मन तो फुटबॉल क्रिकेट कुश्ती कबड्डी मन ला ज्यादा देखते
1: हाँ।
0: ज्यादा पसंद करते भले ननपन में हमर पारंपरिक खेल मन हा पसंद रही सावे और आज हर क्षेत्र के खिलाड़ी मन हा अपन राष्ट्र के नाम ला रोशन करत हावे
1: हाँ?
0: बैडमिंटन जेवलिन थ्रो देख ले क्रिकेट हो गए भाला फेंक फुटबॉल कबड्डी जैसे आने आने क्षेत्र में अपन कदम ला जमा डारे हावे।
1: थनेश्वरी तुर एक बात मोला समझ नहीं आवत है कि आज ते जब ले आए हवस तब ले खेल कूद के गोट अब्बड़ अगन करत हस।
0: वो एकर सेती दामनी
1: हाँ?
0: कि आज हरे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
1: हाँ?
0: 25 मार्च 2024 के संयुक्त राष्ट्र महासभा 140 ले ज्यादा देश मन के समर्थन के संग में एक प्रस्ताव पारित करी
1: हाँ?
0: जेकर पहली आयोजन दुनिया के पहली अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 के मनाए गई रही से।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा डाले यूनिसेफ और यूनेस्को ये महान वार्षिक आयोजन के देखरेख संग एला बढ़ा दे के काम करते।
0: 11 जून यानी आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जावत हावे संगवारी हो जेकर उद्देश्य ये हावे कि जीवन में खेल के महत्व ला रेखांकित करना अवेला बढ़ावा देना है।
1: तो संगी हो खेल के महत्व ला समझना जरूरी है। आज पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में अवसर उपलब्ध हावे।
0: तब बस जरूरत है अपन रुचि ला रुझान ला अपन पसंद के कला और वो विशेष क्षेत्र जेमा आप अपन भविष्य ला लिख सकता हो ओमा अपन मेहनत करो काबर की मेहनत ले बहुत कुछ मिल जाते।
1: खेल की गोट हुआ थे तो मोला एक ठन औ बात के सुरता आवा थे कि आज ले फीफा विश्व कप 2026 शुरू हुआ थे। फीफा फुटबॉल विश्व कप ला दुनिया के सबले बड़का फुटबॉल टूर्नामेंट माने जाते जेमा सबले ज्यादा टीम मन भाग लेते।
0: औ तेव संगी हो ICC महिला T20 विश्व कप काली ले शुरू हुआ थे तो संगी हो एकर मनोरंजन तो होबे करी फिर खेल के भावना ला समझना बहुत जरूरी है। संगे संग यहू बात के हमला सुरता राखे ला लागी कि पारंपरिक खेल है वो ला हमला संजोए राखे ला लागी खेले ला लागी तभी हमार अवैया पीढ़ी हा चीन पर ही
1: इही गोट के संग चलो सुनथने गीत ला।

0: अभी अभी आप सुन रहे सुघर अकन माटी के गीत ला जिला पंसौर में सचारी से राकेश तिवारी और साथी मन
1: अभी गीत लव सुने पर चारी हमारे संगवारी मन हा गणेश धाम परसुली ले मोती मानिकपुरी धनवंतीन मानिकपुरी योगिता मानिकपुरी सांकरा सोमनी ले नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी दिवेंद्र प्रताप नेहा मिलिंद प्रणय रुद्रांश प्रताप साहू और संगवारी मन हावे भाटापारा ले दान सिंह रावत पद्मिनी शुभम सौरभ रावत भाटापारा ले संगवारी मन हावे अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद धवलपुर गरियाबंद ले गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांती अर्चना प्रतीक्षा धनंजय मिश्रा शीतला नगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर धरसीवा ले छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव संगवारी मन हावे बेमित्रा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भव्या सुषमा सारथी मन
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है तुरते आओ पूरा जांच कराओ
3: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी
2: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेलीबांधा रायपुर।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संगी हो घर में कुनो सगा आती पहुना आती त घर हा चहक जाती, जम्मो गोठला सोरिया डारती और भरपूर मान सम्मान के संग में हमन हा सगा ल मानथन, मान गुण करथन और विदा घलो वैसने करथन। और ऐसने ही चलाओ, आज हमन हा आप मल्ला मिलाबो क्रम पहुना जोहार मा छत्तीसगढ़ के लोक गायक शेख अमीन जी ले, लिनिमा साहू और नीलेश साहू के गोठ पात ले।

0: जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला मोर यानी लिनिमा साहू
1: और निलेश साहू के
0: मया भरे जोहार। संगवारी हो, युवानी के क्रम पहुना जोहार म आप मल्ला हमन अलग अलग क्षेत्र ले जुड़े मनखे मल्ले भेंट करवाथन। और आज आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम म हमन स्वागत करथन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत जगत के एक लोकप्रिय और सुरमयी आवाज के धनी कलाकार शेख अमीन जी के।
1: शेख अमीन जी अपन मधुर गायकी, भावपूर्ण प्रस्तुति और छत्तीसगढ़ी माटी के सुगंध ले भरे गीत मन भर जाने जाते। हर शैली में आप मन अपन अलग पहचान बनाए हो। झुनूर झुनूर बाजाए, मन हतोर मया में मात गे हेरे, जैसन गीत मन श्रोता मन के दिल में खास जगह बना चुके हवे।
0: अपन सुर के जादू ले आप मन हिंदी गीत में घलो एक विशेष स्थान बनाए हो। तो चलो आज हम पहुना जोहार क्रम के माध्यम ले जानबो आप मन के गीत संगीत के यात्रा, संघर्ष, सफलता और छत्तीसगढ़ी संगीत के बदलत स्वरूप के बारे में। शेख अमीन जी, आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम में आप मन के हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार संगवारी हो।
1: संगवारी हो, शेख अमीन जी के परिचय ला हमन हा अमीन जी के मधुर गीत के सान में जानना चाहबो।
2: हो

0: का बात है, बड़ सुघर गीत आप मन गाए हो। और जब आपके गीत ल सुनथन ना अमीन जी, तो हमर मन के मन में एक ठन सवाल जरूर गुंज थे कि आप मन के गायकी के शुरुआत आखिर कैसे हुई से वह, और कहाँ ले हुई से वह, आप मन की प्रेरणा कौन रही से वह?
1: मोर गायकी के शुरुआत स्कूल के दिन से शुरू हो गई रहीस। मैं 6th-7th क्लास में रहे हूँ, तब गाना सुने पर शुरू करे रहे हूँ, और हिंदी गीत से बड़ प्रभावित रहे हूँ मैं। ओखर बाद कुछ कुछ छत्तीसगढ़िया गीत घलो सुने हूँ। पुराना गीत में देखू आप मन रफी साहब घलो गाए रहीस बढ़िया बढ़िया गीत, तो वो सब सुन के मैं प्रेरित हुए हूँ और तब ले गाना शुरू करे हूँ जिन्हें चला थे अभी तक।
2: शेख जी, आपके जोन पहली अनुभव रही से, जोन पहली गीत आप मन गाए रहे हो, उकर बारे में कुछ बताओ।
1: वैसने तो मैं हाँ रिकॉर्डिंग शुरू करे हूँ 2001 से, और जो मोर वन ऑफ माय फेवरेट जो सॉन्ग है वो सुरता मत और रोवत रही थो, चंद्रभूषण भाई के म्यूजिक रही सोमा, और छाया चंद्राकर दीदी संग में गाय रहे हूँ वो गाना।
2: हाँ।
1: और अभी तक वो गाना लोगन मन के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं।
2: तो आपके वो माँ अनुभव कैसे रही से जब पहली आपला मौका मिली सो ही, ये तो आपके गाना हो गए, गाना के बाद वो तो जन सरोकार से हो गए, आपला जब मौका मिलिस तो आपला कैसे लगी?
1: अब बड़ दिन ले मैं मौका खोजत रहे हूँ कि कैसे आऊँ, कैसे गाऊँ और कैसे मौका मिली।
2: हाँ।
1: तो सूरज भैया, सूरज महानंद करके एक म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत फेमस है यहाँ के।
2: हाँ।
1: वो मोला पहली बार मौका दी से, एक फिल्म आए रही जरा थे जिया मोर।
2: हाँ।
1: वो फिल्म से मौका

0: मिलिस और ओकर बाद ये गाना जब मिलिस चंद्रभूषण भाई के साथ तो फिर मोर पहचान बनी इस मार्केट में।
1: शेख जी जैसे एक कलाकार ला आन आन भाषा में घलो मौका मिलते, आप ला भी जब हिंदी में मौका मिलिस, हिंदी गीत में मौका मिलिस, तो आपके जो पहली ब्रेक जोन रही से ओकर बारे में कुछ बताओ।
0: पहली ब्रेक एक छोटे से ग्रुप रही म्यूजिकल ग्रुप वंडर वाइस करके, ओमा में पहली बार गाना गाया और पहली तो मैं ओमन के रिहर्सल सुनत रहे हो बाहर खड़े रह के और देखत रहे हो काश मोला घलो मौका मिल जातीस। मैं स्कूल में रहे हूँ, 9th 10th 11th में रहे हूँ मैं तब, और एक दिन सौभाग्य से एक सिंगर नहीं आए रहीस तो मोला प्रॉक्सी के मौका मिल गए और फिर जो मैं गाए शुरू करे हो तो फिर ओमन घलो रिकोगनाइज करीस के नहीं ये अच्छा गाते लड़का, फिर मोला शामिल करीस अपन ग्रुप में ओमन, तो वहां से शुरुआत हुई।
2: आपके एक आठ ठन जो हिंदी गीत है ओला आप मन बिल्कुल हमारे श्रोता मल्ला सुनाते हो।
0: मोर पसंदीदा हिंदी गीत, मोर पसंदीदा सिंगर तो रफी साहब हैं, ओखर गीत मैं गाता हूँ अक्सर, तो ओखरे गीत आप मल्ला सुनाता हूँ अभी जो जहन में आवत है।

0: का बात है अमीन जी, आप जब अपन पीछे मुड़ के यात्रा ला देखता हो तो यात्रा ला कैसे पाता हो आप मन हा काबर यह संघर्ष भले भी रिसे वे संघर्ष से सफलता तक के जो कहानी है वे ओला आप मन कैसे देखता हो?
1: संघर्ष तो शुरू से अभी तक चला थे हाँ, ये बात अलग है कि बहुत बार आप मन ला सफलता मिलते और कई बार आप असफल भी रहते हो। तो जब से मैं गाना शुरू करे हो अब्बड़ अकन गाना मोर हिट भी हुए है और कुछ गाना ऐसे भी है जो लगते कि बहुत अच्छा करे हो आप मन हा काम और बट वैसे रिस्पांस नहीं मिलते। तो उतार चढ़ाव तो जीवन भर चलत रही और अभी तक चलत है।
2: शेख जी, जोन आज हमन होथन वर्तमान में जोन हमन हवन तेमा हमर जो बीते हुए कल है ओकर निर्णय के बहुत बड़े योगदान रहते। आप मन के ऐसे कौन से समय है जब आप ला निर्णय लेना रहीस कि मोला ये क्षेत्र में जाना है और ओकर अनुभव कैसे रहीस?
1: बराबर, तो जैसे आप पढ़ के निकलते हो कॉलेज ले पढ़ के निकलते हो आप और आप ला डिसाइड करना रही थे कि अब का करना है। तो मैं ओखर पहली ले संगीत क्षेत्र में आ गए रहूँ और सफल भी हो गए रहूँ बहुत मायने तक। ये बात अलग है कि अब के मकाम और तब के मकाम में अंतर है। तब मोर शुरुआत रहीस बट तभी मैं डिसाइड कर डाले हूँ कि अब जो है जो भी करना है गाना तो जीवन में अब कभी छूट ही नहीं और एमा सीखते जाना है सीखते जाना है और सीखते जाना है। तो वो निर्णय जो रहीस मोर ख्याल से बहुत अच्छा रहीस और अभी तक ले मैं सीखत हूँ।
2: और हमन अक्सर ये देखथन कि जोन हमर काम हवे ओकर से हमन ला बहुत माया होते, वैसे ही आप ला भी अपन काम से बहुत माया हो ही। तो यही माया मा आपके दिल के करीब के कौन से ऐसे गीत है जे आप ला बहुत अंतस ले झकझोर देते?
1: मोर पसंदीदा मोर गाया हुआ गीत अगर आप बोलू तो एक बड़ा सुंदर गीत जो भूपेन्द्र साहू जी के बनाए हुए हैं ओला मैं सुनाना चाहूँ।
2: बिल्कुल।

0: बात है शेख जी।
1: शेख जी, जैसे श्रोता मन के मन में हमेशा ये सवाल रहे थे, दोनों के बीच के अंतर बताओ, जब आप मना स्टेज में प्रस्तुति देता हो तब के, या फिर जब आप एक स्टूडियो में गीत के रिकॉर्डिंग करते हो तब के।
2: मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे आप मतलब नवा गीत गाना है,
1: हाँ,
2: नवा गीत गाय के काम बहुत कठिन होते, क्योंकि एक कंपोजर रही थे ओकर इमेजिनेशन है,
1: हाँ,
2: आप सिंगर हो आपके अपन इमेजिनेशन है, और जो सीन वो सोचा थे, जो डायरेक्टर है सोचा थे, मान लो कोई रोमांटिक गाना है, फिल्म आना है,
1: हाँ,
2: ओकर इमेजिनेशन अलग रही थी, तो म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर के इमेजिनेशन में खरा उतरना सिंगर के काम है, और वो कुल मिला के सब कॉम्बिनेशन होए के बाद पब्लिक ला भी पसंद आना चाहिए, तो बहुत जिम्मेदारी के काम होते नवा गाना गाना,
1: हाँ।
2: स्टूडियो वाला काम इसीलिए बहुत कठिन होते, मैं हमेशा बोलता हूँ नवा क्रिएशन हमेशा कठिन होते, और गाए हुए गाना ला अपना स्टेज में परफॉर्म करना वो कंपेरेटिवली इजी रहते मोर हिसाब से, तो ये बहुत बड़ा अंतर है।
1: एक आध ऐसे कोई अनुभव जब आप

0: पब्लिक ला भी पसंद आना चाहिए। तो बहुत जिम्मेदारी के काम होते नवा गाना गाना। हाँ। स्टूडियो वाला काम इसीलिए बहुत कठिन होते, मैं हमेशा बोलता हूँ नवा क्रिएशन हमेशा कठिन होते, और गाए हुए गाना ला अपना स्टेज में परफॉर्म करना वो कंपेरेटिवली इजी रहते मोर हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा अंतर है।
1: एक आध ऐसे कोई अनुभव जब आप स्टूडियो में जब गीत के रिकॉर्डिंग करते रहो तब जब आप ला एक चुनौती लगी सोही कि ये गाना ला कौन से भाव देना है, कैसे ये मैं हाँ अपन जो भाव है वह तिला डाल पाऊं।
0: एक गाना के मैं जिक्र कर रहे हूँ सुरता मत और रोवत रही था।
1: हाँ।
0: ये गाना की सिचुएशन रही इसके दो प्रेमी है और वो मन ला अलग करा थे होकर घर वाला मन, वो सिचुएशन रहीस और वो भाव देना रहीस तो बहुत कठिन रहीस। मैं कोशिश कर रहे हूँ और आप मतलब बताता हूँ कि वो गाना कैसे बनी रहीस, गा के बताता हूँ। सुरता मा तोर रोवत रहे थो, सुरता मा तोर रोवत रहे थो, आठो पहर

0: अच्छा बात है शेख जी। आजकल के जो युवा है भाई तेन हा हमर संस्कृति ला तो जानते छवे और आजकल के जो माध्यम हवे सोशल मीडिया होकर मन के माध्यम से ओमन हा हमर संस्कृति जोन पहली के रही हवे तो हम मन ला जानत हवे। त एक जो संगीत है एक जो लोकगीत होते ये हा एक संस्कृति ला जीवंत रखे बर आप मन के नजरिया में कितना महत्वपूर्ण होते?
1: बहुत बहुत जरूरी है। हमर मन के जो सीनियर मन जो काम करके गए है और खासतौर पर लोकगीत में वो मतलब महान काम करके गए है। अभी आप देखो जितना सिंगर आवत है नवा सिंगर के बात करो मैं अब बड़ मतलब मोस्ट ऑफ देम जानत नहीं है हमार कल्चर ला। सबो जन ला नहीं बोला था बट ज्यादातर अधिकतर जो नवा सिंगर आवत है वो इंस्पायर होते हिंदी गाना ले या भोजपुरी गाना ले या कोई साउथ इंडियन गाना ले। हमार मन के कल्चर ला फिर कौन बढ़ाही वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
0: तो ऐसन जोन कलाकार हवे एकर मल्ला ए मल्ला आप मन हा कैसन सलाह देना चाहो
1: नवा सिंगर ला? तो मैं यही बोलूं कि हमर अगर आप छत्तीसगढ़िया गीत संगीत में कुछ करना चाहत हो तो पुराने चीज मन ला सुने बर बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं सुनू तो आप जान नहीं पाऊ कतका डिफरेंट टाइप के स्टाइल है छत्तीसगढ़ी संस्कृति के गाना बजाने के। तो आप जब तक सुनू नहीं तो सीखू नहीं और सीखू नहीं तो गाऊ नहीं।
0: छत्तीसगढ़ ला भी अगर हम देखन त उत्तर छत्तीसगढ़ ले लेके जो दक्षिण छत्तीसगढ़ हवे उमा संस्कृति हा बदलते हुए रूप में दिखाई देते।
1: बिल्कुल।
0: तो ये चीज हा हमार आज के जो कलाकार है ते मन कैसे समझ पाही?
1: वही जैसे जैसे बोले हुए हाँ आप सरगुजा तीर जाहू तो ओ मेर आप देखो कि नकपुरी वगैरह स्टाइल जो है वो मिल ही आप बल्ला। और आप जब साउथ में जाहू बस्तर साइड तो बस्तरिया एक कल्चर छत्तीसगढ़ी म्यूजिक में मिक्स होके दिखते आप मनला। तो ये सबला सुने भर पड़ी। अगर आप अच्छा कलाकार बनना चाहत हो तो आप मनला सारा टाइप के छत्तीसगढ़ी म्यूजिक और ये सब सुने वाला पड़ी तब हो पाही कुछ काम।
0: शेख जी अभी के बातचीत चला था वे तो पहले ऐसे कहा जाए कि जो कलाकारी है गीत संगीत नाचा ये मन में कहाँ रखे हैं लोगन के सियान मन में ये भावना रहे ये ध्यान में रहे कि आगे चल के मैं कहाँ है तुम्हारा भविष्य? तो एक बारे में आप मन थोड़ा सा प्रकाश जलूँ कि आज उकर मन पर का भविष्य है।
1: पहली रीस पहली घर वाला मन बोलत रहीस के कहाँ कर बे गाना गा के तोर काम नहीं है पढ़ाई लिखाई कर। बट अभी आप देखो अब जो नवा कलाकार मन आवत है सिंगर आवत है या एक्टर आवत है या ड्रामा वाले आर्टिस्ट आवा थे तो ओखर मन पर अब काम बढ़ा थे धीरे धीरे। जैसे इंडस्ट्री हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करा थे तो डेली कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट बना थे म्यूजिक भी बना थे और एक्टिंग के भी चांस है सब मन ला सब मन हाँ। तो आप देखो कि पहली के और अब के सिचुएशन में बहुत अंतर है। अब काम बढ़ा थे और उसको भी बढ़ा थे तो मोर हिसाब से अब म्यूजिक करे में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत गीत करे में अब बहुत फायदा भी है लोगन मनला। पहली जैसे नहीं कि अब

0: अतका फायदा नहीं होत रहीस पहली तो लोगन मन दूसर काम करत रहीस, अब फुल फ्लेजेड आप मन करस कर सकत हो ये वाला काम।
1: अमीन जी सरकार डहाल ले आप मन का उम्मीद देखता हो?
0: सरकार डहाल ले तो मेन उम्मीद हवे, क्योंकि आप देखू अतका बढ़िया बढ़िया कलाकार पास्ट में देखू, कुछ कलाकार मन ला रिकॉग्निशन मिलिस और बहुत सारे कलाकार ऐसे रहिस जे खो गए कहीं, जिन मन ला बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार के आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलिस। अब सरकार से यही अपेक्षा है कि ऐसे कलाकार मन ला एक स्टेज मुहैया कराए जाए और पारिश्रमिक तय किया जाए कि वो ताकि वो सर्वाइव कर सके और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति ला आगे बढ़ा सके, मोरे हिसाब से ये होना चाहिए।
2: शेख अमीन जी अगर हमन बात करथन कोई युवा जो है वह ओला गीत संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वह ऐसे तो गीत ला सोशल मीडिया के माध्यम से सुन के सीख भी सकते पर वो प्रॉपर सीख नहीं पाए, तो कोई संस्था या फिर कोनो ऐसे गुरु के चुनाव कैसे करना चाहिए मल्ला?
0: हमर रायपुर में ही दो तीन संस्था है, आप देखो कमला देवी संगीत महाविद्यालय है, श्री राम संगीत महाविद्यालय है और अब्बड़ अकन गुरु मन है। कोई भी प्रकार के संगीत हो क्लासिकल बेस होना अनिवार्य में मानता हूँ। किसी भी टाइप के म्यूजिक आप करो अगर आप मनला बेसिक नॉलेज है तो आप मन कर सकत हो, और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो चीज़ें कठिन हो जाती। तो मोर हिसाब से नवा जितना जनरेशन आवत है सब मनला कोई ना कोई गुरु पकड़ के या कोई इंस्टीट्यूट पकड़ के वो मनला सीखे बर चाहिए।
2: शेख अमीन जी अंत में हमर श्रोता जो संगवारी मन है काबर मन छत्तीसगढ़ी गीत ले तक जुड़े हवे युवानी में दोनों आते छत्तीसगढ़ी गीत संगीत घलो आते और हिंदी गीत संगीत घलो आते, तो ओ मल्ला आप मन का संदेश देना चाहो?
0: यही संदेश है अच्छा सुनो अच्छा सोचो और खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो।
1: जाति विराती हमन हा और हमर जतका सुनैया श्रोता है ते मन हा आप मन से एक सुघरगन गीत सुनना चाहो।
0: वन ऑफ माई फेवरेट में सुनाता हूँ आप मल्ला
1: जी।

आपके बहुत बहुत धन्यवाद है शेख हमीन जी कि आप मन आए हो और हमार जो श्रोता साथी मन है ओमल्ला अपन गीत के बारे में बताए घलो हो और बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए हो हमला तो बहुत अच्छा लगी से तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहिन क्रम पहुना जोहार में छत्तीसगढ़ के लोक गायक शेख अमीन ले लिनिमा साहू और नीलेश साहू के गोट बात। संगवारी हो शहर के ये भीड़ भाड़ और भाग दौड़ में ना जीव ह अतका अकुला जाते, कभू कभू लगते कहाँ आगे यार, सब ल छोड़ छाड़ के अपन गांव लहुड़ जाते हो और गांव के खपरा वाले घर में परछी माँ और रूख छैहा में बैठ के सुघर जुड़ छैहा ला पाते हो।
1: और गांव के कोनो मनखे करा भेंट हो जाती तो ओ भाव के का शब्द में बखान करन। ऐसे हमर श्रोता संगवारी मन अपन अंतस में भरे गोट ला सूर्यावत क्रम हमर गांव तो झटकुन शुरू करथन क्रम हमर गांव मा। थनेश्वरी काय कहते संगी मन हा?
0: संगवारी मन हा सुघर ढंग ले अपन पाती मा भेजे हावे अपन गांव के बारे में लिख के। और संगवारी मन हावे सिमगा ले लवकुर सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष और प्रकाश सेन मन
1: हा। हाँ, कहा थे संगी मन
0: हा? और संगवारी मन हा कहा था वे कि मया प्रेम के संग हमर गांव के संग जम्मू मयारू कंपेयर भाई बहनी मल्ला सिमगा गांव के पबरित भुइया ले जय जोहार कहा थे। संगवारी मन हा लिखे हावे हमर गांव सिमगा दू पबरित नदिया खारून और शिवनाथ के किनारे मा बसे हावे।
1: हाँ?

0: हमर गांव के एक खास बात हावे कि हमन अपन तीज तिहार ला जूर मिल के मनाथन
1: हाँ?
0: सबके प्रति माया प्रेम और दुलार बांटथन। हमर गांव सिमगा रायपुर ले और बिलासपुर के हृदय स्थल मा बसे हावे। आवागमन के कोई परेशानी नहीं है, 24 घंटा हमन ला गाड़ी मिल जाते। त्याग समर्पण और विश्वास के मंदिर सोमनाथ के पावन धाम मा यहाँ हावे। दुबार मेला लगते, पवित्रता के फूल खिलते, यहाँ के प्रकृति में शुद्धता हवा हावे, मिट्टी माटी के खुशबू महर महर महकत हावे। ऐसा नहीं हमारे गांव ऐसे कहा थे।
1: संगी हो, जब हम अपन संस्कृति के गोट बात करते हैं तो सबो परंपरा और तीज तिहार ला जुड़ मिल के मनाते हैं तो कतका सुग्घर लगते, जेमा सबो जन भर मया दुलार और एक दूसरे पर संसो फिकर रहते। और हमार छत्तीसगढ़ के सोमनाथ मंदिर अपन ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रसिद्ध है। कहे जाते कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मंदिर ला पहला ज्योतिर्लिंग कही थे। तेहा त्याग समर्पण और विश्वास के मंदिर आए, जिहां माटी के सुघर महर महर महक ले जम्मो वातावरण के संग मन घलो आनंद और उछाले भर जाते।
0: ता दामनी हमर करा पाती तो हवे, फिर एकर ले पहली सुनथन ये माटी के कितला।

0: संगवारी अभी अपन सुनत रहो सुघरकन माटी के गीत ला जला अपन स्वर में सजारी से राम कुमार साहू सुनी साहू मना
1: अभी गीत ला सुने पर चाहरीन हमारी संगवारी मन है रायपुर ले

0: नागेश वर्मा, संगीता यामिनी वर्मा, प्रीति अभिजीत यादव, योगेंद्र गंगवीर, अभिलाषा शर्मा, मुंडा टोला डौंडी लोहारा ले डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम, लगान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी शाहिल भारती बघेल मनहा। त दामनी,
1: हाँ,
0: संगवारी मन अपन गांव के बारे में पाती पठोए तो एक ठन औ पाती मोर हाथ में है।
1: तो कौन संगवारी कहाँ ले भेजे और काय कहा थे?
0: संगवारी मन हावे बन बघेरा जिला राजनांदगांव ले योगेश सारवा, आशा, नीरज, नितेश, अंजलि, रोशनी सारवा मन।
1: हाँ?
0: संगवारी मन लिखे हावे कि मोर गांव बन बघेरा जिला मुख्यालय राजनांदगांव ले राजनांदगांव में 16 किलोमीटर पूर्व में हावे। गांव में कक्षा पहली ले बारहवीं तक स्कूल हावे। गांव के छोटे लइका मन बर 6 आंगनबाड़ी केंद्र हावे। 4 ठन बड़े तरिया जेमा नहाए बर भरपूर पानी हावे। 2 बड़े उच्च स्तर के पानी टंकी घलो हावे जेमा हर घर नल के जरिया पानी की भरे बर मिल जाते। गांव में 2 दिन बुधवार और शनिचर के बड़े बाजार भरते जेमा हमर जरूरत के मुताबिक साग भाजी मिल जाते।
1: हाँ?
0: और 5 ठन किराना दुकान, 3 मेडिकल स्टोर और 4 ठन बड़े होटल घलो हावे।
1: हाँ?
0: जनवरी फरवरी मा धार्मिक आयोजन मा रामायण और रामायण कार्यक्रम के कार्यक्रम, लोक कला महोत्सव और शिवरात्रि मा भगवान शिव के मेला भरा थे। अतेक सुखर है हमर गांव। हाँ, कहा थे
1: संगी हो आप मन कहा तो कि आपके गांव में कक्षा पहली ले लेके बारहवीं तक स्कूल हावे जेखर ले आपके गांव में जम्मो लइका ला शिक्षा मिलते और आप मन शिक्षा ला बड़ महत्व देते और छोटे लइका मन बर 6 आंगनबाड़ी केंद्र हावे। 4 ठन बड़े तरिया घलो है संग में जम्मो घर में हर घर जल घलो हावे। कहा थो आप मन अपन जरूरत के हिसाब से पानी ला बउरा और अपन घर के अंगना चौरा और मुहाटी में पानी जरूर रखा जेखर ले चिड़ई चुरगुन गरुआ मन के प्यास बुझा सके और आपके गांव में बुधवार और शनिचर के बड़का बाजार भराते जेमा आप माना आनी बानी के जिनिस ला बिसाथो और माघ फागुन में धार्मिक आयोजन में रामायण और लोक कला महोत्सव होते ये तो बड़का सुघर गोटाए संगी हो।
0: तो एक ठन औ संगवारी मन हा एक झन औ संगवारी हावे जे मन हा अपन गांव के बारे में सुघर ढंग ले लिखे हावे।
1: हाँ?
0: संगवारी मन हा हावे वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले सीवा यादव, चिंटू, तरुण राम, कन्हैया, निर्मला यादव मन। संगवारी मन हा लिखे हावे कि हमर गांव गंडई पंडरिया जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई ले 2 किलोमीटर दूरिया मा गोदली धोआ नाव के वाटर पार्क ले घूमे फिरे के ठिया है जेमा लइका सियान जम्मो झन मन हा यहाँ छुट्टी मनाए बर अपन जम्मो परिवार के लोगन मन सन आते और प्रकृति ले बने नदिया मा ये मय झरना घलो हावे सुघर जेन हा लोगन मन के मन ला मोह लेते और रोज लोगन मन के आना जाना हा चलत रहते और आवे त जाए के मन घलो नहीं करे। ये जगह हा खैरागढ़ ले 36 किलोमीटर दूरिया मा हावे। भड़बड़ी नाव के जंगल है और ये जगह ला सोशल मीडिया के माध्यम ले जाने की सावे। त भाई दामनी,
1: हाँ,
0: बता डार भाई अब तक तोर का कहना है गांव के बारे में जान के।
1: संगी मन कहा संगी मन हा संगी हो जब आप मन कोनो नवा जगह घूमे बर जाते हो तो रोज के संसो फिकर ले दुरिहा के मन ला शांत और सुघर लगते। नवा हवा पानी हरियाली ला देख के तन मन दोनों हा ताजा हो जाते। ऐसने कोनो बैटरी ला दोबारा चार्ज कर दे ऐसे लगते। तो संगे संग दूसर जगह घूमे ले हमला दूसर मनखे के रहन सहन उखर बोली भाका और खान पान के पता चलते। एकर ले हमर मन और स्वास्थ्य घलो सुघर रहते।
0: औ जानता सामने,
1: हाँ,
0: मन अगर कोई डहरते हैं घूमे फिरे बर जाबे ना
1: सिरतोन
0: त मन हा हमन कही था ना अंग्रेजी में रिफ्रेश हो जाते। हाँ। तो वो एक अलग सुकून मिलते मन हा शांत हो जाते और हाँ? हमन बने ढंग ले काम बुता
1: कर थन।
0: हाँ। तो भाई संगवारी हो ये तो रही से आप मन के अपन गांव के बारे में चिट्ठी पाती तो हमर करत के रही से और अवैयादारी हमर कर ज्यादा ले ज्यादा पाती भेजू तो एक बार हमर पता लिखा। हमर पता हावे क्रम हमर गाँव युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड है 4920001। ईमेल के माध्यम ले अपन गांव के बारे में लिखो तेकर बर पता हावे airyouth9@gmail.com और एकर सब्जेक्ट कोड हावे Y11। तो आज के क्रम हमर गांव यहाँ तक।
1: थनेश्वरी, रद्दा में रेंगबे तो काटा घलो गढ़ी और खूटा के घलो ठेस लगी।
0: हाँ, तो सिरतोन कहा था संगवारी।
1: हाँ?
0: जिंदगी के रद्दा घलो ऐसने हावे।
1: संगी हो काटा खुटी हमला सिखाते कि जिंदगी में दुख पीड़ा और आने अर्जन आना तय है। ऐसन बेरा में डर के भागे के जगह हमला धीरज रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
0: सिरतोन संगी।

0: जब काखरो रद्दा म कांटा या खूंटा दिखथे त ओहा आंखी मुनके नहीं रेंगे बल्कि आंखी ला उघार के और संभल के रेंगथे।
1: यह हमला सिखाते कि जिंदगी म कोनो घलो बड़का फैसला ले के बेरा काखरो ऊपर भरोसा करे के बेरा हमला होशियार रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जिंदगी म कतको प्रकार के मनखे होते जेकर विचार ला आने आने रही थे और हमला मिलते घलो मन हमला जगह जगह में होशियार रह के जागरूक बन के रेंगे ला लागही। यही गुड़बा संग चलो सुनथन ये माटी के गीतला।

0: संगवारी अभी अपन सुनत रहो सुघर अकन माटी के गीत ला जेला अपन स्वर में सजारे से अनुराग ठाकुर साधना यादव मन है।
1: अभी गीत ला सुने बर चारिन हमारे संगवारी मन शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वाणी वर्मा कुल्हारी कोट पांडुका ले नरोत्तम कश्यप नीतू मोहनीस अनुराग कश्यप मन है और संगवारी मन हावे कोटना पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी लीलेश्वरी रूपेश गरिमा नोनी और छनीस का दादू मन है। संगवारी हो हमर पढ़ैया संगी मन के स्कूल मन हा घलो अब शुरू होवैया है बस अब कुछ ही दिन आउ है भाई।
0: हाँ थे ना सरे अब उहु मन हा सोच डारे सोए कि दसवीं तो पार कर डारे हवन अब विषय के आगो का बढ़ना चाहिए कहिके।
1: सिरतोन में स्कूल के बाद करियर के असली यात्रा शुरू हो जाते और दसवीं के बाद लेगे हर फैसला केवल एक विषय या कोर्स के चयन भर नो है बल्कि आपला अपन सपना और भविष्य के दिशा तय करे बर महत्वपूर्ण कदम हरे।
0: एक स्थिति कहबो संगवारी हो सोच समझ के निर्णय लेव कोनो सगा संबंधी समाज के प्रभाव में आके अपन करियर के चुनाव झन करो बल्कि अपन रुचि पसंद और क्षमता भविष्य के संभावना के अनुरूप जोन हो सके ओला चुनाव
1: बिल्कुल और तो और ध्यान रखो कि कोनो विषय के चुनाव करे ले पहली ओखर ले जुड़े रोजगार विकास के संभावना मल्ला समझना जरूरी है और रुचि के क्षेत्र ला चिन्ह और करियर के शुरुआत करो।
0: आज केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है संगवारी हो अपन भीतर के हुनर ला घलो जानो।
1: बिल्कुल जानो काबर की कई ठन संस्था ऐसन होते जमा उम्मीदवार ला प्राथमिकता देते जेकर करा समस्या समाधान रचनात्मक कार्य और बातचीत के कौशल डिजिटल जेकर करा स्किल होते
0: हा?
1: जैसे क्षमता ऐसन क्षमता मन होते ना तो हा? एकर बर हमला

0: प्राथमिकता मिलथे।
1: एक
0: सेती पढ़ाई के संग कौशल विकास बहुत जरूरी है। त संगवारी हो, जाए के बेरा हो गे हावे, त गुड बात ला हमन ला यही करा रोके लगी भाई।
1: सेतु संगवारी,
0: फिर संगवारी हो जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम। हमर काली के कार्यक्रम युवाणी सजी हिंदी में, जेमे आप मन सुनू खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। त यही गुड बात संग आज के युवाणी ले अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
1: और दामनी सेला देव विदा।
0: नमस्कार।

0: युवाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता

0: मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुनना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। छह बजकर 10 मिनट होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हर नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका में कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करी बैठका। और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि दुनिया ये बखत अस्थिरता के दौर ले गुजरत है, फिर भारत आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प के संग विकास के रद्दा में आगू बढ़त है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठका के अगुवाई करत श्री मोदी है कहिन कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य कोती बढ़त है तो ऐसन बेरा में केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक जिम्मेवारी बढ़ जत है। उमन कहिन कि राज्य के बीच सहयोग बात और विचार साझा होना चाहिए। संगे संग नीति आयोग एमा मदद करे खातिर सबले बने भूमिका निभा सकत है। प्रधानमंत्री हकीन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल विकास और युवा मन बर रोजगार दिवाना ये प्राथमिकता बने रहना चाहिए। कृषि और स्टार्टअप लले के विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सबो क्षेत्र में अपन योगदान देवत है। एकर सेती राज्य मल्ला माइलोगिन के शिक्षा कौशल विकास सुरक्षा और सशक्तिकरण ला प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसो के बैठका के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठका में सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग लेवत हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 12 जून के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उमन प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम के संगे संग विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संगरही संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली मंझनिया रायपुर के सड्डू क्षेत्र के अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होही। एकर बाद संझा कुन राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होही। संझा के ही श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मनसंग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री अवैया दिन 13 जून के कलेक्टोरेट परिसर के बाबा साहेब अंबेडकर चौक में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होही। और खालसा स्कूल के आगू ऑक्सीजोन में पौधारोपण करके बूढ़ा तरिया तीर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लीही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि किसान मन के विकास सरकार के सबले पहली प्राथमिकता हरे। सरकार उखर

जीवन ला सरल बनाए के हर संभव प्रयास करत हे। सोशल मीडिया पोस्ट मा श्री मोदी ह कहिन के किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि के रीढ़ हलय। ओमन कहिन के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना किसान मन के आमदनी की रक्षा करत हे, उही किसानी ला और मजबूत बनावत हे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हां आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में रखे गए कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन वर्चुअल रूप ले करीन। ये कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत आने बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। ये मौका में श्री वैष्णव हां सामरिक और संरचना में ध्यान देवत आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था ला मजबूत करे बर आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सरकार के प्रतिबद्धता में प्रकाश डालीन। उन्हें उमन समय के संग परिवर्तन में बल दीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने कि देश के 140 करोड़ लोगन के आकांक्षा जरूर पूरा हो ही। उमन कहन की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है देश के भरोसा ला मजबूत करे है। नई दिल्ली में एनडीए के बैठका में बोला तो उमन कहन कि बछर 2014 में आशा के जौन किरण जागे रही वो आज नवा आत्मविश्वास के किरण में बदल गए है। उमन यहू कहन की पहली गाँव देश के जनता है देखे है कि जब कोई सरकार सही सोच ले चलाए जाते तो विकास खलो तेजी ले होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए में नई दिल्ली के भारत मंडपम में राखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है श्री मोदी ला बधाई दीन। उमन कहिन की पाछू 12 बछर जनजाति समाज के सम्मान सशक्तिकरण और विकास बर स्वर्ण काल रहे है। मुख्यमंत्री है कहिन की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास ले छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कमती हुई है। उमन कहिन की जनजाति क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कनेक्टिविटी और आजीविका के मौका तेजी ले बढ़वार होवत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर है कहिन है कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नो है भलुक राष्ट्र निर्माण के आधार हरे। स्वच्छ स्वस्थ और विकसित भारत बनाए खातिर हर एक नागरिक के भागीदारी जरूरी है। उमन कहिन की जब तक स्वच्छता जन आंदोलन के स्वरूप नहीं ली तब तक विकसित भारत के लक्ष्य पूरा रूप ले साकार नहीं हो सके। श्रीमती ठाकुर है काली बिलासपुर के पुराना बाजार सक्री क्षेत्र में रखे गए स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता करीन। ये मौका में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू समेत आने जनप्रतिनिधि घलो मौजूद रहीन। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा हकीन है कि गांव के युवा मन के बेरोजगारी मोबाइल और नशीला जिनिस के लत जैसन चुनौती ले निपटे खातिर राज्य सरकार कौशल विकास में विशेष जोर देवत है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम में बोला श्री मिश्रा हकीन कि सरकार 15-29 बच्छर के युवा मन ला रोजगार और स्वरोजगार ले जोड़े बर अवैया 6 महीना में विशेष कार्य योजना तैयार कर ही। रायपुर जिला में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाए पर मिशन उत्कर्ष में काली राजधानी में सबो प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य मन के बैठका हुई। बैठका में कलेक्टर डॉक्टर गौरवसी सरलक कमजोर नतीजा देवैया स्कूल के समीक्षा करे के संगे संग विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावक मन ले फीडबैक ले के निर्देश दीन। उमन कहिन की कमजोर परीक्षा के नतीजा फर्जी पंजीयन नियमित कक्षा के अभाव और आने गड़बड़ी में कड़ा कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ह 28 दिन अधिकारी मन के तबादला कर दे है। विभाग कोतिले जारी आदेश के मुताबिक जिला के शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक और प्राचार्य मल्ला आने आने जिला और कार्यालय में नवा जिम्मेवारी सौंपे गए है। महासमुंद रायपुर बिलासपुर समेत कई जिला में नवा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति करे गए है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए हैं। उमन श्रीलंका में होवैया T20 और वन डे सीरीज के दौरान उप कप्तान के रूप में टीम में भाग ली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होए में बधाई और शुभकामना देवत कहिन कि ये उपलब्धि उखर सरलग मेहनत अनुशासन और खेल बर समर्पण के परिणाम हवे। उमन यहू कहिन कि एखर ले प्रदेश के आने युवा खिलाड़ी विशेष रूप ले नोनी मल्ला खेल

0: आगू बाढ़े और बड़े सपना देखे बर प्रेरित करही। राज्य सरकार ह विधायक मन बर अपन विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा लेके अनिवार्यता के आदेश में फेरबदल करे हे। अब कोनो भी विधायक अपन विधानसभा क्षेत्र ले बाहिर दिगर जिला में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा ले सकी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग सबो जिला कलेक्टर मन ला चिट्ठी जारी कर दे हे। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिला के पुलिस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्य मल्ला गिरफ्तार करे हे। इकहत्तर ले करीबन 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी के रकम ले बिसाए गए चौपहिया गाड़ी, 2 फटफटी, मोबाइल फोन समेत चोरी मा बौरे गए आने उपकरण जब्त करे गए हे। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन गजब दिन ले चोरी के घटना ला अंजाम देवत रहीन। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका मा कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा मा छत्तीसगढ़ आही विकसित भारत संकल्प सम्मेलन मा संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करही बैठका। और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर-19 टीम में हो है। एक रिसांग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 हुए हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य टैंकर आक्रमणस्य विषये भारतेन प्रबलं विरोधं प्रकटितम्। एमटी जलवीर नौकायाः सर्वे कर्मचारिणः सुरक्षिताः इति सूचना अस्ति। नीति आयोगस्य सभायां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य कृते कौशलस्य वृत्त्यावसरस्य च महत्वं प्रतिपादितम्। आन्ध्रप्रदेशस्य मद्य परिवहन भ्रष्टाचार प्रकरणस्य हैदराबादे ईडी इत्यनेन सहसा अन्वेषणं कृतम्। भारतेन मालदीव्स देशं प्रति खसरा रोगस्य सूच्यौषधीनां चिकित्सा साहाय्यं प्रेषितम्। अपि च अद्य रात्रौ बृहत्तमः फीफा विश्व चषक क्रीडा आरभ्यते, यत्र मेक्सिको दलं दक्षिण अफ्रीका दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। ओमान देशस्य तटे एकस्याः नौकायाः उपरि सद्यः एव कृतस्य आक्रमणस्य भारतेन निन्दितम्, यस्मिन् त्रयः भारतीय नागरिकाः मृताः। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रिमण्डलीय वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सर्वकारेण अमेरिकादेशस्य चार्ज डी अफेयर्स इत्येतान् आहूय प्रबलं विरोधं प्रकटितमस्तीति। सः अस्मिन् प्रदेशे नौकायानस्य उपरि निरन्तरम् आक्रमणानि अतीव चिन्तास्पदं वर्णितानि, तथा च शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानमपि अकरोत्।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं, ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: गल्फ क्षेत्रस्य अपर सचिवः असीम आर महाजनः अवदत् यत् सर्वकारः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य स्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। भारतीय अभियानेन च अहोरात्रं सहायता सेवाः अपि आरब्धवन्तः। सः अवदत् यत् अस्मिन् मासे 8 ओमान देशस्य समीपे लक्षिताः एमटी मारिवेक्स नौकायाः सर्वे 24 भारतीयाः कर्मचारिणः सुरक्षिततया रक्षिताः सन्ति। ते शीघ्रमेव स्वदेशं प्रत्यागमिष्यन्ति इत्यपेक्षया अस्ति। पत्तर नौवहन जलमार्ग मन्त्रालयस्य अपर सचिवः मुकेश मंगलः अवदत् यत् मृतकानां नाविकानां परिवारान् सीमेन वेल्

0: ततः कच्छ पर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारण सेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम् अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् द्वाविंशतितः 30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादं केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तं यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीड़ा गृहे आरभ्यते इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं शिवदयाल पटपरिया और उनके साथी। इनके स्वरों में लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

शिवदयाल पटपरिया, जगाराम ध्रुव और मंत्राम पटपरिया के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। और लीजिए अब सुनिए सावन गीत, स्वर हैं शिवदयाल पटपरिया के।

लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए निषाद गीत, शिवदयाल पटपरिया, मंतराम पटपरिया और जगाराम ध्रुव के स्वरों में।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे शिव दयाल पटपरिया और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंधलेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता। और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कल दोपहर रायपुर के सड्डू इलाके में स्थित अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल ही शाम श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अगले दिन 13 जून को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब अंबेडकर चौक पर सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह सदर बाजार के पास बूढ़ा तालाब पहुंचकर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है।

स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छ जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने विधायकों के लिए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों से सेवाएं प्राप्त करने की अनिवार्यता के आदेश में संशोधन किया है। अब कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे जिले में पदस्थ कर्मचारियों की भी सेवाएं ले सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध सांसदों के मामले में लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेल स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां मिलेंगी, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें यह जांच करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य फायर विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में कल से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग किनोइंग प्रतियोगिता शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग किनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग किनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे T20 और वनडे सीरीज के दौरान उपकप्तान के रूप में टीम का हिस्सा होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। श्री चौधरी ने कहा कि उनके चयन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ी, विशेषकर बेटियां, विभिन्न खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित होंगी। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी की रकम से खरीदा गया 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित चोरी में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रायपुर जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन उत्कर्ष के तहत कल राजधानी में सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लगातार कमजोर परिणाम देने वाले विद्यालयों की समीक्षा करने के साथ ही विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावकों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं का औसत परिणाम 71% से अधिक और 12वीं का लगभग 85% रहा, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। हालांकि कुछ निजी विद्यालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। और नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी

0: परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता। और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। शाम के 7 बजने को है और आप सुनेंगे थोड़ी देर में चित्रपट संगीत। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत लीजिए सुनिए। शाम के 7 बज चुके हैं और चित्रपट संगीत में पहला गीत मिका सिंह की आवाज़ में इरशाद कमिल का लिखा यह गीत है, जिसे संगीत दिया प्रीतम ने, और फिल्म का नाम है जब वी मेट।

वेलकम। इस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद की आवाज़ में। गीत भी लिखा था आनंद राज आनंद ने और संगीत भी था आनंद राज आनंद का। और आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। और लीजिए अब सुनिए तुलसी कुमार और नीरज श्रीधर की आवाज़ों में बिल्लू, इस फिल्म का ये गीत जिसे लिखा आशीष पंडित और मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

आई हेट लव स्टोरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे विशाल ददलानी की आवाज में, जैसा लिखा था कुमार ने और संगीत था विशाल और शेखर का। और चित्र पर संगीत कर जाता हूँ ये आखिरी गीत, लीजिए सुनिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, जिसे गाया है देवनेगी और पायल देव ने, संगीत है विशाल ददलानी का और गीत माफ़ कीजिएगा संगीत है विशाल शेखर का और गीत लिखा है वायु ने। और हाँ आपको बता देते हैं पायल नेगी, देव नेगी और विशाल ददलानी ने इस सॉन्ग को गाया है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: दीदी राम राम
1: राम राम लक्ष्मीकांत संगे संग हमार कार्यक्रम सुने जम्मू संगवारी मल्ला हमार दोनों के राम राम।
0: करथन त कतकोन जिनिस हमार खेती किसानी ले प्रभावित करथे, जैसे समय में जमो काम बूता होइस कि नहीं होइस, हाँ समय में काम के जोन हमार जिनिस है वह मिलीस कि नहीं मिलीस।
1: सही कहा था लक्ष्मीकांत, समय में खेत जो जाते, समय में बीज उपचार करके खातू के व्यवस्था कर डारें, समय में मानसून आ गए, समय में माटी खेत के बोनी हो गए, और समय में खरपतवार और कीट प्रबंधन हो गए, तक किसान के खुशी के ठिकाना नहीं रहे।
0: सिरतोन आओ दीदी, खेती किसानी में उत्पादन है जोन वह एक तो हमार मेहनत ऊपर निर्भर करते, दूसर खेती किसानी के काम बूता समय में होइस कि नहीं, फिर बड़ा कन जीनी से जैसे मानसून समय में आइस कि नहीं, सिंचाई व्यवस्था के हमार करा का व्यवस्था है, हाँ जब सिंचाई व्यवस्था समय में उपलब्ध नहीं होए तो कृत्रिम रूप ले बने जलाशय नहर ट्यूबवेल जैसे पानी के स्रोत मन ऊपर हम निर्भर रहे लागते। और दीदी गोट बात ल करबो फिर सुनथन संदेश ला।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दर मा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है।

0: तुरंत आओ, पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: लक्ष्मीकांत, अभी हमन खेती किसानी के बारे में गोट करत रहे हैं, और अभी के समय में जमीन के जो जल स्तर है घटत जावत है, ऊपर ले खेती किसानी में पानी के जो जरूरत है बने रही थे।
3: हाँ, और ऐसे में एक तो दीदी, हम जब हमार तीर वर्षा जल सिंचाई व्यवस्था है ना, तब वर्षा जल ले सिंचाई करथन, और जब वर्षा जल की व्यवस्था नहीं हो तो ऐसे फसल लेवन जिन में हम आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जन है सुघर ढंग ले उपयोग कर पावन।
2: और लक्ष्मीकांत, देख आधुनिक सिंचाई के हम कहूँ गोट बात करथन, तो आधुनिक सिंचाई में एक तो टपक सिंचाई आते और दूसरा फव्वारा विधि आते। टपक सिंचाई में एक एक बूंद पानी के उपयोग कर पाथन हमन, पानी सीधा ड्रिप के माध्यम ले पौधा मन के जड़ तक पहुँचते, जेकर उपयोग पौधा मन कर सकते
3: हैं। और टपक विधि के हम गोट करथन तो कतार बोनी विधि हवे, ऐसे विधि मन में बड़ लाभ के होते। एक एक कतार में हमारे जो पौधा हवे है ना, वह रोपाय रहते। दूसरा फवारा विधि भी है, एकर उपयोग हम उबड़ खाबड़ जो जमीन है ओमा बुआई करे पर भी कर सकथन, समतल जमीन हवे ओहू में कर सकथन। का है पानी के जो लागत हवे है ना, पानी के लागत है, एकर खातिर जो फवारा के उपयोग हवे एला फसल के बीच बीच में हम फवारा लगा देहन, ड्रिप के गोट करत रहें तो ओला एक सीध में लगाए लागते, पाइप गुजारे लागते हैं। तो ये जो हमार आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, हमार पानी बचाए और हमार जो खेती किसानी में है वो तो लाभ देवे करते। फिर हम ये कहते रहें दीदी कि खेती किसानी में जो पानी के उपयोग है एला कम करे के गोट तो करत हन है ना, तब भूजल स्तर हमार गिरत जावत है। तो एक बार भी हमन ला किसान मन ला भी और हमार जोन भी संगवारी मन है जम्मो झन ला जोन सुना तो हमर गोठला सब लोग उपाय करना बड़ जरूरी है।
2: कहे के मतलब है पानी ज्यादा ले ज्यादा हम बचावन और खर बचा के उदिम करम, ऐसे में बरसात के पानी ला बचावन, भविष्य ला सुधारन, ये नारा हमर बर बड़ महत्ता के है। अगर ये गोठला गांठ बांध के हम कहूँ धर लेन अही नारा ला अपनावन तो हमार जोन है अवैया भविष्य में हमार पीढ़ी बर ये बहुत अच्छा रही,
3: बड़ लाभ के है और हमार भविष्य भी सुरक्षित रही है। और कैथन घलो ना, पानी ले जिंदगानी है, पानी ले खेती किसानी है, बरसात के पानी ला संजो के रखथन हाँ, तो आज के हमर जो जरूरत हवे वो पूरा हो पाही। हमर पुरखा के मनखे घलो कहते ना कि पानी के जो संरक्षण ला महत्ता देते जिन है ना, ओकर उनला लाभ होते, जिन पानी ज्यादा खर्चा करते ओकर ते पैसा नहीं टीका, ऐसे कहे हमर तैयक मन के।
2: और लक्ष्मीकांत, बरसात के पानी ला हम संजोए खातिर अपन जो छत छानी है वो पानी ला बचावन। देख छत में जब बरसात होते ना तो बरसात के पानी हमार छत से अगर कहीं हम उकरला संजो के नहीं रखे तेती होती बोहा जाते, एकर बार वो हम संजोए कर रखे बार का कर सकथन कि एक पाइप लगा सकथन और छत से और नीचे गहरी गड्ढा कर सकथन, जेखर ले वर्षा के पानी है नीचे भूजल में जाही और हमारे लिए भूजल स्तर जो हमारे जमीन के भूजल स्तर है वो बाढ़
3: है। सीतन कहत हस, अब पानी ला छान के बड़कर टंकी बना के भी राख सकथन दीदी है ना, जेमा हम कपड़ा धोए बर, बर्तन धोए बर, अपन साग भाजी ला धोए बर एकर उपयोग में ला सकथन। और दूसर ये भी है कि साग भाजी ला धोए पानी है वो हमार एक काम है ना, एक काम दो कारज कहते हैं वैसने हो जाही कि साग भाजी धोए पानी ला हम जोन पोषण वाटिका है हमार है ना, हमार बाड़ी में हमार कोला में हम जोन साग भाजी बोए रथन हाँ, मिर्चा धनिया टमाटर कतकोन जिन्हें संगवारी में लगाते हैं तो ओकर सिंचाई पर भी हम उपयोग कर सकथन।
2: और देख वर्षा जल संरक्षण के मन कहूँ बात करथन, पानी बचाए के बात करथन, तो अभी के बेरा में जैसे गर्मी है नी ते बेरा में हमन कहूँ डबरी बनाए हैं ओकर साफ सफाई कर सकथन, हैंडपम्प है कुआँ है एकर साफ सफाई कर सकथन, जेखर ले का हुई जब वर्षा के पानी हो ही तेती वोती नहीं बुहाई वह सुरक्षित रहे।
3: माने बरसात आए के पहली हम
2: ये सब तैयारी कर लेवन,
3: तैयारी कर लेवन। और अभी गर्मी के दिन चला थे दीदी तो यह सफाई करे जाबो तो हमला घाम बढ़ जानाते है ना, तो संगवारी हो बिहनिया और संझा बेरा के जोन हवा एकर उपयोग करत हम तरिया मन के साफ सफाई सुघर ढंग ले करन, माटी निकाल के गहरा कर सकथन तालाब ला और मेड़ बना सकथन। और खेत मन के जोन कोना मन हवा ओमा अपन अपन खेत के जरूरत हो हमार जोन पूरा हो जावे इसने एक ठन डबरी बना लेवन जरूरत के हिसाब ले कि अपन जो खेत के पानी है वो खेत में ही रह जावे और जब हम खेती किसानी करन तो जरूरत पड़े में हमारे यहाँ काम आ जावे।
2: और लक्ष्मीकांत, देख सबले बड़े बात है पेड़ पौधा है नी, हमारे कृषि वैज्ञानिक मन सलाह देते हैं और कहे जाते हैं कि पेड़ हम ज्यादा ले ज्यादा लगावन, काबर पेड़ जो है ना तो हमारे माटी पानी ये सब तो बचावे करते संगे संग पर्यावरण

0: संरक्षण तको करते। देख हम ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगाए हैं ना, तो का होते कि जब तेज आंधी आते तब ओमन माटी ला रोक के रखते, काबर की उकर पेड़ पौधा के जड़ तरी तक जाते भुइया के, ओमन माटी ला बांध के रखते। ऐसे जब बहुत ज्यादा पानी गिरते नहीं तो माटी के कटाव होते, तो पेड़ पौधा कहूँ ओमन लगाए हैं तो उकर डारा पाना ये सब पत्ती मन नीचे गिरते, जेखर ले की माटी का होते सुरक्षित रहते। और दूसरा लाभ ये होते कि पानी जब गिरते तो वह सड़ जाते और सड़ के बहुत अच्छा जैविक खाद बनाते।
1: अब देख पानी बचाए गोट कर थन है ना, तो गांव में छोटे छोटे नाला नहर रही थे, तो ओमा हम का कर सकथन, बोरा में माटी रेतीला भर के ओला रूसा बना सकथन, माने चेक डैम जैसे संरचना होते। और ओकर ले का होते कि अगरिहा पानी जोन हवा ऊपर ले नहा गिस हाँ, और जरूरत के हिसाब ले पानी ही या कम से कम जरूरत के हिसाब ले जितना जरूरत होते हमला उतना पूर्ति जोन पानी है वह वही जगह रहे रहते। तो का होते नहर में पानी भरे रही थे तो जोन तीर तखार के जोन माटी है वो नमी बने रही थे, और जोन जल स्तर हवा तीर तखार के वह बड़े सुघर रहते। तो जतका ज्यादा पेड़ पौधा माने रुख रही लगा बुन के अभी तक गोठियावत रहे हैं ना, उतके ज्यादा पानी हमारे जमीन भीतर रही और हम अपन जो छत छानी के पानी ला बचाए के भी सुघर गोट करे हैं है ना, बरसात के पानी ला बचाए बर और का कर सकथन। तो देख एक लाभ ये है कि हमारे जोन कुआं है वह बोरिंग है हैंडपम्प है, साल भर पानी के जोन उपलब्धता है बने रही है कर ले तो है ना। दूसरा साफ और मीठा पानी के हमारे तीर उपलब्धता रही थे, ता ये तो हमन वर्षा जल ला हमारे जोन बरसात के पानी है एला बचाए के गोट करत रहे हैं। और गोट करत करत हमार बेरा हो गए किसानवाड़ी के, प्रायोजक हमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम हैं भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
3: लक्ष्मीकांत, हाँ अभी हमन पानी बचाए के गोट करत रहन है ना, तो सुनथन ऐसे जुड़े इकड़े मतलब ये विषय ले जुड़े हुए गीत जिला गाए तीरथ गड़ेवाल और साथी मन।

0: संगवारी हो, सुघर गीत ल सुनत रहें। और अब हमार किसानवाड़ी में बेरा है आज के सलाह के, आवा सुघर जानकारी के विषय हवा ल सुनथन। सतत पशु आहार खातिर हाइड्रोफोनिक चारा उत्पादन तकनीक बतावत हैं डॉक्टर वंदना भगत, सहायक प्राध्यापक हवें पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। एकर ले गोट बात मोनिका दीदी तिर हो है, आवा सुनथन।
1: संगवारी हो, खेती किसानी हो है, फिर पशुपालन, नवा नवा तकनीक, नवा नवा विधि हमार हर कामला बड़ा आसान बनाते। वही बात पशुपालन की ही तो पशुधन मन की देख रेख, ओखर मन की खान पान की व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाते। और बात ओखर मन की खान पान से जुड़े है तो आज हमन यही विषय में बात करबो कि सतत पशु आहार उत्पादन खातिर हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन तकनीक। और ये विषय में गोट बात करे खातिर हमारे संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वंदना भगत जी। हाँ, आप मन सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजुरा दुर्ग, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। डॉक्टर वंदना भगत जी, आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर वंदना भगत जी, जैसे कि आज हमारे विषय है ना हाइड्रोपोनिक्स चारा, तो सबसे पहले तो आप मन यही बताते हो कि हाइड्रोपोनिक्स चारा का होते।
2: तो किसान भाइयों और बहनों, हाइड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के केवल पानी एवं पोषक तत्वों की सहायता से अनाजीय पौधों को अंकुरित कर चारा तैयार किया जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। पशुपालन में यह तकनीक संसाधन संरक्षण एवं टिकाऊ चारा उत्पादन का एक प्रभावी विकल्प है। हाइड्रोपोनिक चारा अत्यधिक पौष्टिक होता है एवं इसके लिए कम भूमि एवं पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए भविष्य की जलवायु चुनौतियों के लिए यह अत्यंत उपयुक्त तकनीक मानी जा रही है।
1: जी अच्छा, अब यही विषय में बात करे था मल्ला, ये बताते हो विस्तार से बताते हो कि सतत पशुपालन प्रणाली का हो।
2: सतत पशु उत्पादन प्रणाली वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रभावी समाधान है। यह सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर बल देती है। यह ऐसी एक प्रणाली है जिसमें उत्पादन क्षमता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया जाता है, जिससे पशुपालन

0: दीर्घ काल तक लाभकारी बना रहे। सतत उत्पादन प्रणाली में इनपुट जैसे कि पशु नस्ल, आहार एवं प्रबंधन और आउटपुट जैसे कि पशु उत्पाद एवं उत्पाद दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप मन बड़ सुघर तरीका ले जानकारी देवत हो। फिर जब बात पशु आहार के आती तो कतकुन बखत ऐसे होते कि भाई बेरा बखत माँ ओखर मन के आहार की व्यवस्था नहीं हो पाए, तो हमार मन में एक बात आवा थी कि पशु आहार की हमेशा उपलब्धता की का महत्ता है।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुणवत्ता युक्त चारा आहार की लगातार उपलब्धता पशुओं उत्पादकता को बनाए रखती है, बढ़ाती है, जैसे कि दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडे उत्पादन इत्यादि। पशु आहार स्वास्थ्य उत्पादन एवं कल्याण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेयरी फार्म में दूध उत्पादन की लागत का कुल लगभग 70% भाग केवल आहार एवं चारे पर व्यय होता है।
1: जी,
0: सांद्र आहार पोषक एवं स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसमें अधिक लागत की आवश्यकता होती है, जिससे कि किसान, छोटे किसान एवं गरीब किसान इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में अधिकांश पशुओं को निम्न गुणवत्ता वाला सूखा चारा खिलाया जाता है। इसकी स्वादिष्टता भी कम होती है और पोषण स्तर भी कम होता है, इसीलिए पशुओं का उत्पादन स्तर घट जाता है।
1: जी,
0: इसलिए कम भूमि एवं कम जल उपयोग के साथ साथ पर्यावरण अनुकूलन चारा उत्पादन तकनीकों की आवश्यकता है। इसीलिए हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन पशुओं के लिए सतत चारा उत्पादन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विकल्प है।
1: डॉक्टर साहब, आप मन ने इतना सुगर सुगर जानकारी दिया था, तो इसने हमारी जो जिज्ञासा है वो बढ़ा थे। अब हमारे ये बताते हो कि पशु मन के आहार उत्पादन की बात है, तो इमा हाइड्रोपोनिक्स महत्वपूर्ण या जरूरी का बराबर है?
0: इसके महत्व के बारे में बात करें तो हाइड्रोपोनिक चारा भविष्य के पशु आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अत्यंत ही प्रभावी साथ ही साथ टिकाऊ उपाय है, क्योंकि इसमें कम भूमि एवं पानी की आवश्यकता होती है। इसी में कम भूमि पानी में ही पौष्टिक चारा उत्पादन होता है।
1: जी।
0: इस तकनीक के माध्यम से पशुपालन में पर्यावरणीय प्रभाव कम करते हुए उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। इस विधि से मक्का, रागी, बाजरा, लोबिया, कुलथी, ज्वार, कांगनी जैसे फसलों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। फसल का चयन स्थानीय जलवायु एवं बीज उपलब्धता के आधार पर भी किया जा सकता है। भारत और छत्तीसगढ़ में भूमिहीन एवं गरीब किसान, विशेषकर महिलाएं, अधिकतर पशुपालन कार्य करते हैं। उनके लिए हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन कम स्थान एवं कम लागत वाला उपयुक्त विकल्प है।
1: जी।
0: जहां 1 किलोग्राम नेपियर उत्पादन के लिए लगभग 60 से 80 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वहीं 1 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक चारा केवल 3 लीटर पानी में तैयार हो सकता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसमें लगभग 95% पानी की बचत होती है। इस उत्पादन विधि में केवल 480 वर्ग फुट क्षेत्र में लगभग 1000 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन उत्पादन किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक विधि द्वारा इतनी मात्रा में चारा उत्पादन करने के लिए लगभग 10 से 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें भूमि के साथ साथ पानी की भी बचत हो रही है, अत्यंत ही कम स्थान पे अधिक चारा उत्पादन हो रहा है। भूमिहीन किसान एवं महिला किसानों के लिए यह तकनीक अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसमें भूमि एवं जल दोनों की ही कम आवश्यकता होती है।
1: अब बात हाइड्रोपोनिक तकनीक की है, तो एकर का विशेषता हवा है, थोड़कुन विस्तार ले बताते हो।
0: इसकी तो देखा जाए तो इसकी बहुत सारी विशेषता है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इस प्रणाली में पौधों को मिट्टी के बिना ही केवल पानी एवं पोषक तत्वों की सहायता से उगाया जाता है। इस विधि में चारा बहुत तेजी से तैयार होता है। जहां पारंपरिक चारा उत्पादन में हमें 40 से 60 दिनों का समय लगता है, यह हाइड्रोपोनिक चारा हम केवल 7 से 8 दिनों में ही तैयार कर सकते हैं। साथ ही यह पारंपरिक चारा की तुलना में अत्यधिक पौष्टिक होता है और गाय, भैंस, बकरी एवं अन्य पशुओं के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होता है। हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन साल भर किया जा सकता है, चाहे मौसम शुष्क हो या वर्षा ऋतु, किसी भी मौसम में इसे उत्पादन कर सकते हैं। किसान केवल प्रतिदिन 1 से 2 घंटे कार्य करके पौष्टिक चारा तैयार कर सकते हैं। साथ ही यह पूर्णतः जैविक विधि है, क्योंकि इसमें कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें पशु बीज एवं जड़ों सहित पूरे चारा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे चारे का कोई भी अवशेष नहीं बचता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हाइड्रोपोनिक तकनीक की हमन बात करत हन, तो ये खाली कौन विधि ले, कौन प्रकार से हमन इखर उत्पादन चारा पर कर सकते हैं?
0: हाइड्रोपोनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए हम बांस या लोहे की सहायता से ढांचा तैयार कर सकते हैं। इसमें हल्की ढलान वाली ट्रे लगाई जाती है, जिससे पानी का उचित निकास किया जा सके। ट्रे में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, जिससे पानी जमा ना हो। इन ट्रे में मक्का, बाजरा, रागी, लोबिया, ज्वार आदि कई फसलें लगाई जा सकती है।

0: हैं। इसमें मल्टी ट्रे सिस्टम बनाई जाती है जिसके साथ इस वजह से 5 से 7 तहों तक उत्पादन किया जा सकता है
1: जी।
0: लगभग 7 दिनों में चारा 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है और खिलाने योग्य बन जाता है। इसे जड़ सहित पशुओं को खिला दिया जाता है। सफल चारा उत्पादन के लिए निम्नलिखित बातों का याद ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है, जैसे कि चारा उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना चाहिए, चारे को प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए, उचित वायु संचार की व्यवस्था, पानी का अच्छा निकास एवं फफूंदी के नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये हाइड्रोपोनिक चारा मन के लाभ का होते हमारे पशुधन मन पर, ये विषय में बता।
0: यह हाइड्रोपोनिक चारा अत्यंतिक पौष्टिक होता है, इससे पशु पाचन क्षमता में सुधार होती है, दूध उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, प्रजनन क्षमता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होती है, इससे श्रम समय एवं ऊर्जा की भी बचत होती है
1: जी।
0: यह इससे अत्यधिक स्वादिष्ट एवं रसीला चारा उत्पन्न होता है, साथ ही यह विषैले तत्वों से मुक्त होता है। कम भूमि एवं कम जल में भी उत्पादन किया जा सकता है एवं घर के परिसर में भी इसका उत्पादन संभव है।
1: डॉक्टर साहब, कोनो भी काम ला करबे तो समस्या घलो का तो ही, तो अगर हम हाइड्रोपोनिक चारा की बात करें तो का चुनौती आते?
0: चुनौतियों में प्रमुख चुनौती यह है कि इसके उत्पादन के लिए नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसके उत्पादन के लिए तापमान लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक बना रहना चाहिए, आर्द्रता लगभग 60% होनी चाहिए, प्रकाश की तीव्रता 2000 लक्स एवं प्रकाश की अवधि 12 से 18 घंटे होनी चाहिए, मतलब प्रकाश मिलना चाहिए, साथ ही नियमित वायु संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में कई बार यह अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, साथ ही फफूंदी संक्रमण इस प्रणाली की मुख्य समस्या है, अतः संक्रमित चारा पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। छोटे किसान कम लागत वाले साधनों जैसे बल्ब, नेट सेट एवं पानी छिड़काव समय में बदलाव करके नियंत्रित वातावरण विकसित कर सकते हैं। और प्रमुख चुनौतियों में भारत में और छत्तीसगढ़ उपलब्धता भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि यह केवल 15 से 20% तक ही सीमित है, इसलिए गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन एवं उनकी उपलब्धता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।
1: डॉक्टर वंदना भगत जी, आप मनाए बड़े सुघर और विस्तार तरीका ले हमारे संगवारी मल्ला बताए कि भाई हमारे पशुधन मन पर हमला जैसे चारा चाहिए तो मन कौन प्रकार ले हाइड्रोपोनिक तकनीक ला अपना के उखर मन खातिर चारा उपलब्ध करा सकथन, ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: संगवारी हो, किसानवाणी क्रम आज के सलाम सुघर जानकारी ले सुनत रहें। जानकारी के विषय रही सतत पशु आहार खातिर हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन तकनीक। जानकारी देवत रही डॉक्टर वंदना भगत, सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। एक तीर मोनिका दीदी के गुड़ बात हुआ रही।

0: और संगवारी हो, अब बेरह है कृषक प्रश्न मंच के, तो लिख ले रहो आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है हाइड्रोपोनिक तकनीक के का विशेषता है। संगवारी हो, प्रश्न एक घाव सुन ले रहो, हाइड्रोपोनिक तकनीक के का विशेषता है। और अब बता देथन पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न होकर सही जवाब। पाछू हफ्ता हमन प्रश्न पूछ रहे हैं ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और खेत में प्लास्टिक सेट बिछाए के का लाभ होते, और एक सही जवाब है खरपतवार नियंत्रण और कीड़ा बीमारी कम होते, माने कीड़ा बीमारी प्रबंधन में बड़ लाभ के होते।
1: और सही जवाब भेजे हैं हमारे संगवारी मन तेंडू भाठा मगरलोड जिला धमतरी ले, उमेन कुमार निषाद, महेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी भास्कर और किशन निषाद। गर्रापार बांधा बाजार ले हैं गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र और राकेश साहू। मदनपुर कवर्धा ले हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू।

0: बठेना पाटन जिला दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, मुरली वर्मा, अजीत अमित वर्मा। लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी हैं। पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा, वान्या सिंगरौल। परसोटोला अंबागढ़ चौकी ले हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र तुसारणी मसिया। भानबेड़ा मुंगवार ले हैं भारत राम पडोटी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पडोटी। डोंगरगांव ले हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले हैं हमर रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। कांकेर संबलपुर ले हैं फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। संगवारी हो सही जवाब खातिर गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और हमार आज के जो प्रश्न है ओकर खातिर हमार ईमेल पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
1: और संगवारी हो हमार शुक्रवार के दिन क्रम होते हेलो चौपाल के, तो जौन कल शुक्रवार है तो खर हेलो चौपाल के एक गाँव के विषय है। संगवारी हो शुक्रवार 12 जून 2026 के प्रसारित होए वाले हेलो चौपाली कार्यक्रम के एक गाँव के विषय हो ही फल उद्यान लगाए की तैयारी और उसका प्रबंधन। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यान की रायपुर। संगवारियों आपन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमारे ये फ़ोन नंबर में फ़ोन कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, दूसरा फ़ोन नंबर है 4003483 और तीसरा फ़ोन नंबर है 4003484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 के बिहनिया 11:30 से 12 बजे तक करे जाए। संगवारी हो ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही शाम 7:30 में करे जाए। तो संगी हो हमन ला आप मन के फ़ोन कॉल के अगोरा रहे।
0: दीदी संगवारी मन ला हमारा आज के प्रश्न बता दें और काली जन हमार समाधान मिली कौन विषय रही कौन बताही ये सब लोग बता दे रहे हैं। अब सुघर एक ठनाऊ गीत सुन लेते कहते रहे हूँ तो सुघर गीत ले सुनथन कुलेश्वर ताम्रकार और संगवारी मन ले।

0: अभी सुन सुघरगी जलगाए रहन कुलेश्वर ताम्रकार और साथी मन
1: और दीदी खेत बचाओ अभियान अभी चला थे ता फसल अवशेष जो हवा ओला हम संगवारी मन ले हम कहना चाहतन कि ये ला हम मत जलावन हम किसान हंता है ना वेस्ट डिकम्पोजर और बीजामृत के उपयोग करके ला सड़ा सकथन है खाद बनाए पर दूसर की ग्रीष्मकालीन गहरी जोताई हवा है ऐसे करके हम माटी ला पलटन
0: और एक अलावा लक्ष्मीकांत माटी के जांच करावन और अनुशंसित मात्रा में ही जौन खाद है ओकर उपयोग करन हमन
1: वही जिनिस ला डारत हन जे पहले खाद खेत में हवा है ना तो हमारा आर्थिक नुकसान है तो संगवारी कर हम ध्यान रखा सुघर जो हमारे खेत ला बचाए बर हम ला अपन कोशिश करना है और ये रही किसानवाड़ी प्रायोजक रहीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार जाए के बेरा हुआ थे संगवारी हो जाए के पहली काली के कार्यक्रम बता देथन काली चौपाल आज के बात में गोठो ही श्री विधि लपनावन ज्यादा आमदनी पावन फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल में समस्या के समाधान मिल ही फल उद्यान लगाए के तैयारी और प्रबंधन ए विषय में सुगर समाधान कर ही श्री कैलाश सिंह पैंकरा जी मन आप मन उप संचालक हैं उद्यानिकी रायपुर ले गीत संगीत घलो ही संगवारी हो तदेव विदा कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मन ला लक्ष्मीकांत
0: रुक्मणी के
1: राम राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। आइए अब सुने चित्रपट संगीत।

क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत लिखा है संजय छैल ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का। तो लीजिए सुनिए क्या दिल ने कहा इस फिल्म का ये खूबसूरत संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिदा, इस फिल्म का एक गीत जिसे लिखा था समीर ने और संगीत था अनु मलिक का। और श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए क्या यही प्यार है। इस फिल्म से गाया है अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो ने, गीत लिखा है जुलिस राशिद ने और संगीत है अलू अरविंद का।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। श्रोताओं, चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इसमें कलाकार हैं सीमा कौशिक और उनके साथी।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम।
1: तोरे हासी माँ।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। लीजिए सुनिए सीमा कौशिक और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे सीमा कौशिक और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 8:30 होने को है स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताज़ा अपडेट और हर मैदान की खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज। पहले मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की पुरुष जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। कहा, खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाती है। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम घोषित। यशवर्धन सिंह चौहान को पुरुष और भाविका अहिरे को महिला टीम की कमान सौंपी गई। और T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के साथ, जो कि आज शुरू होने जा रहा है। गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले लियोनल मेसी, महानतम खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और आखिरी विश्व कप के लिए अपने दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आज से 20 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित यह संस्करण इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 की जगह 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। और तमाम जानकारियों की इस कड़ी में आज हम उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक सबसे अधिक गोल दागे हैं। सुनिए विशेष की ये रिपोर्ट।
1: जर्मनी के स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2002 से 2014 के बीच 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए। 2002 और 2006 में क्लोज ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। साथ ही 2014 में अपनी टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो नजारियो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। द फिनोमिनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए। उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की। 2002 विश्व कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गर्ड मुलर ने वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 विश्व कप में 10 गोल, वहीं 1974 में 4 गोल दागकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई थी। तीसरे पायदान पर काबिज मुलर ने यह उपलब्धि केवल 13 मुकाबलों में हासिल की थी। फ्रांस के जस्टन फोंटेन ने 1958 विश्व कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है। जस्टन ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था। यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है। साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त चौथे पायदान पर हैं। मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल

0: छोटे गोल किए हैं। कतर में खेला गया आखिरी विश्व कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो पिछले फीफा विश्व कप के इस आखिरी विनिंग मोमेंट के साथ वापस से रिचार्ज होने को तैयार है फुटबॉल फैंस का पूरा मन, और इसी कड़ी में आज पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो आइए जानते हैं विश्व कप के इस पहले मुकाबले में किस टीम का पड़ला कितना भारी है।
2: तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब से कुछ घंटे बाद फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल के लिए भारत और दुनिया भर के फैंस का जोश हाई है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे

0: तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब से कुछ घंटे बाद फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल के लिए भारत और दुनिया भर के फैंस का जोश हाई है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए सभी फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं। मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका महामुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। मैक्सिको सिटी के स्टाडियो एस्टेका स्टेडियम में इस मुकाबले की सीटी बजते ही फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में आमने सामने होने के 16 साल बाद मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत करने का मौका मिला है। मैक्सिको और साउथ अफ्रीका 5वीं बार विश्व कप में आमने सामने होंगे। मैक्सिको ने पिछले 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 1 मुकाबला जीता है जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है, जिससे मेजबान मैक्सिको का पलड़ा इस मुकाबले में भारी दिखाई देता है। मैक्सिको के एरिक लीरा सेंट्रल मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए ओस्विन अपोलिस अटैक का जिम्मा संभालेंगे। मैक्सिको अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने डिसिप्लिन के लिए विश्व फुटबॉल में जाना जाता है। ऐसे में दोनों ही टीम की नजरें विश्व कप का पहला मुकाबला जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने पर होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मैक्सिको होम एडवांटेज का फायदा उठाता है या दक्षिण अफ्रीका अपने बेहतर खेल से एक अलग पहचान बनाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो आज रात 12 बजे से जोश, जज्बे और रोमांच के इस अनुभव के साथ शुरू होगा फीफा का महाकुंभ। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, वहीं एमआर अर्जुन और हरिहरन हंसाकरुणन की पुरुष जोड़ी ने भी अंतिम 8 में जगह बना ली है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों पर ये रिपोर्ट।
2: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
3: आई वॉन माई सेकेंड राउंड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक यू नो ऑल द फैंस आउट देयर हु हैव बीन वेरी सपोर्टिव।
2: सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की ही ईशा रानी बरुआ को 22-20, 21-12 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चेन सू यू से होगा। वहीं तन्वी शर्मा ने भी हमवतन मालविका बंसोट को 21-13, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। 17 साल की तन्वी ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को हराया था। वहीं भारत की तानिया को पोर्न पावी चोचू वोंग से 12-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। एमआर अर्जुन और हरिहरन हंसाकरुणन की भारतीय पुरुष जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के माइकल ओवेन और डायलन सोएत चासा को 21-17, 21-7 से हराया। डबल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली का अभियान अपने अपने मैचों में हार के साथ समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब बात करते हैं एक और खेल आयोजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए देश के लिए ओलंपिक से बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता उसकी बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन हर दिन बेहतर होते जा रहा है।
4: और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है।
1: तो रिफॉर्म भारत का कन्विक्शन है और इसकी साफ झलक देखने को मिलती है जब युवा खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा लगाए मैदान पर उतरते हैं और रोज नए कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नजर

0: आते हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। ये दौरा 4 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पुरुष की अंडर 19 टीम चुनी है, जिसमें 3 एकदिवसीय मैच और 2 मल्टी डे मैच खेले जाने हैं। यशवर्धन सिंह चौहान दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मुकाबलों की महिला एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भी भारतीय महिला अंडर 19 टीम का कार्यक्रम का आज ऐलान कर दिया गया। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान भाविका अहिरे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि महाक नरवासे दोनों प्रारूपों में टीम की उपकप्तान होंगी। श्रृंखला की शुरुआत 22 जून को चेन्नई में पहले T20 मुकाबले के साथ होगी। और जब T20 की बात छिड़ी है तो बात T20 क्रिकेट विश्व कप की भी होगी, जो कि कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और भारत की नज़र 17 सालों के इतिहास में पहली बार ये खिताब जीतने पर होगी। आज हम बात करेंगे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ियों पर।
1: भारतीय टीम के पास विश्व कप में शुरुआत से लेकर अंत तक और अनुभव से लेकर युवा तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बल्ले से किसी भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। हरमनप्रीत की आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी। जब भी ये जोड़ी शुरुआत से अपना स्वाभाविक खेल दिखाती है तो भारत के लिए एक बड़े स्कोर की राह पावर प्ले में ही आसान बन जाती है। उपकप्तान मंधाना तेज गति और आक्रामक शैली से रन बनाने के लिए जानी जाती है। स्मृति भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने करीब 30 के औसत से 4,293 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं युवा शेफाली भी पावर हिटर मानी जाती हैं और हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ऊर्जा से भरपूर शेफाली ने अपने T20 करियर में 28 की औसत से 2,687 रन बनाए हैं। शेफाली किन इरादों से मैदान पर उतरना चाहती हैं, ये खुद उनसे सुनते हैं।
2: जब भी मैं कोई T20 वर्ल्ड कप खेलती हूँ तो मुझे हमेशा 2020 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ जाती है। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, मुझे वो फाइनल याद आता है कि मुझे उस फाइनल का बदला जरूर लेना 2020 वर्ल्ड कप का, एंड होपफुली दिस टाइम वी बीट देम।
1: अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर है। इस मैच विनर खिलाड़ी ने अपने बल्ले से भारत के लिए कई मुकाबले पलटे हैं। हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगभग 30 की औसत से 3,991 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। टीम की बल्लेबाजी को लेकर रणनीति पर खुद कप्तान ने क्या कहा वो सुनते हैं।
2: T20 पावर प्ले के जो फर्स्ट 6 ओवर है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो यू हैव टू टारगेट रन्स इन द पावर प्ले एंड इफ यू बॉलिंग यू नो वी हैव टू गेट कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले। वंस द पावर प्ले इज सेट उसके बाद आपका गेम चलता है। तो आई थिंक डेफिनेटली वी वांट टू रियली वर्क हार्ड लाइक हाउ वी हैव टू गो अबाउट द पावर प्ले एंड सेकंडली यू नो मिडिल ओवर आल्सो प्ले वेरी बिग रोल।
1: जेमिमा रॉड्रिग्स भी मध्य क्रम की एक मजबूत कड़ी है। तकनीकी रूप से दक्ष और प्रेशर में स्थिरता रखने की कला इस खिलाड़ी को बेहद खास बनाती है। 2025 में एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने इस खिलाड़ी की ट्रॉफी जीतने की संभावनाएं और बढ़ा दी हैं।
3: Now you've tasted what it feels like to lift one World Cup. It makes you want one more and then one more and then one more. So I think the team is even more motivated and even more eager. And more than that, we saw the kind of impact it had for women's cricket in India. We just want to continue that legacy.
1: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष से भी टीम को एक अच्छे फिनिशर का रोल अदा करने की उम्मीद होगी। ऋचा तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा सकती हैं और बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखती हैं। वे हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में भी नजर आईं। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम को भारती फुलमाली दीप्ति शर्मा और यस्तिका भाटिया शर्मा से भी भरपूर उम्मीद होगी, जो टीम को एक ऐसे भरोसे के साथ साथ बल्लेबाजी में गहराई देने का भी काम करेंगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारतीय टीम किन तेवरों के साथ 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी, ये इस रिपोर्ट में साफ नजर आया। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों की, जो कि 20 जून को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस समारोह में 10 वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को और कोचों को उनके जीवन भर के योगदान और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@

0: gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज

0: कराया।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: Peace and stability in the region.
3: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
3: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
8: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
7: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में

0: गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
1: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने।

0: Estadio Azteca in Mexico City. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना कबीर सिंह, इस फिल्म का यह गीत जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था अमाल मलिक ने, और चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए लाल सिंह चड्ढा, इस फिल्म का यह गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। श्रोताओं, रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम साइंस एंड टेक।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आपका।
2: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
3: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।
2: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
3: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र, तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
2: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
3: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात

0: पत्नी की स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

0: यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही
0: है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो

0: कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है,
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
0: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे उस जमाने में। विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
0: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
1: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले, अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
0: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
1: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कारपूल

0: कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कारपूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ, और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी

0: मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए

0: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी, उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप, अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर, जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते

0: हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें, आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम साइंस एंड टेक अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, और ट्रांसमिशन में विद्युत अवरोध के कारण आप हमारा प्रसारण 9:37 से 9:39 तक नहीं सुन सके, इसका हमें खेद है। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से

रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षडमुख प्रिया। आलाप और दो गतें विलंबित और द्रुत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत की है G.S. ताड़े ने। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षडमुख प्रिया।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग षडमुख प्रिया। तबले पर संगति की थी श्री जी एस ताड़े ने। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। और आप सभी के अनुरोध पर पहला गीत हम ले रहे हैं तेरी कसम इस फिल्म से। इस गीत को गाया है अमित कुमार ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है आरडी बर्मन साहब का। और इस गीत की फरमाइश अनुरोध हमारे इन श्रोता साथियों के हैं।

बालोद अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। नर्मदा धाम सुरसुली से आप हैं कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव। हरदेवलाल पारावाट सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। मंगलूट से पुनुराम साहू, राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा आप हैं प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। सिमगा से लौकुर सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य सेन, आशीष सेन। बेमेतरा से आप हैं सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी और रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी बेपरिया से दुर्गा राम साहू। बक्सर बिहार से आप हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से ही आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी। सरीमपुर बक्सर से आप हैं आसमा खातून अंसारी, राजस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब और मेराज अंसारी। तो लीजिए हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं इस वक्त फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से रात के 10:37 और 13 सेकंड हो रहे हैं। और अब अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर फिल्म रॉकी से आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, संगीत है आरडी बर्मन साहब का और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। आप हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा, रामनगर रायपुर से आप हैं राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और उज्जल वर्मा, पावर हाउस भिलाई जामुल से आप हैं विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान, भाटापरा से दानसी रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से आप हैं परवीन डोम, सरीफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा और उल्लाह आसमा बेलदार, महादेवघाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर और सुचला ठाकुर, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियाश ठाकुर, पटेल नगर मालोट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, दरसीमा से छिदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा और अनुराधा अल्पना यादव, और रायपुर से आप हैं चन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण, सी एल यादव, शीतला नगर दुर्ग से अर्पा, पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर और बेहतनीपारा भाटापरा से चौवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा, दुर्गा और दुर्गेश्वरी वर्मा। तो लीजिए सुनिए हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर रॉक की इस फिल्म का गीत जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने।

लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे रॉकी इस फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए यारा दिलदारा इस फिल्म का ये गीत, जिसे गाए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी ने। गीत लिखा है मंजू सुल्तानपुरी ने और संगीत है जतिन ललित का, और फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है। चार मीनार चौक गंडे पंडरिया से आप हैं दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी। गांधी बाग नागपुर से आप हैं अशोक कुमार सावलानी। सीतानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। शिक्षक नगर दुर्ग से ही आप हैं राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। ग्राम बेलर गांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। ग्राम दरचूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फेज खान, हजरुद्दीन और निशा और सादिया खान आप हैं शांतिनगर भाटापारा से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। जय मां कर्मा रेडियो श्रोता संघ श्री गातापार से आप हैं कुमारी लावण्य साहू, कुमारी उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज और प्रभुराम साहू। और खैरागढ़ से आप हैं रविंद्र अग्रवाल, के एल यादव, दामोदर से राजपूत, महामाया पारा ग्राम दरचूड़ा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। तो लीजिए सुनिए यारा दिलदारा फिल्म का एक गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अपने रेडियो मोबाइल सेट पर आप सुन रहे हैं आकर्षण रायपुर और सरायपाली केंद्र का प्रसारण और आप ही की फरमाइश का कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत। और अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में फिल्म वारिस से। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है उत्तम जगदीश का और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है रुआ बांधा शनिश्री बाजार बिलाई से सुशील जैन कल्पना जैन श्रेया सौरभ और शौर शुभम जैन धामणी मनोरा से आप हैं तुलसीराम डेरे माया डेरे संदेश आदेश किरण प्रज्वल और दादुल्या डेरे जिनवाड़ी रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से आप हैं श्रीमती सविता जैन मोनिका जैन भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर सोनाडी से आप हैं सुब्रत चौधरी छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश बेमित्रा से भाई कमलकांत सारथी वीरेंद्र वृषकांत सारथी दिल्ली शहर मोरी गेट से आप हैं कन्हैयालाल रीता देवी शिल्पा रानी और आकाश कुमार राष्ट्रपाल गजबीए राधिका गजबीए बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीए आप हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से अरमरी खुर्द जिला दुर्ग से आप हैं चुरामलाल वार्डे जैनी विवेक कुमार वार्डे और नेहा वार्डे और कोटा रायपुर से अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा दिनेश सेन। तो लीजिए हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर सुनिए लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में वारिस इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ऐसे गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे और भी श्रोता साथी हैं। उनमें से हैं आप तेंदुभाटा मंगलूर से उमेद कुमार निषाद, महेश्वरी देवी का पोषण नूतन और बिरनपुर कला दनिया गंडई से आप हैं सुरेश कुमार साहू, तन्मय साहू और खिलेश्वरी। और श्रोताओं, समय कम है और आपके नाम भी हमें आपको पढ़कर सुना रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम, फिल्म दामनी से, जिसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने, गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का। और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है और फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है। सरगुजा से आप हैं रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, धमदा ग्राम सुखरी कला से आप हैं अमित जंगेल, शकुन आरुषि अंजलि, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर दिलीप वर्मा, संजय सोनी, सरसेनी से दुष्यंत कुमार सेन, जागृति सेन, मदन पूर्व कवर्धा से आप हैं योगेश साहू, श्रवण कुमार साहू, भुरसुदा से चिराग सेन, गजेंद्र सेन, बलकरण वर्मा, सूरज कुशल वर्मा आप हैं बठेना पाटन से, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, लखनलाल पुनाराम और कृष्णा देवांगन, दतरंगी भाटापरा से हीरामणि वर्मा, परसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखिलाल वर्मा, और पलारी से आप

ईशांत देवांगन, तनुजा डुगू देवांगन तो लीजिए हमारे श्रोताओं की पसंद पर सुनिए दाम ने इस फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और इसी गीत के साथ अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।

0: फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 11 बजने को है समाचार, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also